नमस्कार श्रोताओं, मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जीएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की

0: अभी से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिन्स फिलिमोन से खेलेंगे। मयोन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

दूध में हर सुबह नई मुस्कान, वीरों के बलिदान से ऊंचा है हिंदुस्तान। तिरंगे की आन रहे तिरंगे की शान, सत्य और सेवा की राह पर बढ़ता रहे भारत महान। भारत माँ के चरणों में शत शत बार प्रणाम।

गगनगण में भगवान बसे हैं तेरा रूप अपार, तेरी माया समझ न पाए सारा यह संसार। मन के भीतर दीप जला दे मिट जाए अंधकार, तेरा नाम का सुमिरन करके मिले हृदय को प्यार। सुख दुख में बस साथ निभाना हे मेरे पालनहार, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं प्रभु बारंबार।

प्रभु नाम की ज्योति जले तो मन हो जाए शांत, तेरी कृपा से जीवन में मिट जाए हर भ्रांत। दुनिया के इस मोह जाल में रखना मुझको दूर, सच्चाई की राह दिखाना प्रभु तुम हो भरपूर। हर पल तेरी याद रहे और निर्मल हो विचार, तेरे नाम का सहारा लेकर पार लगाओ संसार।

हे भगवान दया के सागर, सुन लेना अरदास। भटके मन को राह दिखाना, रखना अपने पास। अहंकार और मोह मिटाकर देना सच्चा ज्ञान। हर प्राणी में तुझको देखूं, ऐसा देना भाव।

मंदिर की घंटी है तू, तू ही है अरदास। नदियों की कलकल में प्रभु तेरा ही आभास। सूरज की किरणों में दिखता तेरा दिव्य प्रकाश। हे प्रभु अपने चरणों में रखना जीवन भर।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज का हमारा विषय है पीढ़ियों का अंतर। आलेख है रीना जायसवाल का और वाचक स्वर है पूजा ठाकुर।
1: आज का विषय हमारे लगभग हर घर से जुड़ा हुआ है, पीढ़ियों का अंतर। अक्सर हम अपने आसपास ये कहते हुए सुनते हैं, आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं समझते, और दूसरी ओर नई पीढ़ी कहती है, हमारे माता पिता हमें समझना ही नहीं चाहते। शायद समस्या यह है कि दोनों पीढ़ियाँ एक दूसरे को समझने से पहले एक दूसरे को बदलना चाहती है। पुरानी पीढ़ी ने जिस समय को देखा है उसमें जीवन की परिस्थितियाँ अलग थी, सीमित साधन थे, सुविधाएं कम थी और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मेहनत करनी पड़ती थी।

0: इसलिए उन्होंने बचत, अनुशासन, धैर्य और परिवार को बहुत महत्व दिया। उनके लिए यह स्वाभाविक था कि जो मिला उसमें संतोष किया जाए और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहें। दूसरी ओर आज की पीढ़ी एक बिल्कुल अलग वातावरण में बड़ी हो रही है। तकनीक उसके जीवन का हिस्सा है, जानकारी कुछ सेकंड में ही उपलब्ध है, दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है, करियर के विकल्प बड़े हैं और अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की इच्छा भी बड़ी है। इसलिए नई पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता, अपनी पसंद और अपने निर्णय का महत्व अधिक होना स्वाभाविक है। लेकिन यहीं से कई बार दूरी शुरू होती है। माता पिता कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, फिर तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते? और बच्चे सोचते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या हमें अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है? दोनों की बात में अपना अपना सच है। पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव है, जबकि नई पीढ़ी के पास नई संभावनाएं हैं। पुरानी पीढ़ी ने जीवन को करीब से देखा है, इसलिए वो खतरे से बचने की सलाह देती है। नई पीढ़ी भविष्य को नए तरीके से देखती है, इसलिए वो जोखिम लेकर कुछ नया करना चाहती है। एक कहती है, पहले सुरक्षा देखो फिर आगे बढ़ो। दूसरी कहती है, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो नया कैसे सीखेंगे? क्या इनमें से कोई एक पूरी तरह गलत है? शायद नहीं। जरूरत इस बात की है कि अनुभव और नए विचार एक दूसरे के विरोधी न बने। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है संवाद की। कई घरों में लोग एक ही कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन उनके बीच बातचीत नहीं होती। माता पिता अपने बच्चों को देखकर चिंतित होते हैं, बच्चे अपने माता पिता की उपेक्षाओं से परेशान होते हैं, लेकिन दोनों खुलकर अपनी बात नहीं कहते। फिर छोटी सी बात बड़ी गलतफहमी बन जाती है। हमें यह समझना होगा कि हर पीढ़ी अपने समय की परिस्थितियों का परिणाम होती है। जिस चीज को एक पीढ़ी अनुशासन मानती है, दूसरी पीढ़ी उसे रोक टोक समझती है। जिस चीज को नई पीढ़ी स्वतंत्रता मानती है, वह पुरानी पीढ़ी को लापरवाही लग सकती है। लेकिन दोनों के पीछे एक भावना हो सकती है, एक बेहतर जीवन की इच्छा। माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहें, सफल हो और जीवन में कठिनाइयों से बचे। बच्चे चाहते हैं कि उन्हें समझा जाए, उन पर विश्वास किया जाए और अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिले। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक दूसरे को सुनना। सिर्फ अपनी बात कहना संवाद नहीं, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करना ही वास्तविक संवाद है। माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चे जिस दुनिया में बड़े हो रहे हैं, वह उनकी युवा अवस्था की दुनिया जैसी नहीं है। और नई पीढ़ी को भी यह समझना होगा कि माता पिता की हर सलाह के पीछे केवल रोक टोक नहीं होती, कई बार उसके पीछे उनका अनुभव, चिंता और प्रेम छिपा होता है। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से बहुत कुछ सीखना है, धैर्य, जिम्मेदारी, रिश्तों की अहमियत और कठिन समय में टिके रहने की क्षमता। और पुरानी पीढ़ी भी नई पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकती है, नई तकनीक, बदलते अवसर, नई सोच और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना। इसलिए पीढ़ियों के बीच पुल बनाने की जिम्मेदारी केवल एक पक्ष की नहीं है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, इसलिए अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही यह कहना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, इसलिए पुरानी सारी बातें बेकार है। अंत में बस इतना ही, पुरानी पीढ़ी अनुभव की विरासत है और नई पीढ़ी भविष्य की संभावना। अगर अनुभव और संभावना एक दूसरे का हाथ थाम ले तो परिवार ही नहीं पूरा समाज बेहतर बन सकता है। इसलिए पीढ़ियों के बीच दीवार नहीं एक पुल बनिए। अपनी बात कहिए लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए, क्योंकि रिश्ते इस बात से मजबूत नहीं होते कि हम हर बात पर सहमत हों, बल्कि इस बात से मजबूत होते हैं कि असहमति के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान करना जानते हों।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे पीढ़ियों का अंतर। आलेख था रीना जायसवाल का और वाचक थी पूजा ठाकुर। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। खेती की बातों में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, खेती की मेड़ पर फेंसिंग कर सब्जियों से कैसे आय ली जाए। इस विषय पर आपको जानकारी देंगी अनुराधा शर्मा।
2: सभी किसान भाई बहन का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज बात करां खेत का चारों तरफ तार बंदी, फसल सुरक्षा का साथ अतिरिक्त आय भी। यो जो विषय छे हमारी आज की बात को कम लागत

0: अंश भाई हमारा सारा जिनकी खेती की जी मेड़ छे वो खाली पड़ेल रज, ओकामा घास फूस उगी आवज। यदि उनीज मेड़ पर मजबूत फेंसिंग करी ना बेल वाली सब्जी ना हमारा किसान भाई बहन लगाई दे तो उनका अतिरिक्त आय को साधन बनी जाएगा ना, साथ में उनकी फसल न की सुरक्षा भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा छे जहाँ की किसान भाई बहन न खा आवारा न पशु न जंगली जानवर नसी बचावना का लेना अपना खेत का चारों ही तरफ तारबंदी करनु पड़ज ना। इन्हीं तारबंदी को उपयोग यदि वो बेल वाली फसल न का लेना करज तो आय में भी वृद्धि हुई जाएज। तो खेत की मेड़ पर फेंसिंग सी उत्पादन बढ़ज न, मुख्य फसल का साथ सब्जी की अतिरिक्त आय भी मिली जाएज न, साथ में उनकी मुख्य फसल की सुरक्षा भी फेंसिंग सी निश्चित हुई जाएज। यदि किसान भाई बहन खेत की चारों तरफ तार सी एंगल सी या बांस या सीमेंट का मजबूत खंबा सी फेंसिंग कर दे तो ये दुई फायदा तो उनका निश्चित रूप से हो जाएगा न। एका में वो सब्जी न कहाँ कहाँ की लगाई सकज। तो देखो मेड़ पर करेला छे, लौकी, तोरई, परवल, कुंदरू, खीरा, ककड़ी, सेम, बरबटी, ये सब ऐसी बेल वाली सब्जी न छे जिनका वो अपनी मेड़ पर आसानी से उगाई सकज न। जहाँ पानी की सुविधा अच्छी हो वहाँ दूसरी फसल न भी लगाई सकज। बेल वाली सब्जी न को सबसे बड़ो लाभ ये रज कि वो ऊपर की तरफ बढ़ज न। एकासी मुख्य खेत की फसल का लेना जी जमीन छे ओका ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़तो है न, खाली स्थान जी किसान भाई बहन को छे ओको उपयोग भी हुई जाए। फेंसिंग का लेना किसान भाई बहन अपनी आवश्यकता न अपना बजट का अनुसार लोहा का एंगल लगाई सकज, GI पाइप लगाई सकज, सीमेंट का खंबा लगाई सकज न। कभी बजट उनको कम हो, छोटा किसान हो तो वो बांस से भी फेंसिंग तैयार कर सकज। बांस का खंबा लगाई दे न, उनका ऊपर प्लास्टिक की रस्सी या GI तार न को उपयोग करी ना असी जाड़ा ही बने दे तो ये कम लागत में हो जाएगा ना। हमारा छोटा किसान भाई बहन न का लेना एक अच्छो विकल्प भी तैयार हो जाएगा। फेंसिंग तैयार होने का बाद किसान भाई बहन न का फेंसिंग का अंदर का तरफ 1 से 1.5 फीट की दूरी पर गड्ढा बनाई ना, उकम अच्छी गोबर की खाद नाखी ना, कंपोस्ट नाखी दे, थोड़ी सी नीम की खली मिलाई दे न। उका बाद हम न जी सब्जी न की बात करी, लौकी, करेला, तोरई, खीरा, ककड़ी, सेम या जो भी बील वाली सब्जी ने उनका लगाउनु ओका बीज लगाई दे। पर एक बात को ध्यान रखनु कि ये जब ये बेल न बढ़ना लगा तो उखा फेंसिंग पर बहुत ध्यान से चढ़ाई दे, क्योंकि बेल जी छे वो आड़ी टेढ़ी दिशा में जाएगा तो आगे चली ना परेशानी हो जाएगा। तो की एक दिशा तय कर दे, समय समय पर अतिरिक्त शाखा न का छाटी ना अलग हटाई दे। कोई सूखी या रोगग्रस्त बेल देखा तो उखा बिल्कुल जमीन से निकाले ना बाहर कर दे। तो एक ऐसी काई होगा कि प्रकाश अच्छो मिलने लगी जाएगा न, साथ में हवा को संचार भी अच्छो होगा तो काशी उत्पादन में अंतर पड़े। किसान भाई बहन का आसपास कोई स्थानीय बाजार हो तो वहाँ की नियमित बिक्री करी ना उनको लाभ भी कमाई सकज न। नहीं हो तो कम से कम अपना घर का लेना तो अच्छी ताजी सब्जी न आपका उपयोग में आओगा। ताजी न पौष्टिक सब्जी न का घर पर उपयोग होना सी उपलब्ध होना सी बाजार पर सब्जी खरीदने का जी खर्च छे वो बची जाएगा। बेल वाली फसल न का साथ एक बात ये बहुत अच्छी रहे कि सीधा न साफ ऊपर तक का तरफ बढ़ानी तो एकामा रोग न सड़न की संभावना न कम हुई जाए न। एक ही साथ निंदाई गुड़ाई सिंचाई तुड़ाई कीट न को प्रबंधन ये सब में भी बिल्कुल कम खर्चो लगज आसानी से हुई जाए न। बेल वाली फसल न जी छे सब्जी न छे वो जमीन से ऊपर रहना का कारण वो की जी उत्पादन छे वो साफ सुथरो रज, सीधा बाजार में भी उनका बेची सकज आसपास होए तो न। कभी थोड़ा सो काम करी ना वो की गुणवत्ता का सुधार दे न, वो की अच्छी पैकिंग करी ना बाजार में बेचा तो हमारा किसान भाई बहनों को अच्छो फायदा हो जाएगा। तो आज हम हमारा किसान भाई बहनों से यही कहना चाहवांगा कि खाली मेड़ का कमाई की मेड़ बनाओ, खेत की सुरक्षा भी बढ़ाओ न, सब्जी न कि खेती से अतिरिक्त आय भी बढ़ाओ।
1: खेती की बातों में अभी आप सुन रहे थे खेती की मेड़ पर फेंसिंग कर सब्जियों की खेती से आए, वाचक थी अनुराधा शर्मा। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कांड में आज का प्रसंग। आई श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और सांधिकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे लेखिका और नृत्यांगना से चर्चा। सवेरे 9:00 आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, इसमें आज के कलाकार हैं बालकृष्ण धनगर और साथी। सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा सवेरे 9:15 पर।

0: सुगम संगीत में आप सुनेंगे श्रद्धा जगताप की गाई चंद गजलें। 10 बजे जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम MH हॉटलाइन लेकर हम हाजिर होंगे 10:05 पर। 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम होगा और 1 बजे महिला कार्यक्रम के अंतर्गत आरंभिक चर्चा का विषय है सकारात्मक सोच की शक्ति योजना। इस क्रम में आप जानेंगे स्कूल शिक्षा विभाग की सुपर 100 योजना। मेरी उड़ान क्रम में आज हम आपको बताएंगे न्यूज़ एजेंसी संचालिका श्रीमती सोनाली राठौर से बातचीत। फूड जोन में आप जानेंगे बारिश में इम्यूनिटी बढ़ाने वाला स्वादिष्ट सूप कैसे बनाएं। और काम की बातें इस क्रम में होगा डिजिटल ट्रांजेक्शन की सुरक्षा महिलाओं के लिए। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। 2 बजे आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। इस छोटे से अंतराल के बाद हम आपको बताएंगे हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आई श्रोताओं हम आपको बता दें हमारी आज की सभा के सांध्यकालीन प्रसारण। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। आज का क्रम इसमें आप जानेंगे शहर बालाघाट के बारे में। 5:45 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम प्रसारित करेंगे शाम 6 बजे। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 6:45 पर। इसमें आज आप सुनेंगे श्रद्धा जगताप की गाई चंद गजलें। 7:20 पर आप सुनेंगे चर्चा एवं लोक संगीत। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। 6:55 होने को ही संस्कृत में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: AM आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रोयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसोचितवान यत् प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातंत्र्य दिवसात् पूर्वमेव ISI इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकी जालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन 200+ सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षाबलैः 14 राज्याणां विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य 12 दिनाङ्के राज्यारक्षिबलैः सह

0: क्षणं गुप्त सूचनानां आदान प्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शाहजात भट्टी जालेन संबद्धानां विध्वंसात्मक प्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयं अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखंडे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां चतुर्विंशति दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्य प्रशासनेन 24-2000 वर्षस्य जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयं उद्घोषितवान्। राज्य प्रशासनेन 14-2000 वर्षादारभ्य झारखंड लोकसेवायोगेन अथ झारखंड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्ति परीक्षाणां व्यापक परीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः। किन्तु छात्रनेता पीयूष कुमारः उक्तवान् यत् 11-13 पर्यन्तानां जेपीएससी परीक्षाणां तथा केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणस्य अन्वेषणात् सम्बद्ध प्रदर्शनकारिणां याचनाः अद्यापि विचाराधीनाः सन्ति। प्रदर्शनकारिणः छात्राः उक्तवन्तः यत् ते स्वीया अवशिष्ट याचना विषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिम कार्याचरण विषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्ध रीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रीय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन 11 सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतु विभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व स्पर्धायां पुरुषाणाम् एकल वर्गस्य प्रथम चरणे विश्वस्य प्रथम क्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीन देशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगल वर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचंद अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम

0: से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार तीन स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालूद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती कुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासिमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
2: इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या
1: ये धरती ये नदिया ये रैना
2: और
3: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। प्रतीक्षा करें।

जनाब, अगर आपका मन बेचैन है तो शरीर अपने आप पूरी तरह से बेचैन हो गया होगा। इस मन को साधिए, प्रकृति से मिलकर खुद से कीजिए मुलाकात और कहिए गोल्ड सुप्रीम।

0: जी हाँ, ये मंगल की प्रभात है, मंगल की मुक्ता के साथ है। 7:00 क्या
1: है? शक्ति की सप्त धारा संकल्प का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की कार्य योजना, लखपति दीदी योजना के विस्तार और किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट और क्रियान्वित की जा सकने वाली कार्य योजना में बदलना है। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान, लखपति दीदियां, कृषि निर्यातक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का भी शुभारंभ होगा। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला और ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों पर 20 अगस्त को कलश वंदन और सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पावन कलश को कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर और ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 अगस्त से 10 सितंबर तक निर्धारित मार्ग पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उद्योग निवेश संवर्धन की सर्वोच्च सेंट्रल बॉडी की बैठक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। मुख्यमंत्री ने यहां राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास तथा कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्य प्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।
2: जिस प्रकार से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे समग्र रूप से देश को समृद्धशाली बनाने के लिए जो सबसे उत्कृष्ट भाव से काम हो रहा है, मैं कई सारे कामों के साथ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला हमारा ये रोजगार परक उद्योग है, जिसके माध्यम से न केवल देश समृद्ध होगा बल्कि राज्य भी कदम से कदम मिलाकर के न केवल समृद्धि के मार्ग पर चलेंगे बल्कि हर वर्ग के कल्याण के लिए इसी में से मार्ग निकलेंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जो कि उद्योग जगत के हम पर बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता, उद्योगों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार के समन्वय से विकसित की जा रही औद्योगिक परियोजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परीक्षा प्रक्रिया को ऑडिट कराने और सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन में डिंडोरी जिले ने देश के 100 चयनित जिलों में जुलाई माह में प्रथम रैंक प्राप्त की है। ये उपलब्धि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 36 योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वय से प्राप्त हुई है। इस योजना के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई और कृषि अधोसंरचनाओं को मजबूत करने तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि डिंडोरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक और जैविक खेती के साथ श्री अन्न मिलेट्स के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34,700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो कुटकी की खेती की जा रही है, जिससे 52,282 कृषक परिवार तथा 14 कृषक उत्पादक संगठन सीधे जुड़े हैं। जिले के पारंपरिक कोदो कुटकी उत्पादों को

जीआई टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। भारत सरकार की नागरिक उन्मुख पहल रिफॉर्म उत्सव के अंतर्गत जनमंथन विमर्श समाधान के माध्यम से नागरिकों से प्राप्त प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझावों के प्रभावी संकलन, जिला स्तर पर नागरिक सहभागिता और जन जागरूकता तथा गतिविधियों के समन्वय के लिए राज्य सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गुमशुदा और संकटग्रस्त नाबालिग बालक बालिकाओं की सुरक्षित घर वापसी के लिए संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुरैना जिले के थाना जौरा पुलिस ने गुम हुई चार नाबालिग बालिकाओं को 24 घंटे के भीतर जीआरपी सूरत के सहयोग से गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन से सकुशल पहुंचाया गया। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गईं। प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के रीवा बालाघाट सहित 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और सागर संभागों के जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बारिश का दौर बना रहेगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में खेला जाएगा। आपको समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा आज विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सतना जिले में कल सावन के तीसरे सोमवार को शहर से लेकर गांवों तक शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। दिन भर मंदिरों में हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। वहीं खंडवा के धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान ममलेश्वर की पारंपरिक भव्य सवारी निकाली गई। सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जबलपुर की ऐतिहासिक मदन महल की पहाड़ी पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अतिक्रमण के कारण करीब दो साल से रुका प्रोजेक्ट जरूरी जमीन खाली होने के बाद आगे बढ़ा है। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के ग्राम कुंडेकसा, अडोरी, कुरका और बांद्री में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए बच्चों में से 133 बच्चे स्वस्थ होकर अपने गाँव लौट गए हैं। शेष बच्चों का उपचार जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।
0: सुनहरे पल।
1: सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ

हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज़ से, मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना राहुल देव बर्मन का, संगीत और फिल्म का नाम है आंचल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बच्चों को काम सिखाऊंगा, लर्न एंड अर्न, करो सीखो और कमाओ। बच्चे जब काम सीख जाएंगे तो अपने आप परमानेंट रोजगार उनको मिल जाएगा और उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाएगी।
1: सीखो और कमाओ, सारे जहां छा जाओ।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर फिल्म का ये गीत। अनुराधा पौडवाल भूपेंद्र सिंह की सुमधुर आवाज है, विनोद पांडे का गीत और रघुनाथ सेठ का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब
3: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
7: खयाम का संगीत है साहिल लुधियानवी की शब्द रचना, मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर का स्वर, फिल्म का नाम है शगुन।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: चित्रगुप्त का संगीत, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का स्वर, फिल्म का नाम वासना, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम जमीन आसमान।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में जुदाई फिल्म का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मोना ठाकुर को नमस्कार।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। रात सवेरे के 8 बजने को है समाचार प्रभात आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। प्रतीक्षा करें।

आपके साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएस

0: एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
1: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद जेएससी सीजीएल के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने यह सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। यह प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की यह परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR

0: न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
1: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे इस महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
2: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
3: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में ये जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश

0: की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिन्दुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद एनटीए ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नागपंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ का समाचार अपने पहले पृष्ठ पर रखते हुए बिहार के लखीसराय में मची भगदड़ में 7 दर्शनार्थियों की मौत का समाचार भी बॉक्स में प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में विद्यार्थियों के जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यू को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। झारखंड गवर्नमेंट कैंसल्स जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन आफ्टर 24-डे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑल्सो कैंसल्स ऑल अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एजेंसी टीडीपीएल। US President Donald Trump praises India's voter ID system, hails it as a model for stricter US election rules. India to host 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today. Indian Army Chief General Dhiraj Seth conferred rank of Honorary General of Nepal Army by President Ramchandra Podel in Kathmandu. IMD issues red alert for a very heavy rainfall in Jharkhand today, and Ayush Shetty stuns world number one and defending champion Shi Yu Qi in first round of men's singles at BWF Badminton World Championships in New Delhi. And now the news in detail. Jharkhand government has cancelled JSSC CGL examination after 24-day students' protest in the state. It has also cancelled all other recruitment exams conducted by the private agency TDPL. The announcement triggered celebrations at the protest site in Ranchi, though the demand for a CBI probe remains unresolved. We have a report.
3: The Jharkhand government has decided to cancel the JSSC CGL examination and all competitive examinations conducted by the TDPL agency, besides announcing a probe into recruitment examinations conducted by JPSC and JSSC since 2014. The decision was taken at a special cabinet meeting chaired by Chief Minister Hemant Soren and was welcomed by protesting students at the Jaipal Singh

0: विविधा।
1: श्रोताओं, विविधा के कई रंग होते हैं और उन रंगों में आज हम एक रंग भरने जा रहे हैं। ओडिशी नृत्य का और उसकी विशेषज्ञ हैं ओडिशी नृत्यांगना अनुषा जैन। हम उनसे बात करने वाले हैं उनकी इस महारत के बारे में। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये यात्रा उन्होंने कहाँ से और कैसे शुरू की।
2: मेरी ओडिसी नृत्य की शुरुआत मैं बेसिकली जब पता तो नहीं था कि क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य भी कुछ होता है, शुरुआत तो मेरी वेस्टर्न नृत्य से ही हुई। पर जब मैं स्विमिंग क्लासेस भी जाती थी तो वहाँ से मेरी इस नृत्य की शुरुआत मुझे प्राप्त हुई, जहाँ पे मेरी एक दोस्त थी जिसके थ्रू मुझे इस नृत्य के जरिए मैं आगे बढ़ पाई। और इस नृत्य में मुझे मेरी गुरु ने सिर्फ ये कहा था कि आप मुझे सिर्फ ये एक्सरसाइज करके बता सकती हैं तो ही मैं आपको आगे इस नृत्य के लिए बढ़ा सकती हूँ। तो मैंने उस नृत्य में जो चौका और त्रिभंग था वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया, और जब वो मैम को करके दिखाया तो मैम ने उसके बाद इस नृत्य के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं कह सकती हूँ कि मैंने सफलतापूर्वक अपने 18 इयर्स ट्रावर्स कंप्लीट किए हैं, और इस नृत्य में मैं जितना भी सीखती हूँ वो बहुत कम है, लेकिन अपने गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनिशियली मैंने जो सीखा है गुरु श्री स्वर्गीय दाली दत्ता मैम जी से सीखा, और अभी मैं जिनसे सीख रही हूँ गुरु श्रीमती गीतांजलि आचार्य मैम। इस नृत्य में मैंने बहुत कुछ

0: लिखा, जिसमें बारीकी अगर हम देखें तो चौका, त्रिभंगी और अभिनय जो इस नृत्य का हृदय है, और मैंने बहुत कुछ जाना और सीखा है।
1: तो अनुषा, जब आपने शुरुआत की होगी तो आप तो बहुत छोटी रही होंगी,
0: जी सर,
1: तो प्रारंभिक शिक्षा आपको कैसे मिली फिर?
0: प्रारंभिक मैंने इंदौर मध्य प्रदेश में ही अपनी इस नृत्य की शुरुआत की, गुरु श्रीमती स्वर्गीय दाले दत्ता मैम के द्वारा ही। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक नृत्यांगना के लिए कि आप, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य का एक नृत्य है और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उड़िया भाषा से भी आपको रूबहू होना होता है, और जिसमें आप गाने के बोलों को जितना अच्छे से समझ पाएँ तभी आपके अंदर से वो फीलिंग, वो अभिनय आप दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है, और किसी भी डांस को सीखने से पहले उस संगीत का मीनिंग जाना है।
1: तो अनुषा, ये जो ओडिसी नृत्य है, ये जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सभी बड़े कठिन होते हैं। इनकी मुद्राएं, इनकी भाव भंगिमाएं, इनकी जो पोशाक,
0: जी
1: ये सब आप कैसे प्रबंध करते हैं, और ये सीखना कितना कठिन है, ये जो भाव भंगिमाएं हैं इसकी?
0: ओडिसी नृत्य एक पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अगर हम देखें तो ये जीवित रूप में एक सबसे महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। हमारे टोटल आठ हमारे जो क्लासिकल नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख भी किया गया है, उनमें से हम सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा टफेस्ट डांस कोई है तो वो ओडिसी नृत्य है। सबसे पहली चीज़, ये एक ऐसा ओडिसी नृत्य है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सिल्वर ज्वेलरीज या फिर वाइट कलर ज्वेलरीज को यूज़ करते हैं, जो किसी नृत्य में आप नहीं पहनते। और ओडिसी नृत्य दूसरे नृत्यों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें टॉर्सो मूवमेंट और चौका और त्रिभंगी है, जो किसी और शास्त्रीय नृत्य में नहीं किया जाता। ओडिसी नृत्य में हमें पल्लवी और अभिनय, जो कि इस नृत्य को दूसरे नृत्यों से बहुत अलग बनाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा हम गीत गोविंदा के श्लोक और हम संस्कृत श्लोक का भी बहुत उपयोग करते हैं, इसलिए इस नृत्य की वो चीज़ में सबसे ज़्यादा खासियत हम मानते हैं, और ये दूसरे शास्त्रीय नृत्यों से बहुत अलग माना जाता है।
1: अनुषा, अभी तक आपने कहाँ कहाँ अपना प्रदर्शन किया, किन किन मंचों का उपयोग किया, और किसी तरह के आपको पुरस्कार भी मिले होंगे,
0: जी,
1: तो इन सब के बारे में हमें बताइए।
0: शुरुआती दौर में मैंने जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होते थे वहाँ इस नृत्य को शुरू करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें जाना कि क्योंकि एक स्टेज फियर भी होता है जिसे हमें कम करना होता है, तो मैं समझती हूँ छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत की, जहाँ पे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, यहाँ पे जो भी मंचों में या जो भी फेस्टिवल्स में ऑर्गेनाइज होते थे वहाँ पे इस नृत्य की शुरुआत की। उसके बाद मैंने जैसे कालिदास अकेडमी में शंकार समारोह हुए, और गमक श्रृंखला जो कि अभी कोरोना के समय से चल रहा था, उसमें भी अपना उड़ीसी का प्रदर्शन दिया। उसके बाद ICCR जो कि बाल कला उत्सव के द्वारा आप चयनित होकर ICCR जैसे संस्था में अपना नृत्य परफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने किया है। उसके बाद बांग्लादेश पेट्रापोल बॉर्डर, जहाँ पे जो लोग चयनित होते हैं अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के द्वारा, उसमें भी मैंने वहाँ जाकर बॉर्डर पर इस नृत्य को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ जैसे गुवाहाटी और रायपुर में, जो कि हमारा राष्ट्रीय युवा उत्सव होता है 2015-16 का, वहाँ पे अपनी इस नृत्य की प्रस्तुति दी और बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जीता। साथ ही साथ जो मेरा सबसे यादगार पल है, बालश्री अवार्ड, उसमें भी जिसमें आपको हर एक कड़ी में जुड़ना होता है, जिसमें आपको संभाग के साथ साथ जोनल लेवल तक जाना होता है, उस नृत्य को भी मैंने करा है, जिसमें आपको बहुत सी एक्टिविटीज़ आना ज़रूरी है, गायन, वादन, ड्रामा और नृत्य के साथ साथ आपको अलग कोई नृत्य हो, जैसे कि फोक डांस और कथक जैसे का ज्ञान होना, उसमें भी मैंने इसमें किया है। कई पत्र पत्रिकाओं में मेरे साक्षात्कार आ चुके हैं, जैसे कि जिनागम मुंबई, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बाल पत्रिका देवपुत्र में भी, और मैंने अभी बहुत से जैसे दूरदर्शन भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद और उड़ीसा में भी अपना प्रस्तुति दिया है।
1: अरे वाह, तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं अनुषा आपके पास।
0: जी
1: तो ये बताएं फिर, आप जो पढ़ाई कर रही हैं, जैसा कि आपने बताया आप तो इंजीनियरिंग की छात्रा हैं,
0: जी
1: तो पढ़ाई के साथ और नृत्य, ये जो संयोजन है, ये आप इसको कैसे मैनेज करती हैं?
0: सर, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, मेरे इस पूरे नृत्य की जर्नी में मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे माता पिता का रहा है, और मेरे पिता वीरेंद्र जैन जो कि एक शिक्षक हैं, मेरी माँ ज्योति जैन जो कि एक गृहिणी हैं, दोनों का मेरी नृत्य शैली की लाइफ में बहुत बड़ा अतुलनीय सहयोग रहा है। क्योंकि ना मेरे पिता एक सबसे श्रेष्ठ पिता, साथ साथ एक दोस्त, एक गुरु, एक सहायक, एक लीडर हैं। मेरी माँ भी जिन्होंने मेरे खान पान का बहुत ख्याल रखा है, और उन्हीं की वजह से ना सिर्फ मैं अपनी नृत्य शैली पे सफल हो पाई, बल्कि एक NCC की कैंडिडेट, एयरविंग कैंडिडेट रही, पढ़ाई में संगीत

0: अपनी पढ़ाई पे दिया और मैं एज अ अपने पूरे स्कूल करियर में भी बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, कॉलेज में भी मैं एज अ यूनिवर्सिटी टॉपर साबित हुई। तो मैं समझती हूँ कि आपके साथ अगर कोई दूसरी एक्टिविटी आपका सपोर्ट करती है तो आपकी बहुत चीज़ें इंक्रीज़ होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और आपका स्टेज फियर बहुत दूर होता है।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें हैं अनुषा आपने बताई हैं। आप ये जो नृत्य की विशेषज्ञ हैं, ये तो आपका एक अतिरिक्त गुण है ही, और हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जैसे जो दूसरे छात्र छात्राएं हैं वो इसलिए ना डरें कि उनके जो अतिरिक्त गतिविधियां हैं, जिसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं,
0: जी
1: वो उनकी सहायक सिद्ध होंगी, ना कि उनके लिए समय की खराबी। तो ये एक अच्छा संदेश आपके माध्यम से हमारे सुनने वाले जो छात्र छात्राएं हैं या श्रोता हैं,
0: जी
1: उनके लिए बहुत काम ये आएगा। अनुषा, और आगे आपकी किस तरीके की योजना है? आप ओडिसी नृत्य ही आपका जो जीवन यापन, यानी कि जिसको हम करियर बोलते हैं,
0: जी
1: उसका माध्यम बनेगा, या ये आपकी जो इंजीनियरिंग की जो करियर है उसके साथ ये चलता रहेगा?
0: मैंने इंजीनियरिंग की सर जो शिक्षा प्राप्त की है, मैं समझती हूँ कि मैं इसे जोड़कर अपने इस नृत्य को आगे बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे डांसर्स हैं, कलाकार हैं जो अपने डिजिटलाइजेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि आज हमारी जो डिजिटल योजना है हमारे भारतवर्ष की, तो मैं समझती हूँ कि अगर हम अपना थोड़ा डिजिटाइजेशन नई चीज़ों में भी लगाएं, क्योंकि बहुत से लोग अपना नया स्टार्टअप्स खोलते हैं, तो मैं समझती हूँ नृत्य भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है, और जिसमें आप शास्त्रीय नृत्य ओडिसी कर रहे हैं जिसका प्रचार प्रसार अभी बहुत बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक उड़ीसा स्टेट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या और भी किन्हीं राज्यों की बात करें तो हम सिर्फ कथक और भरतनाट्यम को ही बहुत अच्छे से जान पाए हैं। ओडिसी नृत्य की जो प्रचार प्रसार में अभी जो कमी है, मैं समझती हूँ कि हम उसे दूर कर सकते हैं। और मेरी योजना ये है, क्योंकि मैं एक किताब लिख भी रही हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि हर कलाकार और सब वो व्यक्ति जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे, तो मैं समझती हूँ कि ओडिसी नृत्य को एक बहुत अच्छा स्टार्टअप के तौर पे हम देख सकते हैं, और मैं आगे आने वाले सालों में चाहती हूँ कि मैं ये डांस सबको सिखा सकूं, आश्रम में भी जाकर, जैसे कि मैंने बहुत से आश्रम में भी सिखाया है, श्रद्धानंद आश्रम, ज्योति निवास, तो मैं चाहती हूं कि ये लोग इससे जुड़े और इस नृत्य की बारीकियों को जानें और इस भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। और मैं चाहती हूँ कि सर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है यूटी कैप्टिवेट नाम से, जहाँ पर मैं इस नृत्य की बारीकियाँ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में समझाती भी हूँ। तो ये मेरी योजना है सर।
1: बहुत अच्छा अनुषा, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। अगर एक किसी छोटे बच्चे को ये सीखना हो तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, वो कैसे सीख सकता है?
0: सर मैं समझती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस नृत्य की शुरुआत की तब भी मैं बहुत कम वर्ष उम्र आयु की थी, तो मैं समझती हूँ कि हम जितने छोटे रहेंगे उतनी जल्दी बारीकियों को सीखने की हमारी जो लगन है, ग्रेस्पिंग पावर है, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, और हम बहुत सी चीज़ों को बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। तो हमें जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी चिल्ड्रन है सीखना चाहते हैं, मतलब 3 से 4 वर्ष की आयु में वो सीख सकते हैं, और बाद में भी अगर ये कोई सीखना चाहे तो ये उनके फिटनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये नृत्य। और इस नृत्य के जरिए आपके संस्कार बहुत, जैसे हमारी गुरु ने एक चीज़ सिखाई थी कि हमारे कुछ 5 Ds हैं जो आपको एक नृत्य में, नृत्य के साथ साथ एक कलाकार में होने भी चाहिए, जो कि है आपके डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन एंड डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी एक कलाकार में होनी चाहिए। फिर आप किसी भी फील्ड में हो, सिर्फ नृत्य की नहीं, संगीत, वादन, उनमें भी ये होना चाहिए।
1: तो हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहला संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि जिस तरह हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, इसी का अर्थ होता है कि हमारे नृत्य की उल्लेख हमारे शास्त्रों में की गई है, जैसे भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में की गई है, हमारे अभिनय दर्पण, अभिनय चंद्रिका जैसी किताबें हैं जिसमें हमारे शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख हमें मिलता है। तो हम जितना इस भारतीय संस्कृति से जुड़ेंगे तो हम समझते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो आज वेस्टर्न लोग्स, वेस्टर्न जो पीपल हैं उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति बचे रहे, जो ये सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, इसे हम खुद करें और लोगों तक इसका प्रचार बहुत आसानी से कर सकें। और इस नृत्य से जुड़ने का सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जुड़ेंगे तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा और प्यारा संदेश दे सकते हैं कि ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जिससे अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारा बहुत चीज़ें हमें पता चलेगी कि हमारे भारतवर्ष में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आज तक नहीं पता है, और जिसे मैं आज भी सीख रही हूँ, क्योंकि जितना हम इन डेप्थ जाएंगे तभी जाकर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं।
1: तो श्रोताओं ये थी

0: अनुषा जैन जो कि ओडिसी नृत्यांगना है।
1: धन्यवाद सर।
0: श्रोताओं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सार्थक एक ऐसे युवा लेखक हैं जिनकी उम्र बहुत कम है, सिर्फ 16 साल है, लेकिन 16 से ज्यादा पुस्तकें हैं वो लिख चुके हैं। और उनकी पुस्तकों का लेखन का जो मुख्य विषय है वो है साइंस फिक्शन। वो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो हो सकता है भविष्य में सही साबित हों, वो ऐसी तकनीकी चीज़ों को लिखते हैं जो हो सकता है आगे आने वाले सालों में हम खुद देख पाएं। तो उनकी इन्हीं विशेषताओं के ऊपर आज हम उनसे बात करने वाले हैं सार्थक से, और सार्थक हमें बताएंगे कि वो कैसा लेखन कर रहे हैं और वो कितना मज़ेदार है। तो सार्थक, इतनी छोटी उम्र में इतना सारा आपने लिख लिया, ये कैसे कर लिया?
2: मैंने कभी ऐसे सोच, राइटिंग मेरे लिए कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा ने, मेरी मम्मी ने स्पेशली मेरे को हमेशा से बहुत आगे बढ़ाया था इसी में। और फिर जब मैं 8-10 साल का था, मेरा बुक का लिखना तभी चालू हुआ जब मेरी मम्मी ने बोला मेरे को कि मैं बुक्स इतनी तेज़ पढ़ता हूँ तो मैं एक लिख ही देता हूँ। फिर मम्मा ने मेरी थोड़ी राइटिंग पढ़ी और फिर मम्मा ने डिसाइड करा कि पब्लिश करने लायक है।
0: तो फिर आपने अपना जो लेखन है वो कोई कहानी भी हो सकती थी, कोई कोई कविता, कोई पोइट्री हो सकती थी, कोई लेख यानी कोई आर्टिकल हो सकता था, फिर आपने ये साइंस फिक्शन, आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसके ऊपर ही लिखना है?
2: मेरे को हमेशा से इस टॉपिक से बहुत फैसिनेशन रहा है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। साइंस फिक्शन और मैजिक मैंने ऐसे कंबाइन करा है, तो जहाँ पे ऐसे लिखना जहाँ पे आपकी आपकी इमेजिनेशन कैसी भी जा सकती है, वो बहुत उसमें लिखने में बहुत मज़ा आता है।
0: वो किसी एक थीम और एक फिक्शन के ऊपर एक किताब है, या एक ही किताब में कई तरीके के फिक्शंस और थीम्स हैं आपके? अच्छा।
2: मैजिक और साइंस का मिक्स है। मेरा मेन टॉपिक है टेक्नो मैजिक, उसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और मैजिक को मिलाया है और उसी को यूज़ करते हैं। तो हाँ, आई वुड से कि एक ही थीम है मेरी बुक में, मेरी बुक्स में, और सब एक सीरीज़ हैं अभी तक, तो और लिखूँगा मैं आगे। और
0: ठीक है, तो जो पहली किताब आपने लिखी है उसके बारे में हमें बताइए, क्या क्या लिखा है उसमें आपने, और किस तरीके की उसकी थीम है, क्या फिक्शन है उसमें, क्या स्टोरी है?
2: हाँ, मेरी पहली किताब में 4 बच्चे रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि एक उन्हें साइकिलिंग एडवेंचर पे जाना है।
0: अच्छा।
2: तो जब वहाँ पे वो रहते हैं, वो एक घर पे रुकते हैं जिस घर की जो ओनर रहती है वो किडनैप हो जाती है।
0: अच्छा।
2: तो फिर वो घर के ओनर के 2 बच्चों के साथ और वो हमारे 4 मेन कैरेक्टर, वो एक फॉलो करते हैं जहाँ पे उनको एक प्लान मिलता है एक औरत का, जो जिसको हु वांट्स टू टेक ओवर द वर्ल्ड। फिर वो उस प्लान को रोकते हैं पहली बुक में। वो कैसे रोकते हैं आपको पढ़ के जानना पड़ेगा।
0: अगर हमारे श्रोता आपसे जानना चाहते हो कि कैसे आपने रोका, तो कुछ और विस्तार से बताइए हमें।
2: उन्होंने प्लान था उसका कि उसका प्लान था कि वो जो लोगों के ईयर ड्रम होते हैं उनको पियर्स करेगी और ईयर ड्रम के थ्रू छोटे छोटे रोबोट्स भेजेगी जो उनके ब्रेन को कंट्रोल करेंगे। वो उसने ऐसी मशीन्स बनाई थी जो वो कर सकती थी और वो रोबोट्स उसके रेडी थे। तो उन्होंने जो मेन रिसोर्स था, जिस लेक से मेन रिसोर्स आता था, उस रिसोर्स को ब्लॉक कर दिया, और उसको रिसोर्स को ब्लॉक करके वो मशीन चलना बंद हो गई। तो उनने प्लान को रोक दिया। पहली बुक
0: वाह
2: है ये,
0: वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसका क्या शीर्षक था, टाइटल क्या था आपकी इस किताब का?
2: पहली बुक का नाम है द वॉन्डरर्स द साउंड ऑफ द लेक।
0: बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, मज़ा आएगा आपकी किताब पढ़ के। और सार्थक, ये बताएं फिर अगली जो किताब है, अभी तक आप कुल कितनी किताबें लिख चुके हैं, पहले तो ये बताइए मुझे।
2: अभी मेरी 3 किताबें रह चुकी है और मैंने 3 शॉर्ट स्टोरी के एक 15-19-20 राइटर्स पूरे इंडिया से स्कॉलास्टिक की एक शॉर्ट स्टोरी प्रोग्राम में पार्ट लिया था। उस प्रोग्राम में मैंने 3 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और वो भी है मेरी खुद की पूरी लिखी हुई बुक्स 3 हैं, वो तीनों की तीनों सीरीज़ में हैं। द वॉन्डरर्स है सीरीज़ का नाम।
0: अच्छा, और जो दूसरी किताब है उसमें, उसमें क्या फिक्शन है उसके बारे में भी बताइए।
2: दूसरी किताब

0: अब में वो जो विलन रहती है वो सेम ही रहती है, उसका दूसरी किताब में प्लान रहता है कि वो उसका पहला प्लान तो खराब हो जाता है, तो उसका जो बैकअप प्लान रहता है वो यूज़ करती है। तो उसके अंदर वो अपनी सैटेलाइट्स बहुत सारी बना के मून की जगह में भेजना चाहती है। तो मतलब उसको मून को डिस्ट्रॉय करना रहता है, और उसने एक तरीका निकाल लिया है कि वो सारी सैटेलाइट्स मून को रिप्लेस करेगी, और फिर वो पूरी दुनिया पे सर्वेलेंस रख पाएगी मून के थ्रू। वो पूरी दुनिया, मून हमेशा दुनिया के ऊपर रहता है, तो वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी कहीं से भी कुछ भी कंट्रोल कर सकती थी। तो सेकेंड बुक में उनने वो प्लान रोकने की कोशिश करी।
1: और जो तीसरी किताब है उसमें क्या कंटेंट है आपका?
0: तीसरी किताब में वही प्लान होता है, वो पूरी तरीके से रोक नहीं पाते, बट वो फिर वहाँ से वो तीसरे एक दूसरे प्लैनेट पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो डिस्कवर करते हैं कि दूसरी स्पीशीज़ भी हैं, और उन स्पीशीज़ वही स्पीशीज़ एक उनमें से उनको किडनैप कर लेती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि जो चार मेन कैरेक्टर हैं, छोटा सा पार्ट है टाइप ऑफ मैजिक का जो उनको लगता है। और मैंने टेक्नो मैजिक के बारे में आपको बताया था, वो टेक्नो मैजिक में उनका मैजिक बहुत काम का होता, तो वो स्पीशीज़ ने उनको किडनैप करा और फिर उनको एक जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो एक रिचुअल परफॉर्म करके वो मैजिक का इस्तेमाल कर पाए।
1: तो सार्थक, ये जो आपकी किताबें हैं इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आने वाली किसी तकनीकी, किसी टेक्नोलॉजी का आधार भी हो सकती हैं ये किताबें आपकी। तो ये किताबें आपकी किसी वैज्ञानिक ने या किसी साइंटिफिक बेस्ड कोई जो कम्युनिटी हो या किसी इंस्टीट्यूट, उसने ये पढ़ी हैं आपकी किताबें?
0: रिसर्च के बाद मेरे को पता चला कि इतना करना पॉसिबल तो नहीं है, बट वही मैंने आपको बताया था साइंस फिक्शन में कुछ भी कर सकते हो, तो वही मैंने यूज़ करा और मैजिक और साइंस को मिला के आई फाउंड अ वे कि ये मैं यूज़ कर पाऊँ अपनी बुक में।
1: पर आपको ये नहीं लगता कि अगर ये किसी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास आपकी अगर किताबें जाएं, किसी ऐसे इंजीनियर, किसी ऐसे साइंटिस्ट के पास जाएं जो इनके ऊपर काम कर सके और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सके, डिवाइस कर सके कि ये जो आपने लिखा है ये आने वाले वर्षों में संभव हो जाए, ऐसा लगता है आपको?
0: हाँ, संभव हो सकता है भी, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है मेरी बुक का। नैनो टेक्नोलॉजी में हमारे एडवांसेस काफ़ी हो रहे हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ करा है मैंने, और फिर जो सैटेलाइट्स हैं, जो सैटेलाइट यूज़ करती है वो भी काफ़ी पॉसिबल है। तो हाँ, अगर कोई इंस्टीट्यूट मेरी बुक को देख के कभी कुछ डिसाइड करे तो पॉसिबल तो है।
1: तो आपने कभी कोशिश की कि जैसे अगर हम इंदौर की बात करें?
0: हाँ, IIT में एक प्रोफेसर हैं मेरे पापा की पहचान के, विश्वकर्मा जी,
1: डॉक्टर एस के
0: उन्होंने
1: विश्वकर्मा।
0: उन्होंने मेरी बुक्स पढ़ी है, उन्होंने प्रचार भी दिया था मेरी बुक्स। तो हाँ, IIT हमने करा है कांटेक्ट, तो उन्होंने कहा भी था कि मेरी बुक्स, उन्होंने पढ़ के कहा भी था कि अच्छी हैं।
1: अच्छा सार्थक, ये बताएं कि इन बुक्स की प्रतियों को आपने बच्चों को भी बांटा है ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि और बढ़ सके?
0: हाँ, हमने काफ़ी बुक्स दी हैं बच्चों को भी, और हम जो भी इस बुक का रेवेन्यू है वो सब चैरिटी में डोनेट करने वाले हैं। हाँ, बच्चे आई होप कि बच्चे मेरी बुक पढ़ के इंस्पायर होंगे लिखने के लिए भी।
1: सार्थक, आप स्कूल भी जाते हैं और खेलते भी होंगे, फिर आपको कब समय मिलता है आप इतनी सारी पुस्तकें लिख लेते हैं, कैसे समय निकाल लेते हैं आप?
0: स्कूल से आके तो स्कूल की पढ़ाई करता हूँ, पर फिर रात में या फिर कभी भी मेरे को एक घंटा कभी फ्री हो जाए मेरा, तो मैं, अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं होता तो मैं जो भी मेरे को थॉट्स हैं तब, या फिर मेरे को कोई स्टोरी के आइडिया हैं, मैं या कोई डायरी में नोट कर लेता हूँ, या फिर जब मेरा लैपटॉप होता है अपने लैपटॉप में नोट करता हूँ। बट स्टोरी का टाइम निकालना मेरे को अलग से पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरी जो क्रिएटिविटी है वो एक समय पे नहीं आती है, तो जब भी मेरा मन करता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दूसरी चीज़ जो कर रहा हूँ वो थोड़ा रोकने की कोशिश करूँ और अपना राइटिंग पे ध्यान दे पाऊँ।

0: वाह वाह, बहुत खूब सार्थक। तो सार्थक, आपके जो दोस्त हैं वो आपसे पूछते होंगे कि आप ये क्या लिखते रहते हैं, और बच्चे भी आपसे बात करते हैं, आपके साथ वाले बच्चे, आपके लेखन कार्य के बारे में?
1: हाँ, मेरे दोस्तों ने कुछ थोड़े बहुत ने बुक्स पढ़ी भी हैं।
0: हाँ
1: दोस्त हैं तो सब ने पढ़ी नहीं है, बट हाँ, मेरे दोस्त ने भी पूछा है। और हाँ, मेरे को काफ़ी काफ़ी लोगों ने काफ़ी दोस्तों ने पूछा बोला है।
0: और आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनको
1: हाँ
0: मालूम है आपके इस लेखन कार्य के बारे में, वो क्या कहते हैं?
1: हाँ हम हमारे मेरे टीचर्स मेरे हमारे हर भी हर साल जब भी इंग्लिश के टीचर को मैं बताता था, वो बहुत खुश होते थे। और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी सिद्धार्थ सिंह सर और मुक्तेश सिंह सर, वो भी काफ़ी उन्होंने भी मेरी बुक्स पढ़ी हैं। और वो भी स्कूल में भी मेरा काफ़ी स्कूल में भी मेरा काफ़ी ट्राई करते हैं कि मेरी बुक्स लोगों बुक्स के बारे में लोगों को पता चले और मेरे बच्चे बुक्स खरीदें और पढ़ें। वो मेरी हेल्प करता है कि अगर मैंने कुछ गलती करी लिखने के समय, या फिर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे को बता देते हैं एक रीडर, एक पढ़ने वाले के व्यू से, ताकि मेरे को भी पता चले कि कैसे अच्छे से लिखना है। मेरी मम्मी की इंग्लिश बहुत अच्छी है और मम्मा रीडिंग भी काफ़ी करती है, तो मम्मा ने बहुत हेल्प करी मेरी इस सब में।
0: वाह वाह, सार्थक राठी बड़े ही बिल्कुल यंग लेखक हैं, बच्चे हैं, लेकिन अंग्रेजी में महारत रखते हैं और साइंस फिक्शन में इनकी महारत है, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये लेखन कार्य हो ना हो एक दिन हमें सच साबित होते हुए दिखे। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ, सार्थक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए।
1: थैंक यू।
0: तो सार्थक, आप आकाशवाणी की स्टूडियोज में आए और आपने अपने लेखन कार्य के बारे में और अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के बारे में हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था विविधा कार्यक्रम आज। अब आज्ञा दीजिए ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को, नमस्कार।
2: विविधा
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, प्रस्तुतकर्ता थे बीपी चतुर्वेदी।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं बालकृष्ण धनगर और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

0: लोक संगीत में आप सुन रहे थे बालकृष्ण धनगर और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। हमारी आज की कलाकार हैं श्रद्धा जगताप।

दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। अभी आप सुन रहे थे श्रद्धा जगताप की गाई ये गज़ल। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रद्धा जगताप की ही गाई एक और गज़ल, अब एक हम बिछड़े।

सुगम संगीत में आप सुन रहे थे श्रद्धा जगताप की गई चंद गजलें। मीडियम वेव 465.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमिताभ दत्ता का सितार पर बजाया राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे अमिताभ दत्ता का सितार पर बजाया राग नट भैरव। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, प्रतीक्षा करें।
1: समाप्त होता है ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रातः के 10 बजे है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। राजधानी भोपाल में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। लगातार बारिश होने से जलाशयों में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है। शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के लेवल में भी इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने आगे भी कुछ दिनों तक शहर में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल में जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के लाल परेड मैदान पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास, किसानों, युवाओं और रोजगार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके साथ ही समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं और अदम्य साहस के लिए पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को पदक देकर सम्मानित किया गया। जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस खुशियों से भरा पैगाम लेकर आया। भोपाल केंद्रीय जेल में सजा काट रहे 15 बंदियों के अच्छे आचरण को देखते हुए आजादी की वर्षगांठ पर जेल से आजादी दी गई। 15 कैदियों में एक महिला शामिल थी। इन कैदियों को बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI की राजधानी भोपाल और नोएडा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। DRI ने 7.1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 नाइजीरियन और एक भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर भोपाल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शौर्य स्मारक के पास स्थित अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल के बोट क्लब में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का रविवार को समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक स्टेडियम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इन स्टेडियम्स के साथ विभिन्न खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 अगस्त को भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित पुण्य स्मृति कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 231वीं पुण्यतिथि पर किया गया। भोपाल स्थित मध्यप्रदेश विधानसभा भवन के विधान परिषद सभागार में संसद यूथ पार्लियामेंट 2.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के 58 युवा प्रतिनिधि शामिल हुए। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का समापन हुआ। इस साल आयोजन की थीम सपोर्ट ब्रेस्ट

0: लिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट रही। सप्ताह भर चले कार्यक्रमों का उद्देश्य माताओं और परिवारों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों और आमजन को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा। ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन का आयोजन भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 5 से 8 अगस्त तक किया गया। सम्मेलन में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, समुद्री सभ्यता, ज्ञान परम्परा और ब्रिक्स देशों के साझा सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और ज्ञान भारतम विषयक 3 विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इन दिनों सावन का पवित्र महीना जारी है। भोपाल जिले में श्रद्धालु सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में जल और दुग्ध अभिषेक के साथ श्रद्धालु भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। वहीं सावन सोमवार के मौके पर मंदिरों में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित उन्हीं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: सभी श्रोताओं को मोना ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं तैयार हो जाइए हमें फोन करने के लिए। अपनी पसंद के गीतों की सूची आप तैयार रखिएगा और वो गीत हों जो आपकी खुद की अपनी पसंद के हों और बेहतरीन नगमे आज आप चुनकर लाए हैं ऐसी हमें आशा है। मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी जिन श्रोताओं ने हमें पहले कॉल किया था कृपया वे हमें कॉल करें एक महीने बाद ताकि दूसरे नए श्रोताओं को मौका मिल सके। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फ़ोन कॉल्स। हेलो
4: हेलो
2: हाँ जी नमस्कार।
4: हाँ जी नमस्कार मैडम।
2: हाँ जी पहले अपना शुभ नाम बताएं।
4: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
2: नानाखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश से लोकेश जी बोल रहे हैं।
4: जी जी मैडम जी।
2: जी लोकेश जी अपनी पसंद का गीत बताएं।
4: ये आंधी फिल्म का गीत है तुम आ गए हो नूर आ गए है।
2: क्या बात है कार्यक्रम के आरंभ में ही आपने गीत बहुत प्यारा सा चुना है तुम
4: आज ये गुलजार साहब जी का जन्मदिन है।
2: जी किसका? गुलजार जी का। जी
4: गुलजार जी का
2: बिल्कुल
4: उन्हीं का गीत
2: जी
4: है।
2: जी हमारे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के एक महान हम कह सकते हैं कि महान कलाकार गुलजार साहब जिन्होंने जितने अच्छे फिल्मी गीत लिखे हैं उतनी अच्छी कविताएं हैं नज्म है गज़ल है उनकी और उनके जैसी लेखनी शायद किसी और शायर की नहीं।
4: जी मैडम जी और पुराने जो गीतकार हैं संगीतकार हैं
2: जी
4: मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे पुराने गीतों को भी जो गायक कलाकार हैं उन्होंने गाने भी गाए हैं और जो गीतकार हैं उन्होंने अच्छे गीत भी लिखे हैं
2: बिल्कुल
4: संगीत भी अच्छा बनाया है बहुत से मतलब ऐसे कलाकार हमेशा मतलब जी। हमारे जो गाने उनके सुनते रहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि गीत अच्छा लिखा गया है अच्छा संगीतबद्ध किया गया है अच्छा गाया गया है तो हमारे मन में उतरा है और
4: वो गीत तो
2: ना भविष्य थे ऐसे गीत हैं। जी बिल्कुल ऐसे गीत हैं अमर गीत हैं ये और ये कभी भी फीके नहीं पड़ेंगे ये गीत हमेशा नए और ताजे ही लगते हैं हमें।
4: बिल्कुल मैडम जी जितनी बार भी और सुनते हैं अच्छा लगता है और कहीं पर भी अगर दूर कहीं पर भी हमें ये आवाज भी इसकी सुनाई देती है ना गाने की तो ऐसा लगता है मन सुकून हो जाता है।
2: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहा है और अपना शुभ नाम बताएं।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई बहन जी मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में।
1: जी,
0: अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा बंदनी
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है
1: बहन जी, इस गाने में पुरानी यादें छिपी हुई है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सॉन्ग।
0: आपको आपकी बहन याद आ गई?
1: और क्या,
0: कहाँ रहती है आपकी बहन? जी,
1: मेरी बहन रहती है राजस्थान में, जिला 12 जिले में रहती।
0: तो राखी के बंधन, रक्षाबंधन के लिए आती है वो?
1: हाँ आती है ना बहन जी, वो तो हर साल आती है रक्षाबंधन के लाने।
0: बहुत ऐसा त्योहार है ये रक्षाबंधन का, जिसे सब भाई बहन सबको इंतजार रहता है जी। कच्चे धागों से बनी एक पक्की डोर है वो राखी।
1: डोर है बहन जी,
0: जी
1: सही है, सही
0: प्यार और मीठी शरारत भी है उसमें। राखी भाई की लंबी उम्र की दुआ भी मांगती है, बहनें लड़ती हैं, झगड़ती हैं, पर पता नहीं क्यों जब खिंच चली आती हैं राखी के त्योहार पर।
1: जी सही,
0: एक एक अधिकार से बोलती हैं कि भाई राखी पर मुझे ये चाहिए।
1: बहन का, जी बहन को भाई के ऊपर अधिकार है,
0: बिल्कुल अधिकार है। और हमारे हिंदुस्तान में तो ये एक जश्न, एक त्योहार है, और ऐसा त्योहार है,
1: बड़ा त्योहार है अपने हिंदुस्तान में, ऐसी बात नहीं। रक्षाबंधन,
0: पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, मिठाइयाँ बनती है। कौन सी स्पेशल मिठाई पसंद है आपको, बताइए। अपनी बहन के हाथ की कोई स्पेशल मिठाई आपको याद आती है, जो आपकी बहन ने कभी आपके लिए बनाई हो?
1: बिल्कुल बिल्कुल, लाती है वो वहीं से, उनके घर से ही बना कर लाती है।
0: क्या बात है। तो आपको कॉल करने के पहले
1: तो,
0: जी
1: मिठाई तो मिठाई होती है, मीठी रहती है, तो सब
0: बिल्कुल
1: पसंद है।
0: देखिए बहन के हाथ का तो, बहन के हाथ का तो नमकीन भी मीठा लगता है।
1: जी जी सही बोला आपने बहन जी, सही बोला।
0: तो चलिए आपकी बहन को समर्पित है ये गीत आपकी तरफ से
1: जी। मैं कुछ

0: मित्रों को याद कर सकता हूँ इसी सॉन्ग
1: हाँ जी बिल्कुल, अपने मित्रों को याद कीजिए।
0: हमारे मित्र हैं जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से सूर्य प्रताप सिंह यादव जी
1: जी,
0: और गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, और हमारे मित्र हैं लोखिन वर्मा जी, ये अभी उनका पहला कॉल था, और शेख हैदर खान जी हैं, और मध्य प्रदेश से हमारे मित्र हैं बलवंत कुमार वर्मा जी, और इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहा।
1: तो चलिए आपका पसंद का गीत।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद हम लेते हैं हमारा अगला फोन कॉल्स। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में।
1: थैंक यू। और आपके क्या हाल चाल है?
0: हमारे भी हाल चाल अच्छे हैं। आप सभी श्रोता यदि अच्छे हैं, हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, तो हमारे हाल चाल तो बहुत अच्छे हो जाते हैं।
1: जी जी। तो मुझे एक गाना सुनना है
0: जी।
1: मूवी का नाम है जी, वो मुझे कुछ कहना है और गाने के बोले, जब से देखा है तेरे हाथ का चांद।
0: जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, अलका याग्निक का गाया गीत।
1: जी जी
0: जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे गीत। और क्या करती हैं आप रीना जी?
1: मैं हाउस मेकर हूँ।
0: हाउस मेकर सबसे बड़ा जॉब है
1: ये तो, लेकिन मेरे यहाँ इतना काम थोड़ा सा कम रहता है, मतलब वैसे मतलब इतना ज्यादा नहीं है काम
0: जी।
1: और बाकी तो मेरी मम्मी ने शुरू से काम सिखाया ही है उन्हों, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि शायद ऐसी ससुराल मिलेगी। वो हमेशा ये सोच के रहती थी कि बेटा सारा काम आना चाहिए।
0: बिल्कुल, सचमुच आना चाहिए। और मुझे लगता है कि घर का काम करना एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जिम्मेदारी है, और जिसे हम सभी भारतीय महिलाएं कोशिश करती हैं कि हम अच्छे से उस काम को पूरा करें। और
1: जी
0: जहाँ तक हमारी मम्मियों का सवाल है, तो उन्होंने हमें अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें भविष्य में कोई परेशानी ना हो।
1: हाँ बिल्कुल सही।
0: तो चलिए
1: आप
0: जी,
1: प्ले कर
0: आपका गीत
1: दीजिए मेरा
0: सुना।
1: सॉन्ग।
0: बिल्कुल, आपके गीत
1: ओके
0: हम सुनाते हैं। धन्यवाद
1: जी,
0: कॉल करने के
1: नमस्ते।
0: लिए।

0: हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम, मैं एमपी विदिशा से शिवा लोहट बात करता हूँ, आपका नियमित श्रोता मैम।
0: शिवाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम इमेज हॉटलाइन में।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम, एमपी में जो बारिश हो रही है, काफी अच्छा लग रहा है। काफी अंतराल के बाद बारिश शुरू हो पाई है।
0: बारिश तो इंदौर में अच्छी बारिश नहीं हो रही है, बाकी जगह बहुत अच्छी है।
1: ये जबलपुर और ये अपना रीवा शहडोल,
0: जी वहाँ बहुत अच्छी बारिश है। और ये अच्छा है, बारिश बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि पानी हमारी नदियों में और हमारे कुओं को भर सके।
1: जी, और सबसे मेन मैम, जो डैम रहते हैं अपने अपने क्षेत्रीय, जो कि हमें साल भर पानी पिलाते हैं, और खेती बाड़ी में भी बहुत
0: जी खेती के लिए तो
1: पानी
0: बहुत
1: की
0: महत्वपूर्ण
1: जरूरत
0: है
1: थी।
0: बारिश अच्छे से होना।
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: जी अपनी पसंद का गीत आपने बताया।
1: मैं जान तेरे नाम मूवी से सुना दीजिए कोई भी गीत।
0: अच्छा, जान तेरे नाम फिल्म का गीत, ठीक है, हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: जी थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इमेज हॉटलाइन में अब हम लेते हैं हमारे अगले श्रोता का कॉल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, इमेज हॉटलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, मैं असम से अमल बसमतारी, सोनितपुर असम से।
0: असम से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी जी।
0: सोनिक नाम बताया आपने।
1: पहले भी कॉल कर चुका है मैं इस प्रोग्राम में, और 2 महीने के बाद फिर से कॉल किया मैंने।
0: अरे धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 महीने के बाद आपने कॉल किया है और देखिए आपका कॉल लग गया।
1: जी जी जी
0: जी। असम में कैसा है इस समय मौसम?
1: असम में तो बाढ़ आ रही, बारिश होते है और दिन भर तो धूप रहता है।
0: जी हमने सुना है बहुत बाढ़ आ रही थी असम में।
1: जी जी जी, यहाँ से 200-250 किलोमीटर के दूर में हुआ था, जैसे कि शिव सागर और ये जोरहाट, गुलाघाट, चौराहे, नाजिरा में हुआ था।
0: तो अभी सब सुरक्षित है वहाँ पर?
1: जान भी चले गए। हाँ हाँ,
0: अभी सब सुरक्षित है वहाँ?
1: अभी भी कहीं की जगह में फिर से बारिश हो गया, इसलिए पानी भर गया कहीं की जगह में, जैसे कि शिव सागर में।
0: तो पर्याप्त साधन है लोगों को बचने के लिए या सरकार सुविधाएं दे रही है?
1: सरकार तो सुविधा दे रहे और विभिन्न दल संगठन भी उसे सहायता दे के आ रहा है।
0: जी जी जी। तो ये हम सब भारतवासी ही हैं जो जब भी कहीं समस्या होती तो एकजुट होकर उसका सामना करते हैं।
1: जी जी जरूर
0: जी। तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: हिमालय पुत्र का कहीं भी गाना सुना दीजिए।
0: हिमालय पुत्र?
1: जी
0: ठीक है सर, हिमालय पुत्र का गीत हम आपको सुना रहे हैं। और असम से हमें इतनी दूर से कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी,
0: बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए जी। अब वहाँ पर
1: नहीं मिल रहा है, बहुत फोन कर रहा है साथियों भी।
0: जी जी, हम ये कहना आपसे पूछना चाहते हैं कि असम तक ये जो हमारी सुविधा है रेडियो सेट की, वो पर्याप्त आप तक अच्छे से पहुँचता है हमारा हर एक प्रसारण?
1: ऐप के माध्यम से
0: जी। आजकल जो ऐप के माध्यम से बहुत सारे नए श्रोता हमसे जुड़े हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ श्रोता हैं ऐसे जो हमें कहते हैं, जो हमारे परिचित हैं, कि वहाँ पर ये सुनाई देता है।
1: जी जी जी जी।
0: तो चलिए।
1: और ये तो रेडियो की वजह से है, तो हमें इस प्रोग्राम से शामिल होना नहीं सकते थे, लेकिन जो ऐप के माध्यम से जो हो गया तो सभी जगह से भी जहाँ पे रहो था इस प्रोग्राम सुन सकता है, जो रेडियो में तो इतने दूर से नहीं आते थे।
0: जी जी जी। तो ऐप के माध्यम से आपको सुविधा मिल गई है रेडियो सुनने की, मतलब रेडियो सुनने की जो हमारा शौक है वो हम ऐप के माध्यम से पूरा कर लेते हैं।
1: जी जी, हम तो बचपन से रेडियो सुन के आ रहे हैं।
0: जी, रेडियो ही साधन था हमारे मनोरंजन का, और देखिए रेडियो अभी तक साथ में है आप सभी के, और नए पुराने गीतों के साथ साथ जो हमारी संस्कृति को समेटे हैं, हमारी गरिमा को समेटे हैं रेडियो सेट, और उसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ही आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए नए श्रोता मिले होंगे, नए नए लोगों से आपका परिचय हुआ होगा। भले ही हम उन्हें चेहरे से नहीं जानते, पर नाम से जानते हैं कि अरे इस जगह से ये व्यक्ति बोलते हैं, इस जगह से ये व्यक्ति बोलते हैं, ये पत्र लिखते हैं, तो बहुत सारे हमारे नए नए श्रोता बन चुके हैं, नए नए दोस्त बन गए हैं।
1: जी।
0: तो चलिए आपका गीत तैयार है आपके रेडियो सेट पर आने के लिए।
1: जी, दोस्तों का नाम ले सकते हैं मैम?
0: बिल्कुल लीजिए, और गीत भी आपका हमने पीछे से प्ले कर दिया है।
1: हाँ जी, मेरा दोस्त है बिमल बसुमतारी, भाईकुन मुंडा, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाकी, देवाशीष हजूरिका, संजय मुंडा और गागे रभा, और

0: नीतू देव और लखेंद्र वर्मा को भी दे के देगा, जो उन्होंने फास्ट कॉलर था आज।
1: क्या बात है, और आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कोशिश कर रहा हूँ रेडियो से सुन सुन के जो हिंदी भाषा।
1: तो क्या बात है, रेडियो ने आपको, रेडियो ने आपको हिंदी भी सिखा दी। जी जी जी
0: जी जी जी,
1: तो चलिए अपने गीत का आनंद लीजिए।
0: ओके ओके, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम इमेज हॉट लाइन में।
1: जी मैम।
0: जी कौन?
1: ग्राम गोगावा तहसील मनावर जिला धार से मैं महेंद्र भगोरे मैडम।
0: महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम इमेज हॉट लाइन में। और वहाँ पर क्या बारिश अच्छी हो रही है
1: मैडम? अभी तो 8 रोज से बारिश नहीं हुई है।
0: अच्छा, बारिश नहीं हुई है
1: जी।
0: बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है उस जिले में?
1: अभी बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। आज से करीब 12 रोज पहले पानी आया था।
0: तो फसलों के लिए पर्याप्त नहीं है अभी? वो
1: अभी पर्याप्त नहीं है फसलों के लिए पानी। फसलों को और चाहिए, एक दो पानी और होना चाहिए।

0: जी जी तो कॉल कॉल लगा तो मैंने कहा चलो तो 5 मिनट बात कर लेते।
1: जी जी जी
0: जी
1: तो चलिए आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।
0: जी जी

0: हेलो हेलो।
1: जी हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार
1: नमस्कार जी,
0: जी। अपना शुभ नाम बताएं।
1: मैं अरविंद अग्रवाल।
0: कौन?
1: अरविंद अग्रवाल
0: अरविंद अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें शॉर्ट टाइम कार्यक्रम में
1: जी। धन्यवाद। मैं
0: जी कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी?
1: जी मैं श्रीनगर जिला महुआ उत्तर प्रदेश से।
0: श्रीनगर जिला महुआ उत्तर प्रदेश से। महुआ जिले का नाम आता है तो रफ़ी साहब का एक गीत याद आ जाता है, दोनों ने
1: नहीं
0: किया था प्यार मगर मुझे याद रहा वो भूल गई।
1: आप गलत बोल रही हैं, उसको
0: जी
1: गलत समझ रही हैं।
0: नहीं
1: महुआ
0: नहीं
1: है
0: वो
1: जी।
0: महुआ जी वो नाम है उसमें तो, पर ये पता नहीं क्यों ये जिले का जब नाम आता है तो हमें वही गीत याद आता है।
1: जी आप जी
0: जी अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: जी फिल्म का नाम रहेगा दलाल।
0: ठीक है, दलाल फिल्म का कोई भी गीत सुना दें आपको।
1: मतलब वो मिले ठहरे हुए में पानी ना मार तो, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार तो, वो सुना दीजिए।
0: ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, हम कोशिश करते हैं सर आपका, नहीं तो
1: फिर
0: दलाल
1: दूसरी
0: फिल्म
1: बोलूंगा,
0: का।
1: दूसरी
0: जी
1: बोल दूं फिर।
0: तो चलिए दलाल फिल्म का गीत हम। हेलो,
1: जी जी
0: दलाल फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं आपके रेडियो सेट पर।
1: जी

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन में।
1: मैं आपका शुभचिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ मोना जी।
0: संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी जी, और काफी वर्षों के बाद इंदौर केंद्र से मेरा संपर्क हुआ
0: जी।
1: और काफी प्रयत्नशील था, काफी प्रयास के उपरांत मुझे सफलता प्राप्त हुई।
0: तो यही तो कहा जाता है ना कि प्रयास करते रहिए, सफलता कभी ना कभी आपके चरण जरूर छुएगी।
1: जी जी, और मैं एक बात बताना चाहूंगा।
0: जी बताइए।
1: अभी मेरी उम्र अभी 85 85 वर्ष से चालू है बहन।
0: क्या बात है, आपकी आवाज से नहीं लग रहा कि आप 85 के हैं।
1: नहीं, ये तो आपका प्रेम है, आपका बोले तो मेरे प्रति जो एक मंगल कामना और सद्भावना है।
0: बिल्कुल, हमारी मंगल कामना हमेशा आपके साथ है,
1: और उसकी वजह से ही मैं आपसे जुड़ पाता हूँ और संवाद करता हूँ।
0: जी जी।
1: और आनंद के साथ जीवन यापन हो रहा है।
0: बढ़िया, आप आनंद में रहिए, मंगल कामना है आपकी, आपके लिए हम सभी श्रोताओं की और हम पूरे रेडियो केंद्र की आपके साथ मंगल कामना है। और हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे गीतों को सुनते रहिए, क्योंकि गीत भी एक थेरेपी है, म्यूजिकल थेरेपी जिसे कहा जाता है। तो गीत और संगीत के साथ में पता ही नहीं चलता कि समय कब बीत गया है।
1: जी जी जी, संगीत बोले तो जीवन का
0: आनंद
1: है।
0: जी बिल्कुल,
1: अभी
0: भाजन, सही बात है।
1: जब वो हर एक प्रकृति के हर चीज में संगीत भरा हुआ है।
0: सच बात है।
1: बच्चों की किलकिलाहट, पक्षियों का चिल्लाना, सरिता का बहना, प्रपातों का झंझनाहट, और वृक्षों का बोले तो पत्तों की जब
0: सरसराहट
1: चलते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी,
1: वो मन प्रसन्न हो जाता है।
0: और देखिए ना, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में हर एक बात के लिए, हर एक जगह के लिए, हर एक सुख के, दुख के, पेड़ के, पौधे के, झरने के, नदियों के, पहाड़ों के, सब तरह के गीत हैं।
1: जी जी, अपना दृष्टिकोण होना, देखने का एक जरिया होना, तो
0: जी जी,
1: सभी तरफ हमें संगीत और
0: संगीत सुनाई देगा।
1: मगर हम हमारी सोच, नकारात्मक सोच के वजह से हम आनंद को बोले तो उससे परिचित नहीं हो पाते, और अपना जीवन दुखमय और असहायता में महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सच बात कह रहे हैं आप, पर एक बहुत अच्छा सा आप हमें संदेश दे रहे हैं। और जो भी श्रोता आपको इस वक्त

0: तो सुन रहे हैं वो सचमुच में आपकी बातों को अपनाएंगे अपने जीवन में। और वैसे जो संगीत के माध्यम से जो भी हमसे जुड़ा है, जो भी श्रोता हमसे जुड़ा है, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, सबसे बहुत अच्छे से उनका जुड़ाव है, हमारी संस्कृति से जुड़ाव है, हमारी सभ्यता से जुड़ाव है और हमारे गीत और संगीत से हमारे सभी लोगों का जुड़ाव है। तो सावन के इस खास मौके पर आप कौन सा गीत पसंद करेंगे?
1: तो अभी सावन चालू है
0: जी,
1: और हरेक भारत वर्ष में सावन महीने को विशेष प्राधान्य दिया दिया
0: जी जी,
1: जिसमें इसमें पूजा पाठ और सभी प्रकार की साधना होती है
0: जी।
1: तो विषय को देखते हुए फिल्म बरसात की रात का गीत, गरजत बरसत सावन आयो रे, जिसे अपने सुधा मल्लोत अपने
0: सुमन कल्याणपुर,
1: हाँ सुमन कल्याणपुर और
0: कमल बारोट जी,
1: हाँ राइट यू आर, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मोना जी।
0: जी जी धन्यवाद। साहिर साहब की शब्द रचना है ये, लाजवाब उन्होंने लिखा है इस गीत को।
1: जी जी
0: जी, तो धन्यवाद। और इतना खूबसूरत इतना प्यारा सा गीत सावन में पसंद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी दिन मंगल हो।

0: हेलो हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालराना का इंदौर से।
0: पालदाना का इंदौर से। अमीना बी मंसूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में
1: जी मैडम,
0: जी। बताइए
1: कैसे
0: अपनी
1: मैडम
0: पसंद का। बढ़िया, अच्छे
1: आप
0: हैं।
1: कैसे हैं?
0: अच्छे हैं, आप भी सकुशल हैं
1: हाँ, मैं भी कुशल हूँ मैडम।
0: जी। अमीना जी, अपनी पसंद बताएं
1: पत्थर के सनम फिल्म का नाम है, पत्थर के सनम, और
0: जी।
1: गाने के बोले तोबा ये मतवाली क्या।
0: क्या बात है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गीत पसंद किया आपने। मुकेश जी का गाया एक बेमिसाल गीत।
1: जी
0: तो चलिए अमीना
1: मैडम,
0: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका
1: जी
0: गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: जी मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: हेलो
1: जी मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम इमेज हॉटलाइन में। अपना शुभ नाम बताएं।
1: अकरम खान बोल रहा हूँ, नूरी कॉलोनी से।
0: अकरम खान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में
1: जी।
0: नूरी कॉलोनी इंदौर से
1: जी। जी माणिकबाग क्षेत्र में।
0: जी माणिकबाग क्षेत्र में। अकरम जी अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: वो मन्ना डे साहब की आवाज है मैडम, कसम वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या।
0: क्या बात है, इतने अच्छे सावन के मौसम में आपको ये दुख भरा गीत कैसे याद आया।
1: बस कुछ लोगों का आजकल आसमान में उड़ रहे हैं
0: तो चलिए
1: चार पैसे आ जाते हैं ना, तो वो आजकल हवा में उड़ने लग जाते हैं।
0: अच्छा, तो उनको आपको ये गीत सुनाना है।
1: हाँ
0: तो चलिए अकरम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: हाँ।
0: आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: ठीक।

तो श्रोताओं, उपकार फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। मोना ठाकुर को अभी सभी श्रोताओं से निवेदन है कि जिन श्रोताओं ने हमें इस समय कॉल लगाया है, आज के दिन कॉल लगाया है, कृपया वे कुछ समय बाद अब हमसे मुखातिब हों ताकि नए श्रोताओं को मौका मिल सके। जो श्रोता हमसे बात नहीं कर पाते हैं, प्रयास

0: रहते हैं उन्हें भी मौका मिले। तो एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में कॉल करने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन श्रोताओं के कॉल नहीं लगे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम अगले कार्यक्रम में बात कर सकें, उनकी पसंद के गीतों को हम उनके रेडियो सेट पर सुना सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति सुनीता सिंह की है।

0: नमस्कार, बात आपके गीत हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, सेहत जीवन की वो धुन है जिसकी खूबसूरती का एहसास अक्सर तब होता है जब उसकी लय थोड़ी बिगड़ने लगती है। हम अपने दिन में कितने ही काम करते हैं, घर के, परिवार के, दफ्तर के और दूसरी जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इन सबके बीच क्या हम अपने शरीर और मन के लिए हर दिन थोड़ा सा समय निकाल पाते हैं? स्वास्थ्य के लिए हमेशा बड़े संकल्पों की जरूरत नहीं होती है। कभी सुबह की कुछ देर की सैर, कभी योग प्राणायाम, कभी पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी, तो कभी बस कुछ पल तनाव से दूर अपने साथ बिताना भी सेहत की ओर बढ़ाया गया एक सुंदर कदम होता है। क्योंकि स्वस्थ रहना केवल बीमारी से बचना नहीं बल्कि जीवन को पूरे उत्साह से जीने की तैयारी है। दवाइयां बीमारी आने के बाद आपको संभालती हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें बीमारी से पहले ही आपको बचाने का काम करती हैं। हर दिन की थोड़ी सी सजगता, थोड़ा सा अनुशासन और अपने लिए निकाला गया थोड़ा सा समय कल की सेहत के नाम सबसे खूबसूरत निवेश है। तो आज इस कार्यक्रम में हमें बताइए कि आप स्वास्थ्य का जीवन में क्या महत्व देखते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसा कौन सा एक काम है जो आप रोज करते हैं। हो सकता है कि आपकी वो छोटी सी आदत किसी और के जीवन को भी प्रभावित कर जाए। हेलो, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार सुनीता जी, मैं डॉक्टर अम्बेडकर विश्वविद्यालय डोंगरगांव महू जिला इंदौर से आपका नियमित श्रोता विवेक व्यास बोल रहा हूँ। आप कैसी हैं?
0: हम बहुत अच्छे हैं विवेक जी, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
0: आज के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे जरूरी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए है एक बेहतर नींद। आपको बताऊं, यदि हमारी नींद अच्छी होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और फिर सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह जो भी है हमारा योगा थोड़ा सा
0: जी
1: वो करता हूँ। और थोड़ा मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए जाता हूँ आधा एक घंटा, और थोड़ा दौड़ता भी हूँ। तो ये कुछ एक्सरसाइज हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, एक्सरसाइज आदमी को जरूर कुछ ना कुछ करनी चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है विवेक जी कि आप योग प्राणायाम भी करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं, है ना, और कसरत करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि नींद का बहुत महत्व है।
1: आजकल सुनीता जी, नींद का जो अपनी आम भाषा में यदि हम गए ना तो टोटे पड़ गए हैं। क्योंकि क्या है, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमें रात 12 बजे से 4 बजे तक तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खास तौर से हम युवा पीढ़ी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, है ना, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और युवा पीढ़ी को तो हमने बोल दिया है, लेकिन जो बात हमें उतने ही करनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हम मोबाइल का प्रयोग जहाँ तक कम करेंगे तो हमारी युवा भी देखेंगे और हम हमारी इस बात पर ध्यान देंगे।
0: बिल्कुल, तो विवेक जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी नींद का बहुत ख्याल

0: रखते हैं। और सच है कि जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है हमारा कि हमारी नींद उससे बहुत डिस्टर्ब होती है।
1: ये बात मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरी फेवरेट है और मैं आपका वतन का राग हमेशा सुनता हूँ, और आपने डॉक्टर बशीर बंदर पर एक प्रोग्राम दिया था जो मुझे बहुत पसंद आया।
0: जी जी जी,
1: बहुत दिनों बाद हमारी बात मेरे ख्याल से आपसे पहली बार हुई है, तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था और वतन का राग भी बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जुड़े रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। बहुत आभार, नमस्कार।

0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताइएगा।
1: नमस्कार, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोलता हूँ। दीदी, नियमित श्रोता हूँ।
0: जी जी,
1: भोपाल अपना आकाशवाणी का कार्यक्रम हमारे यहाँ 11 बजे से 3 बजे तक सुनाई देता है। आप यहाँ रेडियो पर ही मैं कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है।
1: करीब 1985 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ।
0: क्या बात है, तो आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं हमारे राजेश जी। अब हम आज के विषय पर जानना चाहते हैं आपका विचार, कि आज के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे। स्वास्थ्य का क्या महत्व है जीवन में, और ऐसा एक कौन सा काम है जो आप रोज करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए?
1: स्वास्थ्य के लिए तो जैसे हम ज्यादातर पैदल चलना, ये हम मतलब गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, ज्यादातर पैदल ही हमारे काम निपटाते हैं, हम जो भी आसपास के कार्य रहते हैं। और
0: जी जी,
1: मतलब ज्यादातर जैसे जो चीज उससे हो सकती है उसको परिसारी करके ही करते हैं। जैसे
0: बहुत अच्छी बात है
1: भाई, ये गाड़ी ही इसका उपयोग करें अपन।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और खान पान में भी जैसे सावधानी रखते हैं कि भाई ज्यादातर बाजार की चीजें नहीं खाते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य अपना अच्छा बना
0: अच्छा
1: रहे,
0: रहे।
1: कोई सा भी काम मैं पैदल चल के निपटाता हूँ ज्यादातर, जहाँ तक बनती है मेरी कोशिश।
0: हाँ हाँ हाँ, तो राजेश जी बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर के, कि देखिए आपकी जो ये बात है कि आप बहुत से काम पैदल चलकर करते हैं। कई बार होता है कि बहुत छोटी सी दूरी के लिए भी हम ये सोचते हैं कि गाड़ी हो हमारे पास और गाड़ी से ही जाएं, ये हमारे मन से बात निकल ही चुकी है कि पैदल भी कहीं जाया जा सकता है। तो ये बात आपने हमारे सुनने वालों को याद दिलाई है, ये बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, मैं सभी श्रोताओं से भी यही कहना चाहता हूँ कि अधिकतर अपने

0: मतलब मेहनत करके और काम करे, ऐसा नहीं कि भाई गाड़ी पे बैठ के फुर्ती से हो जाएगा, उसमें शरीर को नुकसान होता है, शरीर भारी होता है और शरीर की ऊर्जा नहीं बनी रहती है।
1: तो आपकी तरफ से संदेश कि पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए।
0: बिल्कुल, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए।
1: बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइएगा।
1: धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। मैं गोवर्धन जिला वाशिम महाराष्ट्र से रविंद्र पवार बोल रहा हूँ दीदी।
0: तो रविंद्र जी, आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं?
1: आज का विषय तो दीदी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। और जो रोज का अपना दो टाइम खाना, अच्छा खाना, और ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है दीदी, अपना शरीर अच्छा रखना।
0: जी जी, तो मतलब स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है।
1: हाँ दीदी।
0: तो आप क्या करते हैं रोजाना अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए?
1: मैं मेरे गांव में सैलून की दुकान है, और सैलून की दुकान में काम करते वक्त मैं अपना भोपाल स्टेशन के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ दीदी, आपकी फरमाइश।
0: जी जी जी जी।
1: सुने।
0: हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से

0: एक मनोरंजन करते हुए, निश्चिंत रहते हुए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आप बनाते हैं, है ना?
1: मेरे घर में दीदी बचपन से ही मेरे माताजी पिताजी रेडियो सुनते थे, उन्हीं की वजह से मुझे ये शौक लगा दीदी, और मैं काम करते करते सब अपने प्रोग्राम सुनता हूँ और मुझे अच्छा लगता है दीदी।
0: बहुत अच्छी बात है रविंद्र जी कि आप आकाशवाणी का साथ बनाकर रखते हैं स्वास्थ्य के लिए, है ना?
1: और मैं दीदी पहले गुरु मुझे मेरे माताजी पिताजी, और दूसरे गुरु मैं आकाशवाणी को मानता हूँ दीदी।
0: क्या बात है। ये जो सम्मान आपने आकाशवाणी को दिया है, इसके लिए आपका आभार। आपने हमें फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, बात
1: मेरी
0: आपकी
1: सेना
0: किधर?
1: को नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ तुलसीराम व्यास।
0: तुलसीराम व्यास जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से मालेगांव से बोल रहा हूँ।
0: तो तुलसीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: अरे बात, आप तो बिल्कुल स्वागत करने के लिए बैठे हो, सबका स्वागत करते हो, आप पूरे हिंदुस्तान का स्वागत करते हो आप।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी पूरी उदारता के साथ बाहें फैलाकर अपने सभी सुनने वालों का
1: और
0: स्वागत करती है।
1: पूरे हिंदुस्तान की बहना हो आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुलसीराम जी, आज हम बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का जीवन में क्या महत्व है और आप अपनी दिन

0: दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक काम करते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे?
1: देखो, स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी दौलत से भी अच्छी चीज है
0: जी, सबसे बड़ा धन है।
1: सबसे बड़ा धन यही है, लेकिन आज के समय में लोग शरीर से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। और शरीर सबसे अच्छी चीज है, शरीर अगर अच्छा है तो आप सारे काम कर लोगे, भगवान की आराधना कर लोगे, परिवार का ख्याल रख लोगे।
0: क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की तमाम संपत्ति के बावजूद आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते हैं, है ना?
1: शरीर अगर अच्छा है तो सारी चीजें आपको घर बैठे मिल जाएगी।
0: जी जी, तो ये बताइए तुलसीराम जी कि हाँ, आपकी दैनिक दिनचर्या में कौन सी एक बात शामिल है अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए?
1: मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले योगा करता हूँ।
0: अच्छा।
1: और योगा के बाद मैं मंदिर जाता हूँ। और मैं अभी यानी कम से कम मेरी उम्र है 80 साल की।
0: अच्छा जी जी।
1: हाँ, 80 साल में भी मैं अकेला दौड़ता हूँ।
0: क्या बात है। तो
1: मेरे हाथ पर इतने अच्छे हैं बहन, बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल।
1: ना मेरी कमर दुखती है, ना मेरे को कोई गोली लेने की जरूरत है। आज तक के मैंने कोई गोली नहीं ली। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा लगा मेरे भोलेनाथ ने।
0: क्या बात है। तो तुलसीराम जी, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं, आप योग करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य यूं ही बना रहे, आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहें, खूब स्वस्थ रहें और बहुत आनंदित रहें।
1: आकाशवाणी का आशीर्वाद चाहिए हमको, और ईश्वर भोलेनाथ का सावन का महीना चल रहा है।
0: जी जी जी,
1: भोलेनाथ आप पर भी विश्वास रखे, आपके परिवार को अच्छा रखे, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो मेरी बहना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।
1: आपका शुभ नाम नहीं जाना मैं?
0: सुनीता सिंह।
1: ओहो वाह, आप तो बहुत पुराने हो।
0: जी जी,
1: आकाशवाणी के यानी एक स्तंभ हो आप।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी,
1: स्तंभ को कोई हिला नहीं सकता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत आभार आपने फोन किया।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दीजिए।
1: आदरणीय मैम जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं आपका नियमित श्रोता मैम जी, जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार बात कर रहा हूँ मैम जी।
0: कमलेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने हमें फोन किया है। कितने दिन के बाद फोन किया है?
1: मेरे ख्याल से मैम जी लगभग 12-13 दिन हो गए, उसके पश्चात बात हो पा रही है आज।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे हमारे श्रोता इस अनुशासन का पालन कर रहे हैं कि एक सप्ताह या 10 दिन के बाद ही वो फोन लगाएं। बताइए, आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए मैम जी, आपसे मुलाकात हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपकी आवाज़ सचमुच में मीठी है, थोड़ी तारीफ कर दूं। तारीफ के लिए सभी का रहना, खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें।
0: जी,
1: तो मैं अपनी बात करूं स्वस्थ रहने के लिए मैम जी, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं कि मैं अपने आप को समय देता हूं, सबसे बड़ा समय देता हूं कि मैं सुबह उठ करके 10-20 मिनट लगभग आधे घंटे शारीरिक रूप से व्यायाम करता हूं।
0: जी,
1: बस इसलिए मैं स्वस्थ रहता हूं। वो अनायास कोई स्थिति बने, मौसम का असर हो जाए,
0: जी
1: वो बात अलग है, लेकिन मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को समय देता हूँ।
0: कितना समय देते हैं?
1: सुबह उठ जाता हूँ मैम जी 4 बजे, रोज की दिनचर्या मेरी चाय नाश्ते की दुकान है, तो उस कारण से भी उठना पड़ता है, लगभग आधे घंटे तक समय में देता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप योग प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर को समय देते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। तो मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर और भी जो हमारे सुनने वाले हैं वो इसलिए प्रेरित होंगे कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं अपने रोजगार के लिए, और उसमें आप अपने स्वास्थ्य को भी देखते हुए अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता है, हम बहुत व्यस्त हैं, काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं योग प्राणायाम। लेकिन देखिए, आप उसके उदाहरण हैं कि आप सुबह 4 बजे उठकर लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ करते हैं।
1: देखिए मैम जी, स्वस्थ और मस्त रहने के लिए मैं तो कहूँगा सुबह उठना चाहिए, सुबह
0: जी
1: अपने
0: जी
1: आपको समय जरूर दीजिए।
0: जी,
1: और सबसे मैम जी इसके बाद मैं ये भी करता हूँ कि कुनकुना पानी रोज ही लगभग 1.5-2 गिलास के लगभग पीता हूँ,
0: पीते हैं गर्म पानी। तो चलिए, ये भी आपकी तरफ से एक सुझाव हमारे दूसरे सुनने वालों को मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है कमलेश जी कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो आपको सुनकर भी कुछ प्रेरित जरूर होंगे। बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ मैं, अनूपपुर जिले से।
0: नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। आज के विषय पर आपके विचार जानना चाहते हैं।
1: स्वस्थ, अगर अपने जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले तो अपने खान पान को ध्यान रखना पड़ेगा। और वही है कि दिनचर्या में व्यायाम को जरूर अपनाए अपने जीवन में, तब आप स्वस्थ रहेंगे। रोजमर्रा जी, मैं व्यायाम करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ सुबह 6 बजे। जी मैम,
0: बहुत अच्छी बात है कि सुबह 6 बजे उठकर आप सैर के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी आदत है। खान पान की आपने बात की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, कसरत करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, लेकिन अगर खान पान आपका उचित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य बन नहीं पाता। तो किस तरह से ध्यान रखते हैं खान पान का?
1: जी मैम, खान पान को हमेशा जो हमको जान ले कि हमें खान पान में चीज नुकसान है उसको हमेशा सेवन नहीं करना चाहिए, अपने खान पान में ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: मौसम के हिसाब से भी खान पान को ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, मौसम के हिसाब से हमें खान पान रखना चाहिए अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मौसम के हिसाब से शरीर अनुकूलता बनाता है ना।
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप गर्मियों में बहुत गर्म चीज खाएं या सर्दियों में बहुत ठंडी तासीर की चीज खाएं या बारिश में, या कभी भी बाहर का खाना तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है ना, खुला हुआ खाना, बाहर का खाना। तो कोशिश करें ताजा खाना खाएं, घर का बना खाना खाएं।
1: बिल्कुल मैम, घर का अपना बना हुआ खाना, अगर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो घर का बना हुआ खाना टिफिन में रख के जाएं, बाहर का खाना खुला के नहीं खाना चाहिए मैम।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। अक्सर आजकल मैं देखती हूँ कि अगर कोई यात्रा पर जाता है तो एक सोच हो जाती है कि बाहर से ही खा लेंगे, कौन टिफिन बनाए और कौन ले जाए, है ना। लेकिन अपने घर का बना खाना अगर आप लेकर जाते हैं तो बहुत सुरक्षित हो जाता है वो, इसलिए घर के खाने को आप प्राथमिकता दें। तो बहुत अच्छा लगा नीरज जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। आप तक भेजते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने अगले श्रोता का। अपना परिचय दें।
1: जी नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, तो दिनकर जी क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: मैं इस विषय पर, तो ये आपका बहुत बढ़िया विषय है कि स्वास्थ्य, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
0: बिल्कुल,
1: और आपका सबसे बड़ा जो है धन है स्वास्थ्य। पहला धन निरोगी काया, फिर दूसरा धन घर में हो माया।
0: जी,
1: तो आपने पहले धन की बात किया, अगर आप स्वस्थ हैं तो कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
0: बिल्कुल, तो
1: क्योंकि आपके पास एनर्जी है, क्योंकि शक्ति का ही प्रदर्शन है, और आपके पास अगर शक्ति है, और चूंकि आप इंसान है, तो अगर आपके पास बुद्धि वाली शक्ति है, तो जब दोनों शक्तियां एक साथ मिल जाएंगी तो आप किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बना रहे, इसके लिए आप क्या करते हैं?
1: मैं तो इसके लिए तो पहले संतुलित आहार लेता हूँ, लेकिन हर रोज जो मेरा शामिल होता है वो योग होता है, लगभग 30-40 मिनट के आसपास। अगर जल्दी काम में निकलना है तो 30 मिनट, नहीं 40-45 मिनट।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने जीवन में योग को शामिल किया हुआ है ना?
1: जी जी जी, और ये लगभग मुझे करीब 2005 से जो है 20-21 साल हो गए।
0: क्या फायदा आप देखते हैं? ये सवाल मैं कर रही हूँ ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी योग को अपने जीवन में अपनाएं, कि आपको जो फायदा हुआ है वो उन्हें भी हो सके।
1: बिल्कुल, और दीदी जी एक और भी है कि ये आप स्वस्थ रहने के लिए, अगर आप नाइट में कोई कार्य नहीं करते हैं तो नाइट में बिल्कुल जल्दी आराम करें, और जो सुबह मॉर्निंग की हवा है, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल जमाना, 24 घंटे लोग चलते हैं, तो जो नाइट में जब जगते हैं तो उनके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन जिनका दिन में ही कार्य समाप्त हो जाता है वो जल्दी सोए और सुबह मॉर्निंग ऑलरेडी 4 से 5 के आसपास जग जाएं।
0: बिल्कुल, कहा ही जाता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो ताजी हवा और सैर, जो भी आप वॉकिंग करते हैं, सब बहुत फायदा करता है स्वास्थ्य को। लेकिन अब जो हमारी दिनचर्या है, जिस तरह की जीवन शैली है दिनकर जी, उसमें खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो यूं ही घूमने के लिए निकलती है रात में।
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया फरमाया आपने, लेकिन मैं, आपने युवा पीढ़ी का नाम लिया तो एक डायलॉग सुना दूं अगर आपको जो है
0: जी
1: इजाजत।
0: जी जी जी,
1: कहते आज के युवाओं के पास कलम भी है, कंप्यूटर भी है, और हिंदुस्तान

आपने संदेश दे दिया है कि नशे से दूर रहें और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाकर रखें, दिनचर्या अच्छी रखें, स्वस्थ रहें, ताकि देश प्रगति की राह पर बढ़ता रहे। बहुत अच्छा लगा दिनकर जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे अगले श्रोता का। नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं चिरमिरी कुराशा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोलता हूँ।
0: इंद्रभान जी कैसे हैं?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। और ही आपका कार्यक्रम में फोन कर रहा हूँ। फोन लगता था मैडम, लेकिन नेटवर्क गड़बड़ होने से बात हो नहीं पाता था, कट जाता था
0: जी।
1: इससे परेशान था, अभी कैसे कैसे नेटवर्क लगा।

0: अभी नेटवर्क गड़बड़ था, बहुत
1: जी
0: नेटवर्क
1: जी
0: गड़बड़
1: बारिश है तो थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या तो रहती है। तो चलिए बताइए आज के विषय पर आपका क्या कहना है।
0: जी मैडम, सेहत और स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले अपने शरीर के प्रति हमको विशेष ध्यान देना चाहिए और सबसे पहले हमें उतना चाहिए और हमें शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ता है या कुछ भी परेशानी होता है तो हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति हमको सबसे पहले अपने उचित डॉक्टर के चिकित्सक से सलाह लेने से और उनको मतलब दिखाना चाहिए और इसके बाद जो भी दवाई देते हैं तो वो उसको दवाई को खाना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई दवाई नहीं खाना चाहिए और नियमित प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए, उतना जल्दी उतना चाहिए और इसके बाद उठ के पैदल चलना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए तो हो सकता है शरीर में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता है। मैडम
1: जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपना इलाज स्वयं न करें, कोई परेशानी हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। रोजाना आप क्या क्या अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं स्वस्थ रहने के लिए?
0: जी स्वस्थ रहने के लिए मैडम सबसे पहले तो हम सबसे मन को पसंद करते हैं और
1: अच्छा।
0: सबसे पहले व्यवहार बढ़िया बनाते हैं, वातावरण बढ़िया बनाते हैं और इसके खान पान भी बढ़िया रहता है और खान पान उसके बाद पैदल भी खूब चलते हैं और व्यायाम भी हो जाता है, मन भी अच्छा लगता है, काम भी अच्छा करने का मन करता है।
1: क्या बात है,
0: बीमारी परेशानी नहीं होती।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, मन प्रसन्न रखते हैं, बहुत आवश्यक है ये। अक्सर लोग जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं जो कि जरूरी है, लेकिन मन एक बहुत बड़ा कारक है, आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। तो मन प्रसन्न रखते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं और योग प्राणायाम कसरत और वॉक करते हैं आप, है ना?
0: जी मैडम, और खान पान भी बढ़िया रखते हैं।
1: जी जी, तो इंद्रभान जी हमें लगता है कि आपकी बात सुनकर हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी जरूर प्रेरित होंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, वो भी अपना मन प्रसन्न रखेंगे। वैसे मन प्रसन्न रखने के लिए आकाशवाणी का साथ भी बहुत अच्छा होता है
0: मैडम, सबसे अच्छा रहता है जो हम जो हंसते हैं
1: जी,
0: तो सबसे बड़े बढ़िया रहता है, हंसने से भी मन अच्छा लगता है और शरीर में कोई बीमारी परेशानी नहीं होती, सब जितना बीमारी रहता है सब ठीक हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, गाते गुनगुनाते रहिए। बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: हेलो
1: मैडम, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: तो नारायण प्रसाद वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आज के विषय पर?
1: हाँ मैडम जी, जैसे क्या है, हमारे जीवन में और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खान पान का बहुत बड़ा विशेष महत्व है मैडम जी। जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखना, अपने खान पान के दिनचर्या में स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन, और जैसे अभी क्या है मैडम जी, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़े हानिकारक होता है मैडम जी, रासायनिक युक्त खेती। तो हमको अपने खेती में भी ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जैविक खेती करें। और जैसे वैज्ञानिक लोग बताते रहते हैं, खेती में भी स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य है, अपना स्वास्थ्य एक ही समान है मैडम जी।
0: क्या बात
1: तो,
0: है।
1: हाँ, तो इसके लिए हमें यही विशेष ध्यान देना है मैडम जी।
0: बहुत अच्छी बात,
1: स्वास्थ्य है हमारा, पर्यावरण सही तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा मैडम जी।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है नारायण प्रसाद वर्मा जी, कि मिट्टी के स्वास्थ्य से हमारा स्वास्थ्य जुड़ा रहता है। जैविक खेती की आपने बात की, बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से हमारे सुनने वालों तक पहुंच रहा है। अब हम जानना ये चाहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में कौन कौन सी बातें रोज शामिल करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए।
1: हाँ मैडम जी, हम तो विशेष करके अपने खान पान में ध्यान देते हैं मैडम जी। हमारा जीवन है, हमारे जो दिनचर्या है वो नशा मुक्त होना चाहिए। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा मैडम जी।
0: बिल्कुल।
1: और जैसे खान पान की बात है तो अधिक अपने घर में जो खान पान है वही सही रहता है मैडम
0: जी,
1: जी। बाहर से तो खाना हमको ठीक नहीं लगता है
0: जी।
1: और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए है, बाहर की क्या भरोसा मैडम जी, क्या खिला रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: क्या
0: बिल्कुल।
1: बना रहे हैं।
0: आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नशे से दूर रहें स्वास्थ्य के लिए, और दूसरा बाहर का खाना आप बहुत कम खाते हैं, कोशिश करते हैं घर का बना ही खाना खाएं। बच्चों के साथ लेकिन आजकल मुश्किल होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है बाहर का खाना खाना, तो है ना, तो अपने बच्चों को भी ये संस्कार हमें देना चाहिए कि वो घर का बना खाना ही खाएं, ताजा खाना खाएं और स्वस्थ रहें। तो नारायण प्रसाद वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया, बहुत आभार।

दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने शरीर की आवाज को सुनें, उसके संकेतों पर हम गौर करें, अपने जीवन को उसकी जरूरत के अनुसार थोड़ा सा संवारते रहें। तो अपनी दिनचर्या में सेहत के नाम एक छोटा सा हिस्सा जरूर बचा कर रखिए, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए निकाला गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जब शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और भीतर ऊर्जा से भरा हुआ हो, तब जीवन सिर्फ बीतता नहीं है, जीवन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल उठता है। तो याद रखिए कि जिंदगी लंबी हो ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन जिंदगी स्वस्थ हो ये जरूर आपके हाथ में है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आज से अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एमिस्टलफेन में भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और बैडमिंटन

बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है आपके पसंदीदा गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम एक ऐसे अजीम शायर, गीतकार और निर्देशक के नाम है जिन्होंने भाषा को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उसे एक नया रूप, नई खुशबू और नया एहसास दिया है। वो हैं गुलजार साहब। शब्दों के जादूगर, एहसासों की बारीक बुनावट और नज्मों के बहते दरिया को अगर किसी एक नाम में पिरोना हो तो वो नाम है गुलजार। जी हाँ, तो आज कार्यक्रम में गुलजार साहब के लिखे जिन गीतों की फरमाइश आपने की है वो सुनिएगा। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है आंधी। बोल गुलजार के हैं, संगीत आरडी बर्मन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। साथ ही कालका से शबचंद्र बजाज, बिद्रा बजाज और साहिल की।

लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से ही अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आप सभी ने सुनना चाहा है गुलजार का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है घर।

लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के स्वर में फिल्म इजाजत का गीत। बोल गुलजार के हैं, संगीत है आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित छोटू और डुंडुन। साथ ही गोंडरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तनमन गजभिये की।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। लीजिए अब सुनिए फिल्म लिबास का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने। पत्र हमें लिखा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म लिबास का ये गीत।

लीजिए, अब सुनिए फिल्म सीमा का गीत मोहम्मद रफ़ी और शारदा की आवाज़ों में। बोल गुलजार के हैं संगीत शंकर जयकिशन का और पसंद आप सभी की। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

0: श्रोताओं, आज गुलजार साहब का जन्मदिन है। उन्हें पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म पापा दिल मेरा, बंदिल पापा दिल मेरा, इसे खोल के पढ़ लो जी, बंदिल पापा दिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: बदलो बदलो, आदत बदलो।
7: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
6: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म पापा दिल मेरा, बंदिल पापा दिल मेरा, इसे खोल के पढ़ लो जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की 8वीं कड़ी।

दत्तक पुत्र के उत्तराधिकार को स्वीकृति ना देना कंपनी के उन तौर तरीकों में से एक था जिनके द्वारा अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुट गए थे। एक समझी बूझी कुटिल योजना उनके पास थी और वो परिस्थितियों के अनुसार उसे क्रियान्वित कर रहे थे। सतारा के राजा अप्पा साहेब जब निसंतान मरे तो उनके राज्य को हड़प लिया गया। इसी तरह 8 देसी राज्यों को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। पेशवाई और अवध की नवाबी भी इस मनमानी की चपेट में आ गई।

18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में फिरंगी शासन तंत्र ने देश के आर्थिक ढांचे में बुनियादी छेड़छाड़ की शुरुआत की। अंग्रेजों ने जमींदारी और रैयतवारी प्रथाएं शुरू की, जिससे किसानों का स्वामित्व छिन गया। अब जमींदार भूस्वामी था और ये वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बन गया। रैयतवारी में किसानों पर लगान लगाया गया, ये बहुत ज्यादा था और इसे चुकाने में असमर्थ भूस्वामी सूदखोरों के चंगुल में फंसते गए।

जिन सामंतों को फिरंगी समझौतों के द्वारा अपना सहायक बनाते थे, उन्हें अपने यहां अंग्रेजी फौज रखनी पड़ती थी। बाहरी आक्रमण से रक्षा और चोरी डकैती बलवा जैसी वारदातों से शांति बनाए रखने के लिए रखी गई इस सेना का खर्च देशी सामंत को उठाना होता था। यह खर्च भारी होता था और जब धीरे धीरे सामंत इसे चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो इस कर्ज की एवज में उसकी अलमदारी जब्त करके ब्रिटिश राज में मिला ली जाती थी।

एक दुष्चक्र, षड्यंत्रों का एक लगातार घूमता हुआ घातक और विनाशक पहिया, जो भारत के स्वाभिमान और भारत की स्वतंत्रता को रौंदता कुचलता हुआ लगातार घूम रहा था। भारत की आजादी गुम होती जा रही थी और भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हो रहा था। सामूहिक प्रतिरोध दूर दूर तक नहीं थे, जनता विभाजित बटी हुई थी।

किसानों के पास नहीं रही अपनी जमीन, मालिक बन बैठा जमींदार। बल्कि जमींदार भी कहां था मालिक, असल मालिक थी कंपनी की सरकार।

0: रोटी रोटी से वंचित खेतिहर देश के बहुमत निवासियों के सामने रोजगार का एक रास्ता खुला था, कंपनी की फौज में भर्ती का। वे सिपाही बनने लगे। अपने इलाकों से विस्थापित होकर वे कंपनी के वेतनभोगी सिपाही बने और कंपनी की लड़ाइयों में अपने ही देशवासियों के सीने पर उनकी गोलियां बरसने लगीं।
1: कंपनी ने देश के उद्योग धंधों को भी अपना निशाना बनाया। लोगों के हाथों का हुनर नहीं रहा, क्योंकि बाजार में मशीन से बने माल का सैलाब आ गया था। ढाका के मलमल की जगह मिल के तैयार लट्ठे ने ले ली थी। घरेलू उद्योग धंधे बंद होने लगे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, फिरंगी मिल्कियत वाली मिलें उग रही थीं।
2: हाथों का काम छिन रहा था, किसान के कांधे का हल और मजदूर की छेनी हथौड़ी उससे छीन ली गई थी। वो बेकार थे, बेरोजगार थे, उनके पेट में जलती हुई भूख थी और आंखों में डूबता हुआ विश्वास। ये था 19वीं सदी का हिंदुस्तान, अभूतपूर्व हिंदुस्तान, जिसे फिरंगियों ने सात समंदर पार से आकर गढ़ा था।

0: जो कालांतर में प्रलयंकारी दावानल की सर्वग्रासी व्यापकता होने जा रहा था। मातृभूमि की माटी ललकार रही थी, कुंठित पौरुष को विद्रोह के लिए पुकार रही थी।
1: अभी अव्यक्त होने का अनुकूल अवसर नहीं था, अंगड़ाई का वक्त नहीं आया था, अभी तो सिर्फ तैयारी थी और जनता इसमें जुट गई थी। आम जन जिनके पास नहीं था राजपाट और न जिनके थे अपने स्वार्थ, जिनके पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए था स्वाभिमान और स्वदेश। महादेश की माटी में यह संकल्पित सपना सुगबुगा रहा था। एक ऐसी बयार थी जो चल पड़ी थी, तिनका तिनका, गाछ पखेरू और पत्ता पत्ता जिसके स्पर्शों से आश्वस्त हो रहा था, रोमांचित हो रहा था। बच्चा बच्चा निर्णायक मुठभेड़ के लिए तैयार हो रहा था।

0: स्वाधीनता के संग्राम का संदेश, बलिदानों का वाहन, सर्वस्व न्योछावर कर देने का संकल्प, अपनी नियति को बदलने और नया इतिहास रचने का संकल्प, ये सब समाहित था सर्वत्र सुलभ और जाने पहचाने प्रतीक रोटी और कमल में। रोटी जीवन की मूलभूत आवश्यकता और कमल उसे सुंदर से सुंदरतम बनाने की आकांक्षा। जन जन का विश्वास इन प्रतीकों से आत्मसात होकर जुड़ गया।
1: आजादी के इन प्रतीकों की यात्रा और इनके माध्यम से स्वाधीनता का ये स्वतः स्फूर्त संकल्प चल पड़ा।
2: एक दूसरे तक अनुप्राणित करने, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक,
1: गांव, चौपालें, हाट बाजार, झोपड़े और घर, सिपाहियों की बैरकें और मजदूरों के कारखाने, बिजली की तेजी और तन्मयता के साथ पहुंच रही थी संघर्ष की ये पुकार।

0: संदेशा लेकर चले जा रहे थे सतत और निरंतर आजादी के हर कार्य। सब कुछ गोपनीय था। यायावर मुसाफिर, पथिक, सन्यासी, साधु और फकीर शत्रु से अपनी पहचान छुपाए, सर्वग्रासी दामानल की आग दबाए।
1: उनके लक्ष्य पर विशेष रूप से फिरंगी फौज की छावनियां थीं। सशस्त्र संघर्ष में प्रशिक्षित सैनिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली थी। हिंदुस्तानी सिपाही दासता के वातावरण से पहले ही उबे हुए और अपमानित थे।
2: इस हलचल से बेखबर और अनजान नहीं थी झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों के नेतृत्व में जो स्त्री सेना तैयार की थी, उसका रियाज और मशक्कत जारी था। अंग्रेज इसे उपहास की नजर से देखते थे, नहीं जानते थे कि एक तूफान शक्ल ले रहा है, एक लहर है जो उठ रही है। रानी के पास नाना के संदेशवाहक आते जाते रहते थे, विशेष रूप से तात्या टोपे। सामरिक तैयारी के रूप में गोला बारूद ढाला जा रहा था, तोपों की मरम्मत करके उन्हें ठीक ठाक किया जा रहा था, पूरी तैयारियां चल रही थी।
1: और राजा गंगाधर राव की रंगशाला की नर्तकियां नाचती गाती अंग्रेज छावनियों में घूम रही थीं, खुफिया समाचार और सूचनाएं इकट्ठा करती हुई और आजादी के महासंग्राम का संदेशा पहुंचाती हुई।

0: राजा गंगाधर राव अस्वस्थ रहते थे। उनकी चिंता थी झांसी को गद्दी का उत्तराधिकारी मिलेगा कब। रानी इन दिनों गर्भवती थी और राजा की आस वहां अटकी हुई थी। झांसी की जनता को भी अपने राजकुमार की प्रतीक्षा थी।
1: किंतु राजा गंगाधर राव और झांसी की जनता दोनों ही इस कड़वे सच को भी जानते थे कि अंग्रेजों की लोलुप गिद्ध निगाह से झांसी को बचाकर रख पाना आसान नहीं होगा। अंग्रेजों का काला साया अपने मनहूस पांव पसारता हुआ बढ़ा चला आ रहा था। देश के दूसरे भागों से इसकी सूचनाएं मिल रही थीं। झांसी में राजमहल से द्रोह रखने वाले तत्वों को अंग्रेज प्रश्रय और संरक्षण दे रहे थे। झांसी में फिरंगी सेना अफसर की ताक में थी।
0: खबरें आ रही थीं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। अतः राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध संबंधी तैयारियों को उचित मानते थे और उनका मौन समर्थन करते थे। प्रगटतः वो अंग्रेजों के मित्र थे, लेकिन वो अच्छी तरह समझते थे कि उनके इन मित्रों का विश्वासघात देश के तमाम रजवाड़े भुगत चुके हैं।
1: अपनी माटी की पवित्रता और आजादी के स्वाभिमान की रक्षा तलवार की धार से करने के अभ्यस्त वीर बुंदेलों के सामने परीक्षा की एक और घड़ी रूबरू होने वाली थी। बुंदेलखंड इसके लिए तैयार हो रहा था।
0: विप्लव की आग में तपने के लिए प्रस्तुत थे बानपुर के राजा मर्दन सिंह, शाहगढ़ नरेश बख्त बली, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई और गढ़ मंडला के गौड़ राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह। आजादी के अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए जमुना से नर्मदा तक और टौंस से चंबल तक फैला हुआ बुंदेला अंचल तत्पर था। प्रतीक्षा थी केवल रणभेरी के बजने।

झांसी में घटनाएं घटित हो रही थीं। रानी ने झांसी के उत्तराधिकारी को यथासमय जन्म दिया, किंतु भाग्य की सहमति इस संभावना के साथ नहीं थी। कुछ महीनों के बाद राज्य का ये राजकुमार अल्प वय में ही काल कवलित हो गया। रोता छोड़ गया रानी को, झांसी को।

0: पहले से ही राजा गंगाधर राव अस्वस्थ चल रहे थे। एक और आघात लगा। राजा ने अपने परिवार के एक बालक आनंद राव को दत्तक रीति से अपने पुत्र के रूप में ग्रहण किया। उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय परंपरा के अनुसार आनंद राव के गद्दी पर बैठने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में इस अधिकार की पुष्टि कंपनी सरकार से होनी थी। कंपनी पेशवा बाजीराव को निराश कर चुकी थी। उसने पेशवाई के लिए अधिकार मंजूर नहीं किया था और पेशवा की जागीर और पेंशन जब्त कर ली थी।
1: आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में नया नाम दिया गया दामोदर राव और उसके उत्तराधिकार की पुष्टि के लिए राजा गंगाधर राव ने अर्जी कंपनी सरकार को भेज दी। इसे झांसी में मौजूद अंग्रेजों के आला अफसर एलिस ने बड़े लाट डलहौजी को पहुंचा दी। अर्जी पर लाट साहब के हुक्म का इंतजार कर रही थी झांसी।
0: झांसी के नवजात राजकुमार के असमय अवसान के बाद एक वज्रपात और हुआ। दुनिया की रंगशाला छोड़ राजा गंगाधर राव चल बसे। अवयस्क दामोदर और वैधव्य भोगती रानी, झांसी की राजगद्दी अब रीति थी। झांसी करुणा के समुद्र में डूब गई। एक अनिश्चय प्रस्तुत था, एक सवाल खड़ा था कि अब क्या होगा।

0: लॉर्ड डलहौजी ने 27 फरवरी सन 1854 को झांसी के कागजातों पर अपना हुक्म चढ़ाया। एलिस उस फरमान को लेकर झांसी के दरबार में आया।
1: झांसी के राज दरबार में कंपनी बहादुर एलिस साहब का स्वागत है। यहां पधारने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
2: वेल, सरदार साहब, हम सिपाही हैं और कर्तव्य पालन करने में हमें कष्टों की परवाह नहीं होती। फिर चाहे कर्तव्य कैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण क्यों न हो। बाय द वे, महारानी साहिबा आ गई क्या?
1: जी एलिस साहब, पर्दे के पीछे विराजमान है।
2: ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने राजा गंगाधर राव की दत्तक उत्तराधिकार की अर्जी नामंजूर की है। पेशवा का आश्रित झांसी का राज ब्रिटिश इलाके में मिलाया जाता है। हर खास आवाम को ताकीद की जाती है कि झांसी की सरकार अब से मेजर एलिस के अधीन होगा। इलाके का आवाम अब अपने आप को ग्रेट ब्रिटेन की प्रजा माने और अंग्रेज कारिंदों को महसूल और करों की अदायगी करते हुए सुख और चैन के साथ रहे। लॉर्ड साहब ने कृपा करते हुए रानी साहिबा और उनके कुटुंब के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन मंजूर की है।
1: ओफो, अनहोनी, ये तो अनहोनी है।
2: वेल रानी साहिबा, फकत इतना है फरमान, अब मैं इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।
3: मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी की 8वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है। यह सम्मेलन सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में 10 सितंबर तक कलश यात्रा और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन, परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट और सुधारात्मक कार्यवाही पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आज से अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

बादलों ने ली अंगड़ाई है, बादलों ने ली अंगड़ाई है, सखियों देखो सावन आया है, रिमझिम फुहारों सा अपना संग, आओ मिलकर झूमे सखियों संग। कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका, आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश निंदिनी, नमस्कार। सखियों आपने सुना ही होगा, सकारात्मक सोचें सकारात्मक करें, यानी अच्छा सोचें अच्छा करें, ये छोटी सी पंक्ति बड़ी दमदार है सखियों, क्योंकि अच्छी और सकारात्मक सोच भले ही किसी परेशानी से हमें निकाल ना सके, लेकिन ये काफी हद तक उस परेशानी को कम जरूर कर देती है। सखियों सकारात्मक सोच की शक्ति का सार यही है कि स्वयं पर विश्वास रखने से अच्छी चीजें घटित होती हैं। जी हाँ, सकारात्मक सोच से सब कुछ संभव है, ये विचार ही आपको सबसे शक्तिशाली बनाता है। और अब बात करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की सुपर 100 योजना की। जी हाँ सखियों, सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए चलाई जाने वाली एक विशेष और निशुल्क कोचिंग योजना है। इसके तहत कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ JEE, नीट और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जाती है। पात्रता की बात करें तो सखियों कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इस योजना की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चयनित विद्यार्थियों को भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इंदौर के शासकीय मल्लार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रखकर पढ़ाया जाता है। सुविधाओं की बात करें तो सखियों छात्रों को यहाँ रहना, खाना, उच्च स्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाएं और विशेषज्ञों द्वारा विशेष कोचिंग पूरी तरह निःशुल्क मिलती है। चयन प्रक्रिया इसके लिए सखियों स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे पास करने के बाद अंतिम चयन होता है। और अधिक जानकारी के लिए सखियों आप मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल पर जा सकती हैं। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा मधुर गीत।

0: गीत हमने सुन लिया और भरते हैं हौसलों की उड़ान।
1: सखियों, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ पुरुषों की भूमिका को अहम मान लिया जाता है, मसलन दूध विक्रेता हो या न्यूज़पेपर विक्रेता। सुबह सुबह दूध देने या समाचार पत्र देने के लिए हमने पुरुषों को ही देखा है। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन मुझे सुबह 5 बजे की ट्रेन से दूसरे शहर जाना था। मैं उठी और मेन गेट खोलने पहुंची तो देखती हूं कि एक महिला अपनी स्कूटी से बड़े इत्मीनान और आत्मविश्वास के साथ घरों में न्यूज़पेपर का वितरण कर रही है। मैं काफी प्रभावित हुई और मैंने मन बना लिया कि इन्हें श्रृंखला मेरी उड़ान में आमंत्रित करूंगी। और आज वो सौभाग्यशाली दिन है जब मैं उनसे रूबरू हुई। जी हाँ, हमारे साथ हैं न्यूज एजेंसी संचालिका श्रीमती सोनाली राठौर। आप समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाओं की विक्रेता हैं और स्वयं घर पहुंच सेवा प्रदान कर रही हैं। नमस्कार सोनाली जी।
2: नमस्कार,
1: स्वागत है आपका श्रृंखला मेरी उड़ान में।
2: जी धन्यवाद।
1: सोनाली जी, जब मैंने पहली बार आपको अखबार डालते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गई और उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मैं आपसे पुनः भेंट करूंगी। आज आप हमारे बीच हैं तो आप बताएं कि क्या वजह रही जो आपने बतौर कैरियर इस कार्य का चयन किया। ऐसे कौन से हालात बन गए कि आप इस क्षेत्र में उतरी।
2: देखिए नंदिनी जी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक टीचर रही हूँ, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे इस लाइन में आना पड़ा। मेरे पति का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया था, इस कारण मुझे इस लाइन में आना पड़ा। हालांकि वो चिंतित हुए, पर मैंने अपने विश्वास में लिया उनको और फिर काम आगे बढ़ाया। घर वाले भी चिंतित थे कि ये काम मैं कैसे संभाल पाऊंगी। ये हमारा पुश्तैनी धंधा था, फिर भी घर वालों को लगा कि कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि एक महिला होके सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के जाना कोई सहज बात नहीं होती है। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं काम करूंगी। वैसे हमारे बहुत से वर्कर भी करते हैं, फिर भी मैंने हालात को अपने संभाला और अपने पति का साथ दिया। थोड़ा सा शुरू में डर भी लगा मुझे, पर मैंने सोचा पुरुष कर सकते तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती ये काम। वो मैं धीरे धीरे ये काम को शुरुआत की और आज सब बढ़िया हो गया और काम भी आगे बढ़ गया।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपने एक साहसिक निर्णय लिया और अपने कार्य को इतने अच्छे से सफलतापूर्वक आप अंजाम दे रही हैं। अब आप ये बताएं कि आपने इस कार्य को करने का निर्णय लिया तो जैसा कि आपने बताया कि घर वाले थोड़ा सा शुरू में भयभीत थे, फिर भी और जो दूसरे लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही।
2: लोग तो कह रहे थे कि मतलब महिला होके ये कार्य कर पाएगी कि नहीं। लोग हंसे भी कि आपने लेडीज को सुबह सुबह इतना पहुंचा दिया, मतलब इतनी जल्दी लेडीज कैसे काम कर सकती है। और थोड़ा सा घर वालों को भी कहा, पर घर वालों ने कहा नहीं, हमें विश्वास है इसलिए हम ये मौका दे रहे हैं। और मैंने बिना मतलब डरे ये काम आगे बढ़ाया, क्योंकि महिलाएं सभी शिक्षित होके भी हाथ बटाती रहती है, वैसे ही महिलाएं यहाँ सभी कार्य कर रही है। और मैं तो पढ़ी लिखी थी, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया। और सबसे अच्छी बात यहाँ देखी कि मैं वाहन खुद चला सकती थी और मैंने सोचा कि मैं एक नया काम की शुरुआत करूँ, आगे की जो महिला है वो भी प्रेरित हो और ये काम कर सके।
1: बहुत अच्छे आपके विचार हैं कि आपने ये सोचा कि मैं एक नया कार्य करूँ, और चूंकि आप शिक्षिका थी फिर भी आपने ये सोचा कि मेरे घर का ये पुश्तैनी काम है और अपने पति को सहयोग करूँ, और आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया और आज आप सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं। अब ये बताइए कि यदि हमारी कोई सखी क्षेत्र में आना चाहे तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए।
2: उनकी योग्यता कम से कम 12th तो होना ही चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए और खुद को वाहन चलाना आना चाहिए। और मेन गलियों का और घरों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहाँ पे अपने को पेपर डालना है, एंड पॉइंट ये रहता है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ड्राइविंग आना चाहिए, जो वाहन आप कैरी करती है उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, यानी थोड़ी बहुत कुछ खराबी आ जाए तो स्वयं को हैंडल करना आना चाहिए। इसके अलावा मीठा व्यवहार होना

0: चाहिए, निडर होना चाहिए और खुद जिम्मेदार होना चाहिए। देखिए नंदिनी जी, जैसे सुबह सुबह चाय की तलब लगती है, वैसे ही अखबार की भी सभी को बेचैनी से प्रतीक्षा होती है और सभी लोग अखबार की प्रतीक्षा करते हैं। तो एक निश्चित समय पर घरों में समाचार पत्र डालना होता है, तो बस सर्विस आपकी बेहतर होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह का बहाना नहीं चलता। फिर कोई भी काम हो, चैलेंज तो स्वीकारना ही होता है, मैंने भी स्वीकार किया है और आज सफलतापूर्वक अपनी सर्विस से सभी को खुश कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ।
1: बहुत बढ़िया सोनाली जी, शुरुआती दौर में कभी आपको डर लगा, आपको घबराहट हुई? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना होता है, अंधेरा भी होता है, खासकर ठंड और बारिश में काफी चैलेंजिंग होता है इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करना, हैंडल करना। कभी कोई ऐसी घटना जिससे आप परेशान हुई हो?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है नंदिनी जी। देखिए सुबह तो जल्दी उठना पड़ता है इस कार्य में। मैं सुबह 3 बजे उठकर मेन मार्केट, जहाँ हमारी एजेंसी और दूसरी भी पत्र पत्रिका है वहाँ पर आती है, तो उनका भी कलेक्शन करना रहता है। तो हम लोग वहाँ से मेन मार्केट से मतलब जो भी पेपर रहता है, मैगजीन रहती है, कलेक्ट करते हैं और फिर वितरण करने घर घर अपनी सेवा देते हैं। तो चैलेंज तो है ही सही। बेशक सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन फायदा भी है इसमें कि हम जल्दी फ्री हो जाते हैं और दूसरे कार्यों के लिए भी हमें समय मिल जाता है। अभी मैं साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ और अपना कार्य भी संभाल रही हूँ और ऐसी कोई मुझे कोई समस्या नहीं है। शुरुआती दौर में तो थोड़ा भय लगता ही है, पर हर समस्या का समाधान होता है। देखिए नंदिनी जी, सर्विस करने वाली महिला है तो सुबह सुबह निकलती है तो देर रात को घर आती है, तो इस तरह के मौसम में वो भी तो निपटती है। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं मैं भी इस कार्य को सुबह सुबह करूँ और डरने की क्या जरूरत है, और हर समस्या का समाधान होता ही है। और धीरे धीरे हम जैसे हर गली मोहल्ले से परिचित हो जाते तो डर नहीं लगता है, और उन रास्तों के अभ्यस्त हो जाते तो डर अपने आप चला ही जाता है। जहाँ पे मैं पेपर वितरण करती हूँ वहाँ पर एक गली ऐसी थी जहाँ बहुत सारे कुत्तों का झुंड रहता था, पर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनसे दोस्ती कर लूँ। फिर मैंने उनको दूध बिस्किट खिलाया और वो मेरे दोस्त बन गए, वो मेरा काम आसान बन गया है। तो समस्या है तो समाधान भी है। घबराए नहीं, जो महिलाएं आना चाहती है वो भी आ सकती है और ये काम कर सकती है, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है।
1: सोनाली जी, क्या आप इस कार्य से संतुष्ट हैं? आप घर परिवार सभी कुछ अच्छे से मैनेज कर पाती हैं और आजीविका की दृष्टि से भी आप खुश हैं?
0: जी हाँ नंदिनी जी, मैं पूरी तरह से इस कार्य से संतुष्ट हूँ। जब महिलाएं घर से कमाने के निकलती है, मैं काम करके घर पहुँच जाती हूँ और अपने सही समय पर घर के कार्यों में जुट जाती हूँ और घर परिवार भी अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। जहाँ तक सवाल कमाई का है तो ये कार्य बहुत ही बढ़िया है। समय की बचत, सेहत बढ़िया, सुबह की ताजी हवा हमारे शरीर में पहुंचती है तो मैं स्वस्थ भी रहती हूँ। जब से मैं इस कार्य में जुड़ी हूँ मेरा स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और कोई तनाव नहीं रहता है, और कमाई के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। तो जो भी सखियाँ इस क्षेत्र में आना चाहती है वे आ सकती है, स्वागत है उनका, और निडर होके आए और आप बस सफल हो जाएंगे इसमें।
1: सोनाली जी, आपने बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन किया और हम सोचते हैं कि जो सखी इस क्षेत्र में आने का मन बना रही होगी निश्चित रूप से उन्हें मार्गदर्शन मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा मधुर गीत।

क्यों बारिश का मौसम है, ऐसे में सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इसके लिए जरूरी है कि इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सूप का सेवन किया जाए। तो चलिए झटपट से आप मिक्स्ड वेजिटेबल क्लियर सूप की रेसिपी नोट कर लें। सामग्री है घी या मक्खन एक छोटा चम्मच, लहसुन 4-5 कलियां बारीक कटी हुई, अदरक एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, सब्जियां गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, चुकंदर एक कप, और भी यदि आप सब्जियां ऐड करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, पानी 2-3 कप। और अब बनाने की विधि, जो कि बहुत ही आसान है सखियों। जी हाँ, एक पैन में घी या मक्खन गर्म करें, इसमें कटा हुआ लहसुन अदरक डालकर हल्का भूनें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालें और 2 मिनट तक भूनें। अब पैन में पानी, नमक और काली मिर्च पाउडर डालें, फिर सूप को मध्यम आंच पर 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें, ताकि सब्जियों का सारा पोषण पानी में आ जाए। बस अब गर्मा गर्म सूप को बाउल में निकालें और परोसें। जी हाँ, बारिश के मौसम में आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला ये सूप सबको पसंद आएगा। और चलिए अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

गीत आपने सुन लिया और अब बात करते हैं रूप को निखारने की। जी हाँ, बारिश के दिनों में महिलाओं का रूप लावण्य और भी निखर कर सामने आता है। प्रकृति के सुहावने मौसम में महिलाओं का श्रृंगार, उनका उल्लास अलग ही नजर आता है। बरसात की ठंडी हवा और नमी से त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है। जी हाँ सखियों, पारंपरिक पर्व से जुड़े श्रृंगार सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं। ध्यान रहे सखियों, इस मौसम में हल्का और वाटरप्रूफ श्रृंगार करना चाहिए। भारी क्रीम या ऑयली फाउंडेशन की जगह मैट और पाउडर उत्पादों का प्रयोग करें, जिससे उमस और बारिश में भी चेहरा चिपचिपा न लगे और श्रृंगार लंबे समय तक टिका रहे। नमी के कारण चिपचिपाहट से बचने के लिए सखियों, हल्के फेस वॉश का उपयोग करें। टोनर और मॉइस्चराइजर लाइटवेट नॉन स्टिकी लगाएं ताकि पोर्स खुले रहें। वाटरप्रूफ काजल और मस्करा चुनें। जी हां सखियों, मैट लिपस्टिक या हल्का लिप बाम लगाएं जो पानी से न बहे। साथ ही सखियों, खुले बालों के बजाय पॉनीटेल या बन बनाएं ताकि नमी से बाल चिपके नहीं। और हाँ, जल्दी सूखने वाले हल्के कपड़े पहने, बस आपका रूप लावण्य देखते ही बनेगा और मन कह उठेगा वाह वाह। और सखियों, अब सुन लेते हैं सावन की रिमझिम फुहारों से सजा हुआ गीत।

और सखियो अब कर ली कुछ काम की जरूरी बातें। जी हाँ सखियो, डिजिटल लेन देन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए जरूरी है सखियो कि अपना UPI या पासवर्ड किसी को न बताएं, पिन गोपनीय रखें, बैंक अधिकारी बनकर फोन करने वालों को कभी भी OTP न दें, साथ ही आधिकारिक और भरोसेमंद बैंकिंग एप्स का ही इस्तेमाल करें, सार्वजनिक स्थानों के मुफ्त वाईफाई से वित्तीय लेन देन न करें। जी हाँ सखियो, अनजान नंबरों से आने वाले कैशबैक या लॉटरी के संदेशों पर ध्यान बिल्कुल न दें। अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करें। सखियो, धोखाधड़ी होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जी हाँ सखियो, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी। सखियो, बातें तो आपसे ढेर सारी करना थी, पर समय इशारा कर रहा है कि अब आपसे अनुमति ली जाए। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। अब दुर्गेश नंदिनी को दे इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज का लोक संगीत आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे रामचंद्र गंगुड़िया और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

इसके साथ ही रामचंद्र गंगोली और साथियों के गाए मालवी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। और अब सुगम संगीत में हम आपको सुनवाते हैं दीपक कुमार राव के गाए भजन, आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति।

दीपक कुमार राव के गाए भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे। युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है कन्यादान फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, नीरज का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत।

अगला गीत खानदान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़, नक्शलियालपुरी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है खयाम ने।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत 20

0: अगस्त से 10 सितंबर तक जिलों में कलश रथ यात्रा, 18 से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान और 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक समरसता यात्रा आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री आज गुना में बलराम कृषि महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे और उन्नतशील किसानों से संवाद करेंगे। किसानों को कृषि की नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। ये कार्यक्रम कृषि उपज मंडी नानाखेड़ी में आयोजित किया जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के लिए आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अभिनेता पीयूष मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
1: माखनलाल विश्वविद्यालय में हमारे लेखक, गायक, पत्रकार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज्यादा हस्तियां जिनने विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी एक अलग पहचान बनी, उन सबके साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। ये उत्कृष्ट संस्थान है देश भर का, देश तो क्या दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं।
0: इस अवसर पर हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों पर आधारित पुस्तक दो सदी साक्षी सहित विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने अविरल मां नर्मदा मिशन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान समेत कई क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। भिंड जिले में आज देर रात पिकअप और डंपर की भीषण टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 23 घायल हुए हैं। हादसा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के छीमका गांव के पास हुआ। घायलों को गोहद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जांच में मवेशियों को बचाने के दौरान पिकअप के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। रीवा और बालाघाट समेत 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। जबलपुर में बरगी बांध के 21 में से 9 गेट आज पहली बार खोले गए हैं। बांध से करीब 1031 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। इससे नर्मदा के घाटों तथा तटीय क्षेत्रों में जलस्तर 3 से 4 फीट तक बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं खेल की खबर में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की उन्नति हुड्डा और म्यांमार की थेत हतार थोजार के बीच मैच चल रहा है। भारतीय खिलाड़ी ने कुछ देर पहले ही पहला गेम 22-20 से जीत लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में शाम को दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेशवा बाजीराव प्रथम की जयंती पर उन्हें नमन किया और उन्होंने रावेरखेड़ी में स्थित उनकी छतरी को उनके अदम्य साहस और गौरवशाली पराक्रम की अमरगाथा बताया। खरगोन में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए 20 अगस्त को खंडवा रोड कार्यालय में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिले में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में कलेक्टर डॉ शेर सिंह मीणा ने अधिकारियों को समय सीमा में हैंडपंपों के रखरखाव कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। पन्ना जिले ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे ऑनलाइन कर संग्रह में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में अब तक कुल 79,87,185 रुपये का राजस्व ऑनलाइन माध्यम से संग्रहित किया जा चुका है और सिंगरौली जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर जयंत और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैनी में नशे के दुष्परिणामों के प्रति छात्रों को जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक

0: घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। त्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा म्यांमार की थेत हतार थुजार को हराकर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने मानवता को प्राथमिकता देते हुए सतत पर्यावरण के निर्माण की दिशा में नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2005 और 2022 के बीच प्रदूषण उत्सर्जन की तीव्रता में 37% से अधिक की कमी की है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक स्वतंत्र, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण तथा योगदान को बेहद महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना सरासर गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में है कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा और अब सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना एक उत्कृष्ट निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकती तो उसे स्वतंत्रता आंदोलन के संरक्षक होने का दावा करना बंद कर देना चाहिए।
2: 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया, तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि कल जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा गए थे तब भी पार्टी के कार्यक्रम में वंदे मातरम के केवल 2 ही छंद गाए गए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। श्री पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पूर्वोत्तर को भारत का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इस क्षेत्र को एकीकृत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के करीब लाएगा। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकरप्पा ए साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। आरोप है कि एक निजी कंपनी ने बिचौलिए के रूप में काम किया। निदेशालय ने शिव शंकरप्पा के आवास, आयोग के कुछ पूर्व सदस्यों के ठिकानों और निजी कंपनी से जुड़े कार्यालयों में तलाशी ली। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
3: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी डिटेल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बूझने के बाद कैबिनेट ने सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाश अभियान शुरू किया। रियासी के सदनी जंगलों और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई गांवों में भी तलाश अभियान चलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रमुख साहसिक अभियान अपराजिता परांगला 2026 को रवाना किया। 30 दिन का यह अभियान 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर गुजरेगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ता है। तीनों सेनाओं के महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 बालिका कैडेटों की टीम इसमें हिस्सा ले रही है। श्री सिंह ने कहा कि ऊंचाई वाले इस अभियान में युवा बालिकाओं की भागीदारी देश की महिलाओं के साहस, दृढ़ संकल्प और बढ़ती क्षमता का प्रमाण है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का पांचवा संस्करण अगले महीने की 17 तारीख से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों की 500 से अधिक प्रदर्शक और करीब 240 कंपनियां हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और नीदरलैंड्स के 6 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन होंगे। केरलम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह पर आज से सीधे निर्यात और आयात परिचालन शुरू हो गया है। ये इस क्षेत्र के समुद्री व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने विझिंजम से यूरोप के लिए रवाना होने वाले पहले जहाज के 2 कंटेनर को रवाना किया।
4: पिछले साल 2 मई को बंदरगाह को देश को समर्पित किए जाने के बाद अब सीधे आयात निर्यात का काम शुरू हो गया है। इन सेवाओं के शुरू होने से यूरोप जाने वाले शिपमेंट के समय में काफी कमी आएगी। पहले विझिंजम से यूरोप पहुंचने में शिपमेंट को लगभग 2 महीने लगते थे, लेकिन अब इसके सिर्फ 28 दिनों में पहुंचने की उम्मीद है। बंदरगाह अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ये सुविधा सिर्फ फुल कंटेनर लोड को ही संभालेगी। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा है कि युद्ध की बदलती प्रकृति ने सशस्त्र बलों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने और एकीकृत करने को अनिवार्य बना दिया है। नई दिल्ली में आज उन्होंने निगरानी और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पर भारतीय सैन्य समीक्षा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेषकर 2020 के बाद से युद्ध में तीव्र और व्यापक परिवर्तन आया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टी ने नागरिकों की मौत और घायल होने, मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन गुमशुदगी और संचार व्यवस्था बंद किए जाने की खबरों पर गंभीर चिंता जताई। संगठन ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों की आवाजाही पर प्रतिबंध और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों के लिए 3 महीने का मुफ्त रिचार्ज घोषित किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है और वायरल वीडियो AI द्वारा बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी योजना का समर्थन नहीं किया है।

0: मध्य प्रदेश के भिंड में ग्वालियर भिंड इटावा राजमार्ग पर कल देर रात वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 23 घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण झारखंड और आसपास के राज्यों में मौसम पूरी तरह बदल गया है। राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू समेत राज्य के बड़े हिस्से में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल की खाड़ी से उठा गहरा दबाव आज सुबह रांची से महज 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके प्रभाव से झारखंड के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पलामू और गढ़वा जिलों के लिए भारी से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में ये डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बिहार की ओर आगे बढ़ेगा, जिसका असर आगामी 2 दिनों तक झारखंड में रहने की उम्मीद है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस बीच मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर भारत में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, केरल और माही में आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी इसाइया अरुमनैया गम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंदकुमार चव्हाण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पुणे स्थित आर्मी पैरालंपिक नोड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में म्यांमा की थेत हतार्थुजार को सीधे सेटों में हराकर भारत की उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अगले दौर में उनका मुकाबला कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। इस बीच मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारतीय जोड़ी आशीष सूर्या और अमृता प्रथमेश तथा तुर्की की जोड़ी एमरे सोनमेज और यासेमेन बेक्टास के बीच मैच जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया है। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 354 अंक गिरकर 77,374 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की गिरावट के साथ 24,206 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण सहयोग पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सहप्रभारियों की नियुक्ति की। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग में पेपर लीक घोटाले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा। ट्रिशा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद सहित 15 अन्य खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित। और नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभ्र चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टू बजाज, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। आप सबने सुनना चाहा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये नगमा, अनवार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और खयाम का संगीत।

मुकेश और हेमलता की आवाज़ में सुनिए विश्वास फिल्म का ये गीत। गुलशन बावरा के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं धामड़ी मानोरा जिला वाशिम से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे, अनंत डेरे, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोचो अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शुएब खान, साइमा खान, मुस्तफ़ा खान, आफिया खान, राउफ और शहीद भाई, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए विश्वास फिल्म का ये गीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब सुनिए जंजीर फिल्म का ये नगमा। गुलशन बावरा के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद किया है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर और आकर हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित गवाणकर और कुमारी धोनी गवाणकर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।
1: आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए

अगर तुम ना होते। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गुलशन बाबरा के लिखे गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मन ने। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लीपई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पेपरिया से दुर्गा राम साहू, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, कान्हा आर्य, गांधी चौक बाड़ में राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

रूना लैला और भूपिंदर की आवाज़ों में अब सुनिए घरौंदा फिल्म का ये नगमा, गुलजार का गीत और जयदेव का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए गुलामी फिल्म का ये नगमा, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, हेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश। खबर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेशव्यापी समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ किया। गुना में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कृषि उपज मंडी नानाखेड़ी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली किसानों को संबोधित करेंगे और उन्नतशील किसानों से संवाद करेंगे। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में नवागत विद्यार्थियों के लिए आयोजित अभ्युदय 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने अविरल मां नर्मदा मिशन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेशवा बाजीराव प्रथम की जयंती पर उन्हें नमन किया है और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। रीवा और बालाघाट समेत प्रदेश के 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथी डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:15 और 10:00। 6:00 प्रसारित होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। चित्रपट संगीत सुनिएगा 6:30। शाम 7:30 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आप डॉक्टर ज्योति जैन से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे। विषय है पशुओं में वह परजीवी नियंत्रण। सुर्खियों में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:00 और रात 9:30।

उर्दू प्रोग्राम कहकशा में सुनिएगा महफिले समा कव्वालियों पर केंद्रित कार्यक्रम। रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे दिव्या शर्मा का ख्याल गायन, राग होगा मधुवंती। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 186.32 मीटर्स अर्थात 1593 किलो हर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव 186.32 मीटर्स पर अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है यूथ प्रोग्राम युववाणी।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं अनुषा और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है मंगलवार और युवाणी में जो आज का खास सेगमेंट होता है वो होता है हमारे शहर। ऐसे कई सारे शहर होते हैं जो आपने नाम सुने भी हैं, लेकिन शायद उतनी गहराई से आप उन्हें नहीं जानते होंगे, जिसके सफर पर हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज के प्रश्न बता देते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? और आज का दूसरा प्रश्न है, जो शायद आप में से कई लोग जानते ही हैं, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है? तो दोस्तों, आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखिए। कार्यक्रम के अंत में जब हम आपको उत्तर बताएंगे तब आप उससे मिलान कीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का पहला गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का वक्त है और आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस हिस्से में जहाँ जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं और इन सब के बीच बसी एक बेहद ही खूबसूरत सी संस्कृति भी है। और आज की हमारी मंजिल है बालाघाट। बालाघाट ये नाम सुनते ही मन में पहाड़ों और घाटियों की जो है तस्वीर बनने लग जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम भी इसी भौगोलिक पहचान से जुड़ा हुआ है, यानी कि बालाघाट यानी कि घाटों के ऊपर का इलाका।
3: और दोस्तों, भौगोलिक रूप से भी बालाघाट बेहद खास है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा ये जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाओं के करीब है। यहाँ की धरती पर पहाड़ है, पठार है, जंगल है और खेत भी हैं।
2: और इन सब के बीच बहती है वैनगंगा नदी,
3: जिसे देखकर लगातार जैसे बालाघाट की धरती पर प्रकृति ने खुद एक नीली सी लकीर खींच दी हो, ऐसा लगता है।
2: बालाघाट की पहचान उसके जंगलों से भी है। यहाँ साल, सागौन और बांस जैसे पेड़ों की भरमार है। और जहाँ इतने घने जंगल हों, वहाँ वन्य जीवन भला कैसे पीछे रह सकता है।
3: बिल्कुल सही, बालाघाट का रिश्ता कान्हा के जंगलों से भी जुड़ता है। वहाँ की वन भूमि में बारहसिंगा सहित कई सारे अन्य वन जीवों का भी संसार बसता है।
2: तो एक तरफ वैनगंगा की कलकल है
3: और दूसरी तरफ जंगलों की सरसराहट,
2: और बीच में मेहनत करते जो है वो किसान और खेतीहर दिखते हैं।
3: यानी बालाघाट में प्रकृति सिर्फ दिखाई नहीं देती, जीती जागती और वहाँ से गुजरने वालों को महसूस भी होती है।
2: लेकिन अनुषा, इतनी खूबसूरत जगह की कहानी सिर्फ आज की तो नहीं होगी।
3: बिल्कुल नहीं, बालाघाट की मिट्टी ने इतिहास के कई दौर देखे हैं। यहाँ गौंड राजाओं का प्रभाव रहा, बाद में मराठा शासन आया और फिर ब्रिटिश शासन का दौर भी देखा।
2: और 1800
3: बिल्कुल तुम सही याद कर रही हो, 1867 में बालाघाट जिले का गठन हुआ था।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने।
3: और इतना ही नहीं, इतिहास की ये परतें आज भी यहाँ के कई पुराने स्थलों में दिखाई देती है। लांजी का किला हो या हट्टा की बावड़ी, हर जगह जैसे बीते समय की

0: ये कहानी आपका इंतजार कर रही हो।
1: हट्टा की बावड़ी की तो अपनी ही कहानी है। गोंड काल की स्थापत्य परंपरा की झलक देती है ऐतिहासिक बावड़ी। कभी पानी का स्रोत थी तो कभी यात्रियों और सैनिकों के लिए विश्राम और आश्रय की जगह थी।
0: और यही तो किसी भी शहर या जिले की असली खूबसूरती होती है, जब उसकी पुरानी इमारतें भी उसके इतिहास की आवाज बन जाए।
1: तो दोस्तों, बालाघाट को अगर 3 शब्दों में कहें तो
0: मुझे लगता है जंगल, जल और जीवन।
1: बिल्कुल सही कहा। वैसे अभी बाकी की कहानी बाकी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगले सेगमेंट में हम चलेंगे बालाघाट की गलियों और गांव की ओर, जहां मिलेंगे लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार, हस्तशिल्प
1: और हाँ, उसकी खुशबू से पहचान में आने वाला मशहूर चिन्नौर चावल।

0: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म पापा दिल मेरा। बंद लिखा पादिल मेरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बालाघाट की, उस बालाघाट की जिसे जानने के लिए सिर्फ उसकी सड़कों को देखना काफ़ी नहीं होगा,
3: बल्कि उसके लोगों से मिलना होगा, उनके गीत सुनने होंगे, उनके त्योहारों में शामिल होना होगा
0: और सबसे ज़रूरी है उनसे परिचित होना होगा।
3: अब बालाघाट की संस्कृति की बात और लोक नृत्यों की बात हो तो उसके बारे में और डिटेल्स में जानना जरूरी है, क्यों अनुषा?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, यहाँ की लोक संस्कृति में आदिवासी परंपराओं की गहरी छाप है। भाग, मादरी और लोटा जैसे पारंपरिक लोक नृत्य यहाँ की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है।
3: जरा सोचिए, गांव का खुला आंगन, चारों तरफ लोग और मांदर की थाप,
0: और उस थाप के साथ कदम मिलाते हुए लोग।
3: ये सिर्फ नृत्य नहीं है बल्कि
0: पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी है, ऐसी कहानी जो किताबों में नहीं लोगों की आवाज और कदमों के बीच रहती है।
3: और बालाघाट की संस्कृति में प्रकृति का असर उसके हस्तशिल्प में भी दिखाई देता है, खासकर बांस का काम, जहां साधारण सी दिखने वाली बांस की लकड़ी कुशल हाथों में खूबसूरत और उपयोगी वस्तुओं में बदल जाती है।
0: और अब आते हैं बालाघाट की उस पहचान पर जिसे आप खा भी सकते हैं और उसकी खुशबू भी महसूस कर सकते हैं,
3: यानी कि चिन्नौर।
0: जी हाँ, बालाघाट का चिन्नौर चावल।
3: अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर चिन्नौर चावल यहाँ की पारंपरिक कृषि विरासत का हिस्सा है। खास मौकों, धार्मिक आयोजनों और विवाह समारोहों में इसका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है।
0: और दोस्तों, इसे GI टैग भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, चिन्नौर को बालाघाट के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी चुना गया है।
3: मतलब बालाघाट के मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती
0: बल्कि अपनी पहचान भी उगाती है।
3: लेकिन अनुषा, बालाघाट की धरती के नीचे भी कुछ खास है शायद?
0: बिल्कुल, यहाँ की तांबे की खदानें बालाघाट की खनिज संपदा की एक बहुत बड़ी पहचान है।
3: तो ऊपर जंगल,
0: बीच में खेत,
3: बिल्कुल, और उसके बाद नदियों में पानी,
0: बिल्कुल, और धरती के भीतर तांबा।
3: क्या कमाल है ना ये बालाघाट।
0: लेकिन मुझे लगता है कि

0: बालाघाट की सबसे बड़ी खूबसूरती न उसके जंगल है, न उसकी नदी और न ही उसकी खनिज संपदा।
1: अच्छा, तो फिर
0: मुझे लगता है यहाँ के लोगों का अपना मिट्टी और प्रकृति से जो रिश्ता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, वही सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि इस जगह को खूबसूरत उसकी इमारतें नहीं बनाती, वहाँ रहने वाले लोगों की यादें, उनकी परंपराएं और उनका अपनापन बनाता है।
0: बिल्कुल, और बालाघाट में ये अपनापन आपको लोकगीतों में साफ सुनाई देता है,
1: त्योहारों में दिखाई देगा
0: और खेतों में भी महसूस होगा,
1: और शायद चिन्नौर के चावल की खुशबू भी आपको कहीं पे मिल जाए।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब मध्य प्रदेश का नक्शा देखें तो उसकी दक्षिण पूर्वी तरफ एक छोटे से कोने पर जरूर रुकिएगा।
1: वहीं कहीं जंगलों के बीच आपको मिलेगी एक ऐसी दुनिया
0: जहाँ पर वेनगंगा बहती है,
1: जहाँ लोकगीत गूंजते हैं,
0: जहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है
1: और जहाँ मिट्टी अपनी खुशबू से अपनी पहचान बनाती है। तो दोस्तों, यही था हमारा बालाघाट, जंगलों का, नदियों का, संस्कृति का और दोनों के दिल से जुड़े लोगों का बालाघाट।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म
3: दिल मेरा। बंद लिखा दिल मेरा, इसे पढ़ लो जी। बंद लिखा
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
4: दिन ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई मौसम याद आ जाता है, कोई चेहरा, कोई अधूरी कहानी या फिर अपने ही जीवन का कोई भूला हुआ पल याद आ जाता है।
5: और हिंदी सिनेमा में अगर किसी ने शब्दों से मौसम, रिश्तों और यादों की तस्वीरें बनाई हो तो वो नाम है गुलजार। जिन्होंने गीत लिखे तो वे सिर्फ गीत नहीं रहे बल्कि वो कविताएं बन गईं। फिल्में बनाई तो वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन के बड़े बड़े सवाल बन गईं।
4: और शायरी लिखी तो लगा जैसे हमारे जीवन की छिपी कोई गहरी बात अचानक हमारे सामने आ गई हो। दोस्तों, गुलजार का जन्म 18 अगस्त 1934 को पंजाब के झेलम जिले के दीना में हुआ था और उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा था और गुलजार उनका पेन नेम है।
5: विभाजन ने उनकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित किया। परिवार के साथ भारत आने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपना जीवन आगे बढ़ाया और बाद में वो मुंबई पहुंच गए।
4: मुंबई में उन्होंने शुरुआत में कार मैकेनिक के रूप में भी काम किया, लेकिन उनके भीतर शब्दों की दुनिया आकार ले रही थी।
5: गुलजार ने प्रसिद्ध फिल्मकार विमल रॉय के साथ काम करना शुरू किया। फिल्म बंदिनी के लिए उन्होंने गीत मोरा गोरा अंग लेले लिखा
4: और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय फिल्म संगीत और साहित्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
5: इसके बाद गुलजार ने एक के बाद एक ऐसे गीत लिखे जिनमें प्रेम भी था, दर्शन भी, सादगी भी थी और गहराई भी।
4: हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू। अब दोस्तों, यूं तो खुशबू दिखाई नहीं देती लेकिन गुलजार ने उसे महसूस करवा दिया।
5: गुलजार की दुनिया को सिर्फ फिल्मों के गीतों से समझना शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा। वे कवि थे, शायर, कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं और हमेशा रहेंगे।
4: और उनकी शायरी में कभी प्रेम है, कभी तन्हाई, कभी रिश्तों की उलझन और कभी जिंदगी से सीधा सीधा सवाल।
5: उनकी गजल की ये पंक्तियाँ हैं कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। कितनी साधारण भाषा है ये, लेकिन कितना गहरा सवाल भी है ये।
4: दिन कुछ ऐसे गुजरता है कोई जैसे एहसान उतरता है कोई, आईना देख कर तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई।
5: पक गया है शहर पे फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई, फिर नजर में लहू की छींटे हैं तुमको शायद मुगालता है कोई,
4: देर से गूंजते हैं सन्नाटे जैसे हमको पुकारता है कोई। इन पंक्तियों में सिर्फ आईना नहीं है, इसमें अपने

0: अपने होने की पहचान तलाशता हुआ एक इंसान है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ उनके शब्दों में जितनी गहराई है उनके आवाज़ में भी उतनी ही ज़्यादा गहराई है, क्योंकि उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देती है उनके शब्दों की। और यही वजह है कि उनके शायरी को पढ़ते हुए या सुनते हुए कई बार लगता है कि हम किसी कविता को नहीं अपने ही जीवन का कोई दृश्य देख रहे हैं।
0: और फिर जब यही संवेदनशीलता फिल्मों के गीतों में पहुंचती है तो साधारण शब्द भी असाधारण लगने लगते हैं, जैसे तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी या फिर हम सभी का पसंदीदा मेरा कुछ सामान।

0: क्या बात है, इतना सुंदर गीत। तो दोस्तों, गुलजार सिर्फ गीतकार बनकर नहीं रुके, उन्होंने 1971 में मेरे अपने फिल्म से निर्देशन की भी शुरुआत की
1: और इसके बाद कोशिश, मौसम, अंगूर, नमकीन, इजाज़त, लेकिन जैसी इन सभी फिल्मों ने उन्होंने अपने एक अलग ढंग को सामने लेकर आए और इनके ज़रिए उन्होंने अपनी एक अलग सिनेमाई भाषा भी विकसित की।
0: बिल्कुल, उनकी फिल्मों में अक्सर बड़े बड़े घटनाक्रमों से ज़्यादा महत्व होता था इंसान के भीतर चल रही हलचल और कश्मकश का।
1: बिल्कुल, जैसे रिश्ते टूटते क्यों हैं, लोग एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं, अकेलापन क्या होता है, या हर कहानी का अंत क्या वास्तव में अंत होता है।
0: गुलजार इन सवालों के जवाब सीधे देते भी नहीं थे, वे हमें सोचने के लिए छोड़ देते थे। गुलजार का काम केवल भारतीय सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा दोस्तों। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का गीत जय हो के लिए उन्हें 2009 में एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर भी मिला।
1: भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान भी प्राप्त हुए।
0: गुलजार की दुनिया में बारिश सिर्फ बारिश नहीं होती, वो याद हो सकती है। चांद सिर्फ चांद नहीं होता, वो कोई दूर बैठा इंसान हो सकता है जिसकी याद में हम अभी भी हो।
1: या एक खाली कमरा सिर्फ कमरा नहीं, वो किसी के चले जाने के बाद बची हुई खामोशी हो सकता है। शायद इसलिए गुलजार के शब्द हमें अपने लगते हैं, क्योंकि वे हमारी ही जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में छुपी भावनाओं को आवाज़ दे देते हैं।
0: एक शायर जो खामोशी में भी आवाज़ सुन लेता है, एक गीतकार जो शब्दों में भी खुशबू भर देता है, एक निर्देशक जो कहानी के पीछे छुपे इंसान को भी देख लेता है।
1: कुछ शब्द किताबों में रह जाते हैं, कुछ गीतों में बस जाते हैं और कुछ सीधे दिल में उतरकर हमारी अपनी कहानी बन जाते हैं।

0: तो दोस्तों, एक बहुत ही खास बात कहनी है हमें आपसे, और वो ये है कि मंजिल दूर हो तो रास्ता बदलना तो ठीक है, लेकिन सपने छोड़ देना नहीं। गिरना कोई हार नहीं, बल्कि गिरकर फिर से उठ जाना ही असली जीत होती है।
1: और काजल, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विचार है जिसकी जरूरत शायद हम सभी को कभी ना कभी पड़ती है, या यूं कहें कि हाँ, इसका मतलब है नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो।
0: हर साल 18 अगस्त को वर्ल्ड नेवर गिव अप डे मनाया जाता है, और ये एक जागरूकता दिवस है जिसका मूल संदेश है कि मुश्किल परिस्थितियों, असफलताओं और चुनौतियों के सामने उम्मीद और प्रयास को बरकरार रखना चाहिए।
1: हमारी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। परीक्षा में असफलता, नौकरी न मिलना, किसी कॉम्पिटिशन में हार जाना, रिश्तों का टूटना, या अपने सपनों को पूरा करने में बार बार असफल होना।
0: ऐसे समय

0: अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। और पर उससे पहले हम जल्दी से आपको आज के प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न था कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो उसका उत्तर है ज्ञानपीठ। और आज का दूसरा प्रश्न था भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, जिसका उत्तर है भारत रत्न। तो दीजिए इजाजत काजल
1: और अनुषा को।
0: नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे यूथ प्रोग्राम युववाणी आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म दिल मेरा। बंद लिखा दिल मेरा, इसे खोलकर पढ़ लो जी। बंद लिखा दिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म दिल मेरा। बंद लिखा दिल मेरा, इसे खोलकर पढ़ लो जी। बंद लिखा दिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: फिल्म ताल, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और AR रहमान का संगीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: फिल्म संगीत श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: NR प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के

0: विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना
1: जी,
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
1: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी
1: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
1: जी,
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में हैं।
1: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
1: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
0: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
1: जी,
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
1: जी,
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
1: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी,
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी,
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दे।
1: इसका संबंध खानपान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अशोता, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू महाराज।
2: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
3: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
2: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
3: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
2: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
3: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
4: प्रणाम पिताजी।
5: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
4: लेकिन क्या पिताजी?
5: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
4: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
5: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
4: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
5: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
4: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
5: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
4: जी पिताजी।
3: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
2: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
6: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
7: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 900 घर थे वहाँ पर। नवाब वाइजली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ।

0: सब सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूं, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूं, फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊं कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियां भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
1: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
0: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा, पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कहे अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू मैं, अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
0: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कह इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाती हूँ? हाँ खाते हैं। तो सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, वाह वाह वाह वाह वाह, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे।
1: बहुत सुंदर महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: साथियों, बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए, उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
3: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
2: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
4: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय

0: प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
1: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
2: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
1: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
3: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
4: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
0: भगत सिंह।
5: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
6: पहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
5: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
7: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
8: कौन है?
9: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
8: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई, कहाँ चले गए थे तुम?
9: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
8: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
9: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख।
8: ये इस शीशी में क्या है?
9: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
8: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
9: मैं इसकी पूजा किया करूंगा अमरो। ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा।
8: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
9: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
5: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
7: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
9: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
10: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
9: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुपरिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
5: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानन सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया, लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे, लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
7: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
4: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आपने सुना आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

मालवा की शान आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आज रात 10 बजे सुनना न भूलिए फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आज शाम 7:30 पर अनुप्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रद्धा जगताप से उन्हीं के गाए कुछ गीत। आइए सुनें।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शगदा जगताप की स्वर लहरिया, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

लोक भाषाएं, लोक बोलियां और लोक संगीत। आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बालकृष्ण धनगर और साथियों के स्वर में कुछ लोकगीत। आइए सुनें।

बालकृष्ण धनगर और साथियों के स्वर में सुन रहे हैं आप मालवी लोकगीत। आइए सुने लोक संगीत की ये आज की अंतिम रचना।

बालकृष्ण धनकर को अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत में। इनका साथ दिया मूलचंद धनगर ने, साथ ही साथ ढोलक पर साथ दिया लाल कृष्ण धनगर ने, मंजीरे पर थे विकास और पारस नायक, नगाड़ी पर थे सोनू बरैया। लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आपने सुना मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के 12वें सम्मेलन में जन केंद्रित और कार्यान्वयन आधारित पर्यावरण उपाय करने का आह्वान किया है। इसका आयोजन 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किया गया दो दिवसीय सम्मेलन आज संपन्न हुआ। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत पृथ्वी के निर्माण की दिशा में प्रौद्योगिकी और जन भागीदारी को समन्वित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री यादव ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में भारत एक खुले, रचनात्मक और सर्वसम्मति आधारित संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सदस्य देशों के दृष्टिकोण और योगदान को महत्व देता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आंध्र प्रदेश में गांव से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया है। विशाखापट्टनम में आज भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। डॉ. सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी और तरुण चुघ को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। एक निजी समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बहुत झूठ फैलाया है और इस तरह की झूठी बातें फैलाकर राजनीति करना गलत है।
1: पूरा झूठ फैलाया देश भर में कि FCRA जो है क्रिश्चियन मिशनरी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी का टोटल इंडिया का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं वो 16% है, बाकी तो सब हिंदू का है। तो प्रोटेस्ट ज्यादा करना है तो हिंदू लोग करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हिंदू का है। देखिए, इस तरह का झूठे बातें फैला करके राजनीति करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये विधेयक विदेशी धन प्रवाह में पारदर्शिता लाएगा। उन्होंने कहा विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजना सही निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनकारी के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के अलावा पूर्व पुलिस महानिदेशक और पूर्व CBI निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। झारखंड में गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जन मुक्ति परिषद JJMP के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5,00,000 रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पंजाब के मुक्तसर निवासी परगट सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने देशभर में करीब 50 शिशुओं को बेचा है। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और मृतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। इससे पहले आज भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कल सुबह की शुरुआत करेंगे 6:05 पर भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से। 6:30 पर आपको सुनवाएंगे चिंतन, मानवता का सहज मार्ग, आलेख किशोर कुमार श्रीवास का होगा, वाचक श्वेता झवर रहेंगी। खेती की बातें होंगी संध्या कोठारी से, व्यवसायिक खेती विषय पर सुबह 6:35 पर, और सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान के प्रसंग।

आपका पत्र यह कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कल सुबह 7:20 पर। प्रस्तुत करता होंगे आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश।

लोक संगीत में कल आप सुनेंगे सुबह 9 बजे विष्णु प्रसाद मालवीय और साथियों को, 9:15 पर सुगम संगीत में आप सुन सकेंगे नियम कानून गोगो।

कल सुबह की सभाओं में ही सुबह 9:30 पर आपको सुनाया जाएगा शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आशा खाडिलगर का गाया राग अहीर भैरव। जिले की चिट्ठी को हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुबह 10:05 पर।

शाम की सभाओं में प्रमुख आकर्षणों में आप सुनेंगे यूथ प्रोग्राम युवावाणी शाम 5 बजे। विशेष चर्चाओं के दौर में आप सुन सकते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस पर चर्चाएं, और आज के क्रम इस सेगमेंट में आप सुनेंगे एक ही फिल्म से, फिल्म होगी कच्चे धागे। ग्राम लक्ष्मी ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे कल शाम 7:20 पर। विशेष आकर्षणों में आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, हरित भारत मिशन इस विषय पर राजेंद्र कुमार जैन से चर्चाएं।

दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम कल आप सुन सकते हैं रात 8:15 पर। कल रात 10 बजे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा नाटक राजदूत। लेखक होंगे पंडित विश्वास शर्मा, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज नर्मदा संरक्षण के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे और बीना रिफाइनरी से सेना के लिए -42 डिग्री तक न जमने वाले विशेष डीजल की पहली खेप रवाना हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नर्मदा नदी के जल को अविरल बनाए रखने के लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विकास, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और तकनीकी प्रगति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। श्री सिंह ने बताया कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे और अन्य बड़ी सड़क परियोजनाओं के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पद बनाने की मंजूरी भी दी गई है।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी के साथ काम हो रहा है, आगामी एक वर्ष में बहुत अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे, ऐसी रोड्स जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया, वो सब भी मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले और ये ठीक तरीके से संचालित हो सके तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद है उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैलारस सबलगढ़ वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ग्वालियर कैलारस मेमू ट्रेन का वीरपुर स्टेशन तक विस्तार भी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई रेल सुविधा से क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान होगा और विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 1,18,000 करोड़ रूपये की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और कलश यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि सागर में 100 करोड़ रूपये की लागत से गुरु रविदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा।
2: इस जातिवाद और तमाम प्रकार के चुनौती भरे माहौल में हमको वापस समरसता लाने की जरूरत है। इसलिए अयोध्या के धाम पर अगर विमानतल एयरपोर्ट बनता है

0: तो महर्षि वाल्मीकि याद रख करके बनाया जाता है और पंजाब गुरुओं की धरती पर रविदास जी महाराज के नाम पर विमानतल बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम तो मध्य प्रदेश वाले और भाग्यशाली हैं। 650वीं जयंती पर एक तरफ सागर के अंदर 100 करोड़ का वो धाम बनकर के तैयार है, हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करने वाले हैं, धूमधाम से उसका लोकार्पण कराएंगे।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय रखा गया है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एआई, क्वांटम तकनीकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल उपकरण शासन व्यवस्था में तेजी से बदलाव ला रहे हैं। नई दिल्ली में लेटरल एंट्री से नियुक्त संयुक्त सचिवों के 15 दिन के रिफ्रेशर कोर्स के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने अधिकारियों के लिए लगातार सीखने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावी संवाद जिम्मेदार शासन के लिए जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया सहित बदलते संचार माध्यमों को देखते हुए अधिकारियों के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना महत्वपूर्ण है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे। वे प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा पात्र बहनों के बैंक खातों में 2,148 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे, जिसके माध्यम से हर लाभार्थी के खाते में 1,750 रुपए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान मैहर में 256 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और पुलेला गायत्री गोपीचंद समेत विभिन्न खेलों के 15 अन्य खिलाड़ियों को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी ईसा याह अरुमैना यागम को अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एथलेटिक्स कोच परवीर सिंह, बॉक्सिंग कोच छोटेलाल यादव और शूटिंग कोच नेहा नंद कुमार चौहान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास विभाग एक परिवार की तरह हैं और सभी मिलकर देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ICAR की 97वीं वार्षिक बैठक में वैज्ञानिकों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के कृषि एवं पशुपालन मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में श्री चौहान ने कहा कि अब बीज से उत्पादन, उत्पादन से प्रसंस्करण और खेत से वैश्विक बाजार तक पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता खेत से होकर जाता है और इसमें ICAR के वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस बैठक में राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भाग लिया। सागर जिले की बीना रिफाइनरी से भारतीय सेना के लिए अत्यधिक ठंड में भी न जमने वाले विशेष डीजल की पहली वाणिज्यिक खेप आज रवाना की गई। एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल -42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी तरल रहता है। 49 वैगन में करीब 32,00,000 डीजल भटिंडा भेजा गया है, जहां से इसकी आपूर्ति दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैन्य इकाइयों को की जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। पूर्वी हिस्से में बने स्ट्रांग सिस्टम के असर से रीवा और बालाघाट समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं रीवा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। मुरैना में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण के दौरान खुदाई में 1913 के पुराने चांदी के सिक्के मिलने का मामला सामने आया है। ग्राम डोंगरपुर लोधा के पास खुदाई के दौरान ग्रामीणों और जेसीबी संचालक को सिक्के मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। सिक्कों पर जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर और 1913 लिखा हुआ है। एक सिक्के का वजन करीब 11.6 ग्राम और उसमें लगभग 91% चांदी बताई गई है। प्रशासन ने पुलिस को सिक्के बरामद कर सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सिक्कों की संख्या और उनकी ऐतिहासिक जानकारी के लिए जांच की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में डीपीसी अमरनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि 30 नए स्कूल भवनों के निर्माण और 44 जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार की स्वीकृति मिली है। नए भवनों के लिए 25% राशि का आवंटन भी हो चुका है। बुरहानपुर शहर की पहली डाक कांवड़ यात्रा के दौरान 25 श्रद्धालुओं ने ओंकारेश्वर से नर्मदा जल लेकर महज 9 घंटे में बुरहानपुर तक की यात्रा पूरी की। नर्मदापुरम जिले के पचवड़ी में आयोजित 10 दिवसीय ऐतिहासिक नागद्वारी मेले का समापन हुआ, जिसमें 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आगरमालवा में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ अवधेश प्रताप सिंह ने एथेनॉल उद्योग इकाई का निरीक्षण कर जल नमूनों और गुणवत्ता का जायजा लिया। भोपाल स्थित एम्स के बाल रोग विभाग और सेट समिति ने आमजनों को बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी सरल भाषा में देने के लिए बाल चिकित्सा स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र का शुभारंभ किया। अशोकनगर में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी ने 187 आवेदकों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिशा निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए और नर्मदापुरम जिले में निर्वाचन आयोग का विशेष दल 20 अगस्त तक निर्वाचक नामावली से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट ने आज नर्मदा संरक्षण के लिए अविरल मान नर्मदा मिशन गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कल मैहर में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जारी करेंगे और बीना रिफाइनरी से सेना के लिए -42 डिग्री तक न जमने वाले विशेष डीजल की पहली खेप रवाना हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आइए करते हैं सावन को लेकर एक छोटी सी चर्चा। सावन का महीना, हल्की हल्की बारिश भी है, हल्की हल्की बूंदों की फुहारे, बड़ा ही सुंदर महीना है सावन का महीना। सावन का महीना नाम सुनते ही मन में एक अलग ही आनंद और भक्ति का भाव भी जाग उठता है। श्रोताओं, आसमान में छाए हुए काले बादल, बारिश की रिमझिम फुहारे, खेतों में लहराती हरियाली और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, सावन के आने का एहसास अपने आप मन को खुशियों से भर देता है। सावन को भगवान शिव का भी प्रिय महीना कहा जाता है। यही वजह है कि इस पूरे महीने देश भर में शिव भक्ति का वातावरण भी दिखाई देता है। देवालयों में, मंदिरों में घंटियों की आवाजें गूंजने लगती है। बेलपत्र, धतूरा और पुष्पों की भरमार, और सबसे ज्यादा इन्हें की मांग होती है। पूरी श्रद्धा के साथ जाप और पूजन अर्चन देखा जाता है, सुना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करते हैं। दूर दूर से पवित्र नदियों का जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक भी करते हैं, और रास्ते भर कांवड़ यात्रा में महादेव के जय घोष लगाते चलते हैं। सावन केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं, बल्कि प्रकृति के उत्सव का भी एक बहुत ही सुंदर महीना है। गर्मी से तपती धरती को जब बारिश की बूंदें छूती हैं, तो चारों ओर नई जिंदगी दिखाई देने लगती है। पेड़ पौधों पर नई हरियाली छा जाती है और नदियां और तालाब पानी से भरने लगते हैं। खेतों में फसलें लहलहाने लगती है, झूले लग जाते हैं। सावन के झूले तो आपको याद ही है। आइए सावन के झूले पर ही केंद्रित ये लोकगीत सुनते हैं, जिसे गाया है बद्रीलाल मालवीय और साथियों ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: श्रोताओं, सावन की बात चल रही है और सावन की खूबसूरती तब और भी बढ़ जाती है जब इसी मौसम में त्योहारों की रौनक भी देखने को मिलती है। जी हाँ, आने वाला रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम का पर्व है। भाई की कलाई पर बहन द्वारा राखी बांधी जाती है और भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। चाहे वो भाई हमारे घर या आसपास ही मौजूद क्यों ना हो और चाहे वो भाई सरहद की रक्षा करने के लिए हमारी सीमाओं पर मुस्तैद क्यों ना हो। हमारे गांवों और कस्बों में तो सावन की अपनी ही रंगत होती है। कहीं झूले तो कहीं लोकगीत, कहीं महिलाएं सावन के गीत गाते हुए उत्सव मनाती हैं। मायके आई बेटियों और सखियों के साथ झूला झूलने की परंपरा सावन की यादों को और भी खूबसूरत बना देती है। सावन हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में प्रकृति, परिवार, रिश्तों और आध्यात्मिकता का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज जब हमारी प्रकृति प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब सावन का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। अगर हम सच में प्रकृति और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। भाई, बादलों को आकर्षित करने का काम तो पौधे और पेड़ ही करते हैं, तो क्यों ना हम ये संकल्प करें कि इस सावन से ही सही लेकिन एक बार फिर शुरुआत करें पौधारोपण की, प्रकृति को सजाने की, सावन को मनाने की। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। और अब आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे ये विशेष चर्चा सावन पर। आपसे कुछ ही पलों में किसान वाणी का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बुंदेली समाचार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमें सभी भैया बहनों को आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच गए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूब नौने हुओ। देखो का है कि भैया बहन हरों आज के समय में पुरानी तकनीकन को छोड़ के नए नए तरीका खेती के किसानी के अपनाए जान लगे हैं। ई किला ने भारत सरकार की कई सारी योजनाएं सोई वरदान साबित हो रही हैं। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन भी ऐसी ही एक योजना है जो किसानन के लाने बड़े ही फायदा की योजना है। इसके तहत किसानन को आधुनिक कृषि यंत्र और मशीनें खरीदने के लाने 40 से लेकर 50% तक की सब्सिडी दी जात है। छोटे सीमांत महिला एससी और एसटी किसानन को 50% तक को अधिकतम अनुदान मिल जात है। कम लागत में खेती और समय की बचत के लाने जो योजना चलाई जा रही है। योजना को मुख्य उद्देश्य है ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और थ्रेसर जैसी कृषि उपकरण पे आर्थिक सब्सिडी सहायता प्रदान करवो। कस्टम हायरिंग सेंटर मने जो किसान भारी मशीनें नहीं खरीद सकत वे किराए पे उपकरण लेबे के लाने फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर सकत है। खेती में आधुनिक तकनीकन को बढ़ावा देवे के लाने कृषि ड्रोन की मदद से खरीद पे भी वित्तीय सहायता दी जात है और इसके लाने किसान भैया बहने आधिकारिक पोर्टल जैसे कि एग्री मशीनरी पोर्टल या अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकत हैं। चयन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक के खाते में भेजी जात है। और आज हम बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं आपके लाने। देखो का है कि भैया बहनहरों दुधारू पशुओं में परजीवी जैसे कि कीड़ा है, किलनी है, जू है, जो पशुओं को खून चूस लेते हैं और इससे दूध की पैदावार घट जात है, मवेशियों को वजन कम होने लगत है और पशु बीमार पड़ जात है। सो ई के नियंत्रण के लाने पशुओं को बीमारियों से बचावे के लाने अपन कौन से उपाय कर सकते हैं ई के संबंध में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है डॉक्टर ज्योति जैन से अंशु तिलेठे बहन की जो बातचीत, विषय है दुधारू पशुओं में परजीवी नियंत्रण।
3: नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे पशुधन हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी सही देखभाल सही समय पर करना अति आवश्यक होता है। इंसानों की तरह इन्हें भी सही उपचार और देखभाल की आवश्यकता होती है। इसी संबंध में आज हम पशुओं में बाह्य परजीवी एवं इनके नियंत्रण विषय पर विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस विषय पर जानकारी देने के लिए हैं डॉक्टर ज्योति जैन। आप अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन विभाग भोपाल से हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: जैसा कि मैम हमने विषय लिया है तो सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे यही जानना चाहेंगे कि पशुओं में बाह्य परजीवी नियंत्रण होता क्या है।
4: किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा देश आज विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, किंतु साथ ही हमारे पशुओं की जो पर पशु जो उत्पादकता है वो बहुत कम है और इसका कारण जीवाणु एवं विषाणु जनित बीमारियों के साथ परजीवी जनित बीमारियां भी हैं।
3: बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और इसी तारतम्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि परजीवी किन्हें कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।
4: जो जीव अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। और परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन और अपने निवास के लिए पशुओं के शरीर के ऊपर निवास करते हैं, जैसे कि उनकी त्वचा पर, उनके बालों पर, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरे होते हैं अंतः परजीवी, जो कि पशुओं के शरीर के अंदर निवास करते हैं।
3: जी मैम, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बाह्य परजीवी कौन कौन से होते हैं और किस तरह से पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
4: बाह्य परजीवी में टिक्स, जिसे कि हिंदी में चीचड़, किलनी या गिचोड़ी भी कहते हैं, दूसरे जू या जुए या जिन्हें लाइस भी कहते हैं, तीसरे फ्लीस जिन्हें पिस्सू भी कहते हैं, और चौथे होते हैं माइट्स। और ये चारों प्रकार के जो बाह्य परजीवी हैं पशुओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों का ये परिसंचरण करते हैं। जैसे कि जो टिक्स होती है पशुओं में होने वाली, बवेशियोसिस की बीमारी, थाइलेरोसिस की बीमारी, एक ट्रिप्स की बीमारी जिसे सर्रा रोग भी कहते हैं, इसको फैलाने के लिए जो किल्ली या चीचड़ होते हैं उसका बहुत रोल होता है। और अभी हाल ही में पशुओं में एक लंपी स्किन डिजीज की बीमारी फैली हुई थी। बीमारी तो वायरस से होती है लेकिन उसको मच्छर जो है वो फैलाने में बहुत सहायता कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि ये हर तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। और भाईपरजीवी जो पशुओं की स्किन में होते हैं तो स्किन को वो काटते रहते हैं, उनका खून चूसते हैं जिससे घाव बन जाता है। और एक जो मान लो टिक है जैसे, तो वो कम से कम 0.5 से 2 औंस तक के पशु का खून चूस लेती है। तो आप समझ लो एक पशु में अगर 10,000 से 20,000 टिक्स होंगी तो वो कितना खून चूसेंगी। तो इसलिए पशुओं में खून की बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, त्वचा से संबंधित बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो जाते हैं। और उनमें अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया तो उनकी पूरी स्किन ही खराब हो जाएगी, पशु पूरे समय बेचैन रहेगा, उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, वजन में कमी होगी, प्रजनन क्षमता में कमी आएगी। तो आप देखिए ना कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हमारे पशुओं को।
3: बाह्य परजीवी का नियंत्रण कैसे किया जाए और इसके अलावा और कौन कौन से परजीवी इन पर आक्रमण कर सकते हैं?
4: बाह्य परजीवियों के लिए बहुत सारी नियंत्रण की विधियां हैं, मैं एक एक करके बताना चाहूंगी। कुछ रासायनिक उपचार भी होते हैं तो उसमें अमितराज या डेल्टा मैथ्रिन, साइपर मैथ्रिन जैसी दवाइयां हैं जिनको की उचित डाइल्यूशन करके शरीर पे स्प्रे किया जाता है जिसे कि छिड़काव विधि भी कहते हैं। अगर पशु कम संख्या में है तो अपन स्प्रे या छिड़काव विधि यूज कर सकते हैं। अगर पशु ज्यादा में है तो डुबकी विधि या जिसे डिप भी कहते हैं वो भी कर सकते हैं। एक 6 फीट बाय 12 फीट का एक टैंक बनाते हैं और उसमें सॉल्यूशन बना के उसमें पशु को डिप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना है कि पशु का सिर वाला जो हिस्सा है, नाक कान मुंह, उसको दूर रखना है और उसमें डिप करके निकाल लेते हैं। ये विधि भी होती है। अगर हम चाहते हैं कि ये वाले रासायनिक उपचार कर तो सकते हैं लेकिन आप पशु चिकित्सक की देखभाल में ही करें, है ना। कभी कभी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है इसलिए अपने से ना करें, पशु चिकित्सक से सलाह लें। इसके अलावा आजकल पोरॉन लिक्विड आते हैं जो कि पशुओं की रीढ़ की हड्डी पे एक ड्रॉप के रूप में डाल दिए जाते हैं, वो भी होता है। इसके अलावा कुछ पाउडर भी होते हैं जो कि राख में मिला के पशु के शरीर पर रगड़वा देते हैं, जैसे एक पोछा टाइप का लगवा देते हैं। और एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो भी मेथड आप उपयोग करेंगे वो धूप के समय ही करना है। ध्यान रखना है कि पशु उस चीज को चाटे ना। और जो भी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि कीटनाशक दवाइयां, तो पशु जहां रहता है, जहां उसका शेड है, वहां क्रैक्स हैं या दरारें हैं, उनमें भी करना है। क्योंकि अगर वहाँ उसके अंडे वगैरह रह गए तो फिर से पनप जाएगा।
3: और जड़ से मिटाने के लिए
4: ये उपाय अपने को करना है। और कुछ किसान भाइयों ने पहले भी मुझसे पूछा था कि मैडम कुछ परंपरागत उपचार हो तो वो बता दे, तो मैं बाह्य परजीवी के लिए बता देती हूँ कि लहसुन की कलियां आपको 10 नग लेना है, है ना। नीम की पत्तियां 1 मुट्ठी, नीम का फल या बीज 1 मुट्ठी, फिर बच आता है पाउडर 10 ग्राम वो ले लेंगे, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, और लंटाना जिसे कि अपन हिंदी में रायमुनिया भी कहते हैं, कुछ लोग चतुरंगी भी कहते हैं, उसकी पत्तियां 1 मुट्ठी ले लेंगे, तुलसी की पत्तियां 1 मुट्ठी, और इन सबको पीस लेंगे। पीस के इसमें 1 लीटर पानी मिला के एक स्प्रे की बोतल में भर लेना है और जहां जहां पे किल्ली वगैरह लगी है वहां पे उसका छिड़काव करना है। हफ्ते में 1 बार करना है, जब तक कि परजीवी नष्ट नहीं हो जाते तब तक के उपचार करेंगे तो ये टॉक्सिक भी नहीं होगा और सबके सब चीजें घर में उपलब्ध रहेंगी
3: ऑर्गेनिक तरीके से।
4: आगे
3: बढ़ेंगे मैम, आपसे जानेंगे कि इसके अलावा और कौन से परजीवी नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे पशुओं को।
4: देखिए अभी अपन ने बाह्य परजीवी के बारे में बात करी जो कि पशु के शरीर के बाहर थे, अब इसके बाद अपन अंतः परजीवी की बात करेंगे जो कि पशु के शरीर के अंदर होते हैं और ये पशु के पाचन तंत्र में भी हो सकते हैं, ब्लड में भी हो सकते हैं, आंखों में भी हो सकते हैं, श्वसन तंत्र में भी हो सकते हैं, हर कहीं ये रहते हैं। और ये जो अंतः परजीवी होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, गोलकृमी जिन्हें कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में पटारे भी कहते हैं, दूसरा होता है चपटे कृमी जो लंबे लंबे रिबिन के जैसे फीता कृमी उस तरह से निकलते हैं, और एक होते हैं क्यूलेक्स जो कि पत्ती के जैसे होते हैं। तो ये इस 3 तरह से अंतः परजीवी 3 प्रकार के होते हैं।
3: मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतः परजीवी की दवा किस उम्र में देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए।
4: अंतः परजीवी की दवा सबसे पहले अगर आपका बछिया या बछड़ा जो भी छोटा है उसको 10 से 15 दिन की उम्र में पहली बार देना है, 6 महीने की उम्र तक के हर महीने देना है, और 6 महीने की उम्र के बाद साल में 2 बार उसको देना ही है, और पर्टिकुलरली बारिश के पहले और बारिश के बाद में जरूर देना है, क्योंकि बारिश के समय क्या होता है, स्नेल जिसे घोंघा भी कहते हैं वो निकलता है, और पशुओं को ये समझ नहीं होती कि हम घास ही खाएं घोंघा ना खाएं, उसके साथ वो भी खा जाते हैं, उसके अंदर लाखों की संख्या में कृमि के अंडे भरे होते हैं और वो अंदर जाके पूरे पनप जाते हैं। और अगर आपका पशु गाभिन है तो उसे प्रसव के तुरंत बाद देना है कृमिनाशक दवाई, और प्रसव के 1.5 महीने बाद भी उसको दवाई दे सके,
3: उससे नियंत्रण किया जा सके। अच्छा मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं पशुओं के देखभाल और उपचार के लिए, तो एक महत्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में आती है, क्या पशुओं के लिए टीकाकरण से संबंधित भी कुछ है इस मौसम में कि टीकाकरण करवा दें तो वो सुरक्षित रह सकते हैं?
4: यस मैडम, बिल्कुल है। देखिए अभी कौन सा मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के समय में गलघोटू या घटसर जिसे कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, एक वो बीमारी, और दूसरी एक ब्लैक क्वार्टर जिसे कि लंगड़ा बुखार या चुरका रोग भी कहते हैं, ये 2 बीमारियां होने की संभावना होती है, और ये दोनों बीमारियां जानलेवा हैं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करती हूँ कि वो पशुपालन विभाग से संपर्क करके इन दोनों बीमारियों का टीका बारिश आने से पहले ही लगवा लेना चाहिए, और अगर अभी भी नहीं लग पाया है तो अभी संपर्क करके अभी भी लगवा सकते हैं, और इन बीमारियों के टीके विभाग के द्वारा बिल्कुल भी निशुल्क लगाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर आप टीका लगा लेंगे तो इन जानलेवा बीमारियों से आपका पशु बचा रहेगा, और आपको जो आर्थिक हानि होती अगर ये बीमारियां हो जाती

0: अपने को बहुत जरूरी है कि पर्टिकुलरली बारिश के मौसम में आप बहुत ध्यान रखें। आपकी अगर गौशाला में जो भी दरारें हैं उनको भरवा दें, गौशाला में चूना की पुताई करवा लें और जो पानी की टंकी उसमें भी चूना की पुताई करवा दें। आसपास अगर भराव वाले क्षेत्र हैं तो उसमें भी कृमिनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाइए और बाह्य परजीवियों से बचाइए। और कुछ मेथड मैंने बताए, जैसे कि आजकल तो पोरोन मतलब शरीर पर डाल दो, दो तीन बूंद, उससे भी बाह्य परजीवी निकल जाते हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। कुछ परंपरागत औषधि भी हैं, है ना, उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो अपने पशु को बाह्य परजीवी से बचाएं ताकि बबेशिया, थाइलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, लंपी स्किन डिजीज जैसी जो बीमारियां हैं जो कि ये बाह्य परजीवी उसको फैलाते हैं, उससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा, निश्चित ही आपके आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी।
1: जी मैम, किसान भाइयों, हमें आशा और उम्मीद है कि पशुओं में बाह्य परजीवी नियंत्रण विषय की ये उपयोगी जानकारी आपको फायदा पहुंचाएगी और हम अपने पशुओं को सुरक्षित और स्वस्थ रख पाएंगे। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: देखो भैया बहनों, जो बड़ी ही अच्छी जानकारी डॉक्टर ज्योति जैन ने दी दुधारू पशुओं में परजीवी नियंत्रण ई विषय पे, इनसे बातचीत करी हती अंशु तिलेठे बहन ने। और अब कछु मनोरंजन हो जाए, सो चलो अब अपन सुनत है नारायण सिंह कुशवाहा और संगी साथी इनको गाओ भोजो साउंड गीत।

0: भैया बहनों, आजकल नैनो यूरिया को प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन ई के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर किसान भैया बहनों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। सो ई के संबंध में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो लघु वार्ता नैनो यूरिया विशेषज्ञ है डॉक्टर उदय बड़गांवकर।
1: नमस्कार किसान भाइयों, उदय बड़गांवकर प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से आपके समक्ष उपस्थित हूं। नैनो यूरिया के बारे में आज बात करना चाहूंगा, क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण खाद है और इसकी काफी जरूरत किसानों को पड़ती है, लेकिन चूंकि मिल नहीं पा रहा है तो इसका एक अल्टरनेट क्या हो सकता है, वो नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया के बारे में आप लोगों ने भी काफी कुछ सुना ही होगा, लेकिन इसका इतना उपयोग किसानों के स्तर पर इस नैनो यूरिया का उपयोग उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है, और मैं इसी बारे में आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहूंगा कि नैनो यूरिया कुछ किसान भाइयों को लगता है कि वो इतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। नैनो यूरिया काफी प्रभावी है और नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल आपका एक एकड़ का काम कर सकती है, यानी 45 kg बोरे में जितना यूरिया होता है उसमें जितना नाइट्रोजन मिलता है उतना ही नाइट्रोजन आपको 500 ml की एक बोतल नैनो यूरिया की दे सकती है। तो खासतौर पर इसका उपयोग आप निश्चित रूप से करना, यदि आपने नहीं किया है तो निश्चित रूप से इसका उपयोग करें, क्योंकि यूरिया की जो आपकी परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनसे काफी हद तक आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और जहां तक नैनो यूरिया के डोज बनाने की बात है तो इसमें साधारणतया 4 ml तक का नैनो यूरिया 1 liter पानी में लगता है, यानी पर एकड़ के प्रति एकड़ के हिसाब से यदि एप्लीकेशन की बात करें तो करीब 250 से लेके 500 ml तक का यूरिया जो है वो 125 से लेकर 150 liter पानी में घोला जा सकता है। और इसके अलावा यदि किचन गार्डन की हम बात करें तो 2 ml की मात्रा जो है वो 1 liter पानी में लगती है। इस हिसाब से यदि आप मिक्सर बनाएंगे और उसके बाद में इसका स्प्रे आप अपनी फसलों पे कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। खास तौर पे फर्स्ट स्प्रे जो करेंगे वो साधारणतया जो फसलें हैं उसमें 30 से 35 दिन बोनी के बाद में की जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्प्रे है वो फ्लावरिंग जब होने लगती है फसलों में तो उसके 20 से 25 दिन के आसपास तब भी उसको अप्लाई करना है। और जो इसको अप्लाई करने की विधि रहेगी उसमें पहले तो बॉटल को आप अच्छे तरीके से शेक कर लें और उसके बाद में किसी फ्लैट फैन या फिर जो कट नोजल आता है उसकी सहायता से मिस्ट बनाते हुए और इस नैनो यूरिया को आप जो है वो अपने खेत में या अपने किचन गार्डन में भी छिड़काव कर सकते हैं। खासतौर पर ध्यान ये रखना है कि या तो पत्तियां जो है वो सूखी हुई हो, यदि बहुत ज्यादा गीली हुई हो तो वो फर्टिलाइजर आपका बेकार भी जा सकता है, और दूसरा यदि उस पर जम जाएगा तो पत्तियों को जला भी सकता है। इसलिए उन चीजों से बचने के लिए खासतौर पे एकदम सुबह का वक्त जो है वो अवॉइड करें, बिल्कुल सुबह का बहुत ज्यादा वक्त, क्योंकि उस समय उसमें पौधों पर ओस भी जमी हुई होती है। और बहुत ज्यादा यदि तापमान हो तो उस समय दिन का समय भी अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे में जो आप यूरिया नैनो अप्लाई करेंगे या डालें वो उसका वाष्पीकरण ज्यादा हो सकता है और वो उतना काम आपके नहीं आएगा। तो इस तरह से नैनो यूरिया का उपयोग करेंगे आप तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खासतौर पे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और खासतौर पे यूरिया की कमी को लेकर जो आप परेशानियां सहन कर रहे हैं, जो परेशानियां आपके समक्ष आ रही है, उन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करूंगा कि नैनो यूरिया के उपयोग की ओर निश्चित रूप से बढ़े। इफको का नैनो यूरिया आता है, इसके अलावा भी और भी नैनो यूरिया है, और फोलियर एप्लीकेशन खासतौर पर नैनो यूरिया का जो छिड़काव होगा वो फोलियर एप्लीकेशन होगा, वो सीधे सॉइल में नहीं देना है। और इस तरह से अब इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे, और जैसा कि मैंने नोजल का बताया है कि या तो आप फ्लैट फैन नोजल का उपयोग करें या कट नोजल का उपयोग करें, तो आपका स्प्रे जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जैसा एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि 45 kg की यूरिया की जो होती है उसमें जितना नाइट्रोजन आपको या जितना नाइट्रोजन आपको मिलता है उतना ही नाइट्रोजन आपको एक 500 ml नैनो यूरिया की बोतल प्रदान कर देगी और आपकी फसलों का जो नाइट्रोजन की आवश्यकता का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।
0: अभी आपने सुनी जो लघु वार्ता नैनो यूरिया ई विषय पे विशेषज्ञ हते डॉक्टर उदय बड़गांवकर। भैया बहनों, आज के समय में सरकार हमारे किसान भैया बहनों के लाने कई सुविधाएं दे रही है। एम किसान पोर्टल भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक ऐसी पहल है जो किसानन को मोबाइल संदेशन के जरिए कृषि सलाह, मौसम की जानकारी और बाजार भाव उपलब्ध करात। इको आधिकारिक एम किसान पोर्टल पर देखो जा सकत है। एम किसान पोर्टल मोबाइल संदेश के माध्यम से किसानन को उनकी भाषा में टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के जरिए कृषि संबंधी सूचनाएं दे देते हैं। कृषि सलाह मने फसल की देखरेख, खाद और कीट नियंत्रण से जुड़ी जानकारी भी समय समय पे दे दी जाती है। किसान पंजीकरण के लाने किसान भैया बहन पोर्टल पे अपना मोबाइल नंबर और विवरण दर्ज करके इन सेवाओं को लाभ ले सकते हैं। जितने मौसम जल्दी बदलते हैं और सिंचाई की दिक्कत रह होते हैं, उतने एम किसान पोर्टल के जरिए बस कार्य की और सूखे की सही जानकारी सूचना मिल जाते हैं। साथ ही कृषि यंत्रीकरण की सब्सिडी वाले नोटिफिकेशन भी मोबाइल पे मिल जाते हैं। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने आप औरन को दी वे आपके काम में आए और खेती किसानी के लाने सरकार की सभी योजनाओं को आप औरन भी फायदा उठाते हो। और ई के संगे आज को किसान वाणी कार्यक्रम हम इतना समाप्त करते हैं। सो स्वीकार करो पूनम बहन की राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: उतना बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग अरे अब पहली वाली बात कहाँ
3: पर हम तो सभी डाले हैं
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
3: सच
2: है बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
3: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान साझेदारी और व्यापार प्रौद्योगिकी निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव।
1: जापान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर है। ये प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में 18 से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट सहित कई अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। इस इन्वेस्टमेंट मीट में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपतियों, सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कि हम भारत और जापान के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों और जापानी प्रतिनिधि मंडल की यात्रा पर विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
2: भारत और जापान के संबंध बहुत प्राचीन हैं और बहुत गहरे हैं। जापान में भी बहुत सारे लोग बुद्धिज्म की प्रथा को मानते हैं और उसके लिए वो भारत तीर्थ यात्रा के लिए भी आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि किस तरह जापान ने हमेशा भारत की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के लिए किस तरह का योगदान दिया है। अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को देखें तो हम सबको याद है कि 80 के दशक में किस तरह निवेश भारत में आया था और उसने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिल्कुल बदल दिया। दिल्ली की मेट्रो, उसमें जापान का योगदान रहा, आर्थिक भी, उन्होंने ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी दिया और टेक्नोलॉजी भी दी। अब आप देख रहे हैं कि भारत में मेट्रो की व्यवस्था है और बहुत तेजी से उसमें प्रगति हो रही है। इसी तरह दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बना रेलवेज का, उसमें भी जापान की ODA उनका है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, उससे बहुत मदद मिली और इस समय पूरा देश आशा कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है जो बहुत ही तेज रफ्तार से चलेगी, उसका काम भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसमें भी जापान की आर्थिक सहायता भी है और टेक्नोलॉजी भी जापान की है। तो इस तरह एक ही सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जापान का बहुत योगदान भारत के लिए रहा है और इसका एक जो भाव है वो मित्रता का है। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनमें सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बहुत ऊपर आता है और सब हमें याद है कि किस समय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भारत की तरफ आ रहे थे म्यांमार से, तो उसमें जापान का बहुत सहयोग था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सुखद यादें हैं और उसमें भारत और जापान की आगे की यात्रा के लिए एक ये बहुत ही अच्छी नींव है और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी इमारत भारत और जापान की मित्रता की, सहयोग की और एक दूसरे की मदद करने की इस समय बनाई जा रही है।
1: अब जापान का जो ये प्रतिनिधि मंडल है, ये एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जो आ रहा है भारत की यात्रा पर, ये उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग को अटेंड करेगा जिसमें इस बैठक में राज्य सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसका मकसद है कि जापानी कंपनियों की व्यवसायिक दिलचस्पी और को ठोस निवेश या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या संयुक्त परियोजनाओं को और बड़े पैमाने में रोजगार पैदा करने में बदलना। आप कैसे देखते हैं इस प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को?
2: इस समय भारत जापान का जो सहयोग है, जो मित्रता है, उसका फोकस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट पर है। भारत और जापान के बीच में इस शताब्दी में शुरू से ही वार्षिक समिट होती है तो प्रधानमंत्रियों के बीच में, 2026 में दिल्ली में हुई थी जिसमें जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइशी भारत आई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर, और उसमें और उससे पहले जो मीटिंग हुई थी पिछले वर्ष, ये निश्चय हुआ था कि 10 साल में जापानीज कंपनी 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेंगी, जो करीब 60,000 करोड़ करीब संपत्ति है। तो इसमें कुछ काम तो हो चुका है और जब जुलाई की मीटिंग जो हुई थी उसमें 150 जापानीज कंपनियां आई थी और 120 MOU उस समय साइन हुए थे जिनकी टोटल निवेश होना था $12.5 बिलियन, $12.5 बिलियन। अब इस समय जो लखनऊ में एक चर्चा होगी, कॉन्फ्रेंस होगी और बातचीत होगी, उसमें भी 150-200 जापानीज कंपनी आ रही है और मेरा मानना है कि बहुत सारे MOUs वहां पे हस्ताक्षर उन पर होंगे और यूपी की प्रगति बहुत तेजी से इस समय हो रही है। भारत तो विकसित भारत की तरफ बढ़ ही रहा है और उत्तर प्रदेश में जैसे जयवर एयरपोर्ट नया आ गया है, इंडिया पूरा एक डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो तरह तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है कि विदेशी निवेशक जो भारत आए उनके लिए कोई अड़चन ना आए और बहुत जल्दी जो भी वो निर्णय लें, जो भी वो निवेश के लिए उनका जो प्रोजेक्ट है, जो सोच है, उसको एक रियलिटी का रूप दिया जाए।
1: एम्बेसडर टाइल, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 25-26 में जापान के साथ भारत का कुल व्यापार 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 6.04 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 21.44 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात शामिल था। 2024-25 में जापान के कुल व्यापार में 1.4% हिस्सेदारी के साथ भारत 18वें स्थान पर रहा, जबकि भारत के कुल व्यापार में 2.1% हिस्सेदारी के साथ जापान 17वें स्थान पर रहा। भारत में जापान का FDI मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल, फाइनेंशियल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आया है। भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। आप इस व्यापारिक साझेदारी को और मजबूती करने की संभावनाओं को कैसे देखते हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्र जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल है?
2: इस समय व्यापार भी जितना होना चाहिए, जितना हो सकता है उससे कम है। निवेश की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। अभी जुलाई में जब प्रधानमंत्री साने ताकाइशी भारत में थी तो कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर दोनों नेताओं ने अपनाया, एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी रेजिलियंस पर। तो नया निवेश जो होगा वो लिक्विड नेचुरल गैस स्टॉकपाइलिंग की एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, एक जापानीज निवेश ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ओडिशा में लगने का विचार है, क्योंकि भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है उसके लिए ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा सेंटर्स में, उसमें काफी निवेश भारत में हो सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बहुत अधिक बात चल रही है कि जापान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पर उनको रक्षा के जो इक्विपमेंट उसके निर्यात पर पहले कुछ उसमें रोक थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको उन्होंने हटा दिया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के एक नया आयाम खुला है जिसमें कि भारत और जापान बहुत सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय दोनों देश चीन पर बहुत अधिक निर्भर हैं और दोनों देश ये चाहते हैं कि चीन पर ये जो निर्भरता है क्रिटिकल मिनरल्स की, इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की, वो कम हो। उसके लिए जापान भारत में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन की, भाई क्रिटिकल मिनरल भारत में कहाँ कहाँ है और उसमें उनको रिफाइन करने में उसमें भी मदद करेगा। और मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, इस पर भी काफी ये देखा गया है कि जो एक्टिव PIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो एक्चुअल दवाई होती है, उस पर भी दोनों देश कुछ चाइना पे ज्यादा निर्भर है, तो उसको भी देखा है कि दोनों देशों ने निर्णय किया है कि उसमें एक दूसरे की मदद करके प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। मेडिकल डिवाइसेस, आजकल देखिए अस्पताल में जाएं तो नया नया इक्विपमेंट रोज नजर आता है, रोबोटिक सर्जरी है, तरह तरह के एक्सरे वगैरह है, NMR है एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अब दोनों देश देख रहे हैं कि नए रास्ते ढूंढे जाएं, कि दुनिया जिस तरह प्रगति कर रही है एक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुलाई में कहा था कि जो मीटिंग उन्होंने की है प्रधानमंत्री साने ताकाइशी के साथ, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा है। एजेंडा ये है कि कैसे भारत भी ट्रांसफॉर्म, मतलब एक लेवल से दूसरी लेवल, ऊंची लेवल तक पहुंचे, और उसकी जो जड़ में होगा वो एक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया इस समय एक कगार पर खड़ी हुई है, जो एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी वजह से सब आ रहा है, और भारत और जापान मिलकर एक और एक 11 होते हैं और

0: भारत की स्किल्स, स्किलिंग, हमारे आईटी के इंजीनियर्स, उनका तो लोहा दुनिया मानती है, और जापान की टेक्नोलॉजी मिलकर बहुत ही अच्छा काम अपने लिए, अपने दोनों देशों के लिए और विश्व के लिए कर सकते हैं।
1: जापान में 100 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। क्या आपको वहां भारतीय कंपनियों की मौजूदगी बढ़ाने की संभावना नजर आती है, और वो किन क्षेत्रों में हो सकती है?
0: इस समय भारत की कंपनियां अधिकतर सर्विस सेक्टर में है, या सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब में अधिक है। और मैं समझता हूं कि भारत की कंपनीज वहीं ज्यादा काम कर सकती हैं जहां कुछ ह्यूमन लेबर की आवश्यकता हो, स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता हो, और या वहां की इंडस्ट्री को कुछ सर्विसेज, मेंटेनेंस की सर्विसेज और इस तरह की आवश्यकता हो। पर हमारे जो निवेशक हैं और हमारे कंपनीज हैं, उनको नए नए रास्ते वहां ढूंढने चाहिए, जिससे कि भारत भी वहां पे जापान में निवेश कर सके, और भारत की कंपनियां भी जापान के साथ, कंपनियों के साथ मिलकर जापान की इकोनॉमिक प्रगति में अपना योगदान कर सकें।
1: अभी जापान में लगभग 59,000 भारतीय रह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले सालों में ये संख्या और बढ़ सकती है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? और दोनों देश जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का हो, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
0: जापान की जनसंख्या इस समय धीरे धीरे कम हो रही है। वहाँ बर्थ रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है, बहुत एजिंग जनसंख्या है, क्योंकि जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ऊंची है। और इस सब के लिए जापान की सोसाइटी को जो यंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में, डे केयर में, एजेड केयर में भी उनको बहुत लोगों की आवश्यकता है। और एक तरफ से तो वो, जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, कुछ रोबोटाइजेशन की तरफ भी बहुत ज्यादा वहां पे जा रहे हैं, पर सर्विस सेक्टर में भी जो अवसर हैं वो भारतीय स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और प्रोफेशनल्स जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, उनके लिए बहुत नए अवसर वहां पर खुल सकते हैं। भारत से टूरिज्म जापान अब बहुत बढ़ना शुरू हुआ है, और जापान में क्योतो पुराना राजधानी है उनकी, वहाँ बहुत लोग जाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट मंदिर हैं, एक नागासाकी के रास्ते में है, टोक्यो में बहुत स्थान है। जापान से भारत लोग बुद्धिस्ट सर्किट पर काफी आते हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए भी वो आते हैं, क्योंकि वहाँ टाइगर, लायन, इस तरह हाथी वगैरह जापान में नहीं है, तो टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से भारत में टूरिज्म को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है, नए नए होटल्स बन रहे हैं, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भारत में होती चली जा रही है, एयरपोर्ट, अब आप जाएं पूरे भारत में अच्छे अच्छे एयरपोर्ट हर जगह, छोटी छोटी जगहों पर भी खुल रहे हैं, क्योंकि जापानीज जब आते हैं तो कुछ वो बहुत चाहते हैं कि सब चीज बिल्कुल ठीक चले, स्मूथली चले, और अब भारत उस दिशा में बहुत प्रगति कर चुका है और प्रगति कर रहा है, तो टूरिज्म भी दोनों देशों का बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, मैं समझता हूँ।
1: सर, इस संदर्भ में आप दोनों देशों के बीच स्टूडेंट एक्सचेंज की संभावनाओं को कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जापान में यूनिवर्सिटीज में जो भी पढ़ाई होती है वो जापानीज भाषा में होती है, तो वहाँ भारत के विद्यार्थी जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं, पर बहुत अभी संख्या उनकी कम है। पर उसका एक रास्ता ये ढूंढा गया है कि भारत के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जापानीज भाषा पढ़ाने के अवसर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी दोनों देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। ये कहा गया था कि करीब 30,000 भारतीयों को जापानीज भाषा में, जो अच्छी लेवल की जिस बोल सके, उनको ट्रेन किया जाएगा। वो सब कार्यक्रम चल रहा है। जब ये एक रास्ता खोल देगा भारत के विद्यार्थियों को जापानीज यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी और रिसर्च के लिए भी।
1: एम्बेसडर टाइल, आपने बहुत विस्तार से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान साझेदारी और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश के नए अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार अश्वनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com

0: और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। दिल ने फिर याद किया, इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दिन ने फिर याद किया। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो दोस्त श्रोताओं मनीष कुमार सोनी। आप सभी को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। बारिश और मोहब्बत, बारिश और एक पुराना नाम, एक अधूरी मोहब्बत जो बारिश की खुशबू में आज भी जिंदा है, एक ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं हम आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है दिन ने फिर याद किया। चलिए कहानी के पन्नों को पलटते हैं। कभी कभी अतीत लौट कर नहीं आता, बस उसकी खुशबू किसी बारिश भरी शाम में फिर से महसूस होने लगती है। खिड़की के शीशे पर गिरती हुई पानी की बूंदें, किसी पुराने गीत की धुन और अचानक याद आ जाने वाला कोई चेहरा, ये सब मिलकर हमें उन दिनों में ले जाते हैं जिन्हें हमने बहुत पीछे छोड़ दिया होता है। एक ऐसी ही शाम थी, बाहर बारिश हो रही थी और गौरवी खिड़की के पास बैठी पुराने रेडियो पर बजता हुआ कोई गीत सुन रही थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और मेज पर रखी हुई चाय से उठती हुई भाप जैसे बीते हुए समय की कोई तस्वीर बना रही थी। रेडियो पर पुराने दौर का एक गीत बज रहा था और उस गीत की धुन ने जाने क्यों गौरवी के भीतर एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे उसने बरसों से बंद करके रखा था। उस दरवाजे के पीछे एक नाम था, अनुज।

गौरवी और अनुज की मुलाकात उस दौर में हुई थी जब प्रेम इतना महत्वपूर्ण शब्द न हुआ करता था। न मोबाइल थे, न हर पल संदेशों को भेजने की वो सुविधा, न सोशल मीडिया जिस पर किसी की मौजूदगी का अक्सर पता चल जाया करता है। किसी को याद करने के लिए एक खत लिखा जाता था और उस खत के जवाब का इंतजार कई कई दिनों तक किया जाता था। शायद उस दौर की मोहब्बत में यही इंतजार उसे और भी खूबसूरत बनाता था। गौरवी कॉलेज की लाइब्रेरी में अक्सर खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। अनुज भी लाइब्रेरी आता था, लेकिन धीरे धीरे उसे किताबों से ज्यादा उस खिड़की के पास बैठी लड़की में दिलचस्पी होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके गौरवी से पूछ ही लिया, आप यहां रोज बैठती हैं? गौरवी ने किताब से नजर उठाई और मुस्कुराकर पूछा, जी हां, क्यों? ऐसा क्यों पूछा आपने? अनुज ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, बस कुछ नहीं, किताबों की अलमारी वैसे इस तरफ है। गौरवी जानती थी कि किताबों की अलमारी दूसरी तरफ भी थी, लेकिन उसने उसकी बात का राज खोलना ठीक नहीं समझा। शायद उसे भी अच्छा लगने लगा था कि कोई बहाना बनाकर उसके पास आता है।

धीरे धीरे अनुज और गौरवी की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉलेज की कैंटीन में, और कभी उस पुराने बस स्टॉप पर जहां शाम के वक्त भीड़ कम हो जाती थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गौरवी के पास छतरी नहीं थी और अनुज के पास एक छोटी सी छतरी थी। उसने बिना कुछ कहे छतरी गौरवी की तरफ बढ़ा दी। आप भी इस छतरी के नीचे आ जाएं, गौरवी ने उसकी तरफ देखा। और आप? अनुज मुस्कुराया और बोला कि मैं थोड़ा भीग भी जाऊंगा तो चलेगा। गौरवी ने छतरी पकड़ ली और दोनों एक छोटी सी छतरी के नीचे चल पड़े। रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन उस दिन दोनों को लगा जैसे बारिश ने जानबूझकर उस रास्ते को लंबा कर दिया हो। शायद उसी बारिश के वजह से उनके बीच कुछ ऐसा मन और दिल मिला जिसका नाम दोनों जानते थे, लेकिन उसे जुबान पर लाने की हिम्मत अभी नहीं थी। और दोनों रास्ते पर चले जा रहे थे। कहीं दूर से यह आवाज आ रही थी।

0: दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लौटेंगे इसी कहानी के शेष भाग के साथ, अब से बस कुछ ही पलों में।
1: युववाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
5: सच?
4: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
5: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
4: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
5: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
4: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
6: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया और कहानी चल रही है गौरवी और अनुज की। चलते चलते काफी दूर निकल आए। वो प्यार बहुत साधारण था, लेकिन शायद इसी वजह से खूबसूरत भी। सुबह कॉलेज जाने से पहले एक छोटी सी मुलाकात, रास्ते में पी गई चाय, किसी किताब के अंदर छुपा कर रखा गया छोटा सा खत और शाम को घंटों बैठकर भविष्य के सपने देखना, यही उनकी दुनिया थी। अनुज अक्सर कहता था कि एक दिन उनका अपना एक छोटा सा घर होगा। बातों का दौर चलता जाता और गौरवी कई बार हंसते मुस्कुराते उसका जवाब दिया करती। लेकिन सच तो यही था कि अनुज की हर बात गौरवी को और गौरवी की हर बात अनुज को बेहद बेहद पसंद आती थी।

0: गौरवी रेडियो पर यह गीत सुनते सुनते न जाने कहाँ खो गई। समय बीतता चला, गीत जैसे ही बंद हुआ, खत्म हुआ, न जाने उनकी जिंदगी में एक लंबा विज्ञापन कैसे चला आया।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
0: विज्ञापन जैसे ख़त्म हुआ तो गौरवी की नींद टूटी। बहुत लंबा वक्त गुजर गया। कब कॉलेज ख़त्म हो गया, कब ज़िंदगी के दो नए रास्ते अलग अलग मोड़ पर मुड़ते हुए चलते गए और चले ही गए। उनकी कहानी शायद वैसी पूरी नहीं हुई जैसे उन्होंने कभी सोची थी। हाँ, ये ज़रूर था कि गौरवी के मन में ख्याल आता था कि वो दौर शायद बीतता नहीं अगर तुम ना होते।

कहानी में उनका वो छोटा सा घर भी नहीं बना जिसकी खिड़की के पास बारिश देखने के लिए दो कुर्सियां रखी जानी थी। लेकिन क्या हर प्रेम कहानी का अंत साथ रहने में होता है? शायद नहीं। कुछ प्रेम कहानियां कभी विवाह में बदल जाती हैं, कुछ दोस्ती में और कुछ यादों में और कुछ दुआएं बन जाती है। गौरवी और अनुज की कहानी भी शायद ऐसी ही थी। एक ऐसा प्यार जिसमें अधिकार कम था और सम्मान ज्यादा, जिसमें साथ रहने की चाहत थी लेकिन एक दूसरे की खुशी उससे भी ज्यादा बड़ी थी। आज जब भी बारिश होती है, इतने सालों के बाद भी, गौरवी कभी कभी खिड़की खोल ही देती है। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरती है और वो मुस्कुराकर कहती है, कुछ लोग जिंदगी में लौटकर नहीं आते लेकिन उनकी मोहब्बत कभी जाती भी नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा हाथ पकड़कर साथ नहीं चलता। कभी कभी वो बहुत दूर तक खड़ा होकर भी सिर्फ इतना कहता है, तुम खुश रहो, मैं यहीं हूं तुम्हारी खुशी की दुआओं में। और शायद यही प्यार का सबसे खूबसूरत रूप है। किसी को पाना प्रेम हो सकता है, लेकिन किसी को खोकर भी उसके लिए खुशी मांगना, यही तो बिना शर्त की मोहब्बत है। उस रात बारिश फिर हुई। गौरवी खिड़की के पास बैठी रही और बहुत देर तक बारिश को सुनती रही। अनुज पास नहीं था लेकिन उसकी यादें उसके पास थी। समय बीतता रहा और एक बार फिर खिड़की के शीशे पर आखिरी बूंद ठहर कर नीचे उतर गई। तुम मेरे साथ रहो, ये मेरी चाहत थी। तुम जहां भी रहो खुश रहो, ये मेरी मोहब्बत है। और शायद उस बारिश की खुशबू में आज भी गौरवी और अनुज की अधूरी लेकिन बेहद खूबसूरत कहानी कहीं ना कहीं सांस ले रही है।

0: यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में समाचारों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। गोल में भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 372 रन का लक्ष्य दिया। मेजबान टीम ने दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
3: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन तथा आपदा से उबरने की क्षमता विकसित करना, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन। बैठक का समापन संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान की स्वीकृति के साथ हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अभियान युवा ग्राहकों के साथ निरंतर जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के नेतृत्वकर्ता एक साथ आए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख प्राथमिकताओं, उभरते अवसरों और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के बदलते परिदृश्य पर विचार विमर्श किया गया। इस बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण सुविधा का विस्तार करके और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जारी रखा है।

0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। श्री जायसवाल ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का संघर्ष जारी रहेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है।
1: जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जाने गई है वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए, उसके अलावे बहुत लोगों को इंजरीज भी आई है, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: समिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व पुलिस महानिदेशक और सीबीआई के पूर्व निदेशक शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समिति के अन्य सदस्यों के नाम पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मिलने के बाद कल आदेश जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि समिति महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन उत्पीड़न के आरोपों तथा सोशल मीडिया के जरिए अन्य संवेदनशील लोगों को निशाना बनाए जाने के मामलों की भी जाँच करेगी। अदालत ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुए हिंसा से संबंधित वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग समिति को सौंपी जाएगी। शीर्ष अदालत कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस साहूकार पर प्रश्न पत्र लीक, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ और सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रति उम्मीदवार 70 से 80 लाख रूपये की रिश्वत मांगने के आरोप है। महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गई। इसके साथ ही राज्य में करीब 21.16% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। मतदाताओं के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय होगा। अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में उद्योग, निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, सुरक्षा और जन कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कम समय में पश्चिम बंगाल के विकास की नई नींव रखी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन जनता करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज अधिकारियों को आदेश दिया है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले कुछ दिनों के भीतर व्यापक चिकित्सा जांच के लिए इस्लामाबाद

0: के शिफा अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराने और उनके परिवार से मिलवाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्र यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
1: ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलिबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ कोई वार्ता नियोजित नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीकी नाकाबंदी पूरी तरह से लागू है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फलस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों के मंत्री वारसेन अघा बेकियन शाहीन से मुलाकात की। फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फलस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इनमें विकास सहयोग से जुड़े विभिन्न परियोजनाएं भी शामिल हैं। गोल में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 84 रन बना लिए थे। यहां से भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत है, जबकि श्रीलंकाई टीम जीत से अभी भी 288 रन दूर है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा ने सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए नवनीत कौर, सुनीलिता तोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रिमस्यामी और साक्षी राणा ने गोल दागे। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। वहीं एक बहुप्रतीक्षित मुकाबले में कल एम्स्टरडैम में भारतीय पुरुष टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। अरब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने कल पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम और माहे, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल बादल गरजने तथा बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा पर विदेश मंत्रालय ने कहा देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगा। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमरीका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती।

0: Vichand advanced to pre-quarter finals in Badminton World Championships. That's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत।

फिल्म श्री 420 लता मंगेशकर और साथ में आवाज दी है मन्ना डे ने। शैलेंद्र की गीत रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेमंत कुमार के संग

0: दिल्ली का ठग 1958 की फिल्म अभिनेत्री नूतन और किशोर कुमार पर फिल्माई गई इस फिल्म का गीत सुनिए। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं, SH बिहारी के बोल हैं और रवि का संगीत है।
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा

0: 9.48 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

सामईन महफिल आदाब, मैं हूँ आफरीन बानो और उर्दू प्रोग्राम कहकशा में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आप सुन रहे हैं महफिल समा, एक ऐसी रूहानी महफिल जहाँ अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल में उतर जाते हैं, जहाँ सुर सिर्फ मौसीकी नहीं रहते बल्कि इश्क की जबान बन जाते हैं, जहाँ कव्वाली महज एक फन नहीं बल्कि दिल से दिल तक पहुँचने वाली एक रूहानी कैफियत बन जाती है। आज की हमारी महफिल मंसूब है उस बुजुर्गे दीन की याद में जिनकी खानकाह ने सदियों तक मोहब्बत, सब्र, सादगी और इंसानियत का पैगाम दिया। जिनके दर से कोई मायूस लौटे ये उनकी तालीम का हिस्सा नहीं था, और जिनकी जिंदगी ने ये समझाया कि खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता उसकी मखलूक से मोहब्बत और उसकी खिदमत भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्ला अलैह की। सूफियाना रिवायत में इश्क सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का रास्ता है। ऐसा इश्क जो इंसान को अपने गुरूर से निकाल कर खुदा की तरफ ले जाए, जो दिल को नर्म करे, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने की तालीम दे, और जब इश्क की यही कैफियत सुरों में ढलती है तो समा वजूद में आता है, और जब वही कैफियत अल्फाज में उतरती है तो कव्वाली बन जाती है। तो आइए इसी इश्क की रोशनी से अपनी आज की महफिल को रोशन करते हैं और आगाज करते हैं हमारे महफिल समा के खूबसूरत प्रोग्राम का। सुनते हैं ये कव्वाली। हे कहाँ कोई भी मुस्तफा की तरह, वो है यकता जहाँ में खुदा की तरह। आवाज है असलम साबरी और साथियों की, कलाम है असद अजमेरी का। समाअत कीजिए।

0: नीले सारे नीला पानी सा पानी पा मापानी मापा मैं सारे मैं सारे सा नीसा पानी पारे सा
1: नीले खामोशिया है नीले खामोशिया
0: नीला पानी पारे सारे नीसा पानी सा पानी पा मापा

आप सुन रहे थे असलम साबरी और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कव्वाली। और महफिल समा में हम आगे बढ़ रहे हैं इश्क से इबादत तक और इबादत से इंसानियत तक के उस सफर पर जिसकी एक बेहद रोशन मिसाल है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी को समझना दरअसल सूफियत की उस रूह को समझना है जिसमें जाहिरी दिखावे से ज्यादा दिल की सफाई को अहमियत दी जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैदाइश बदायूं में 1238 ईस्वी में हुई। बचपन से ही इल्म और रूहानियत की तरफ आपका रुझान रहा। आगे चलकर आप दिल्ली पहुँचे और चिश्तिया सिलसिले के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजेशकर से आपकी रूहानी निस्बत कायम हुई। यही निस्बत आगे चलकर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान बनी। चिश्तिया सिलसिले की तालीम में मोहब्बत, फक्र, सब्र और खिदमत को बड़ी अहमियत हासिल रही है। यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह सिर्फ इबादत की जगह नहीं रही, वो जरूरतमंदों के लिए उम्मीद का दरवाजा भी बनी। कहा जाता है कि उनकी खानकाह में आने वाले के बारे में ये नहीं देखा जाता कि वो अमीर है या गरीब, उसका ताल्लुक किस तबके से है, उसकी जबान क्या है, उसकी हैसियत क्या है। अहम ये था कि वो इंसान है और उसे सहारे की जरूरत है। ये तो सूफियत का एक बेहद खूबसूरत पहलू है, दिल को इतना बड़ा कर लेना कि उसमें अपने साथ दूसरों के लिए भी जगह बन जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की तालीम में मोहब्बत का ये पहलू बहुत गहरा था। उनके यहाँ खुदा की मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत एक दूसरे से अलग नहीं थी, क्योंकि अगर दिल में इश्क है तो उसका असर रवैये में भी दिखाई देगा। किसी भूखे के लिए निवाला बनेगा, किसी परेशान के लिए सहारा बनेगा, किसी मायूस के लिए उम्मीद बनेगा। और शायद इसी वजह से सूफियों की महफिलों में समा की अपनी एक अहम जगह बनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की महफिलों से जुड़ी एक और खूबसूरत शख्सियत का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया की रूहानी निस्बत हिंदुस्तानी सूफियाना रवायत की सबसे यादगार मिसालों में शुमार की जाती है। खुसरो के लिए उनके पीर सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं बल्कि मोहब्बत और रूहानी रहनुमाई का मरकज थे। इसीलिए जब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया का जिक्र करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई समा की महफिल, सूफियाना कलाम और अमीर खुसरो की याद भी अपने आप चली आती है। और इसी रूहानी सिलसिले

मोहम्मद सईद की आवाज में आपने सुनी ये खूबसूरत कव्वाली। महफिल समा की इस कड़ी में हम जिस पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक दौर या किसी एक खानकाह तक महदूद नहीं है। वक्त बदलता रहा, बादशाह बदले, शहर बदले, मगर मोहब्बत, इंसानियत और खिदमत का पैगाम अपनी जगह कायम रहा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की जिंदगी में खिदमत खल्क यानी खुदा की मखलूक की खिदमत एक अहम पहलू था। सूफियों ने इंसान के दिल को अपनी तवज्जो का मरकज बनाया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि अगर किसी इंसान का दिल टूट रहा है तो उसके पास बैठना भी इबादत की कैफियत पैदा कर सकता है। अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाना महज एक समाजी काम नहीं बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आज भी सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग के तौर पर नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के पैगंबराना अखलाक की पैरवी करने वाले बुजुर्ग के तौर पर याद किया जाता है। उनकी तालीम का असल खूबसूरत पहलू यही था कि इंसान अपने दिल को नफरत से नहीं मोहब्बत से आबाद करे। सूफियत हमें यह भी सिखाती है कि इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं इश्क देने का नाम भी है। अपने रब की मोहब्बत दिल में हो तो उसकी मखलूक के लिए रहमत पैदा होनी चाहिए। किसी के लिए दुआ करना, किसी के दुख में शामिल होना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी की गलती को माफ कर देना और किसी को उसकी कमजोरी के बावजूद इज्जत देना, ये सब उस रूहानी सफर के पड़ाव हैं जिसे सूफी इश्क कहते हैं। और जब यही इश्क इश्क रूहानी अपने महबूब हकीकी की याद से जुड़ता है तो जिक्र, दुआ और कलाम की कैफियत और भी गहरी हो जाती है। आज की हमारी तीसरी और आखिरी कव्वाली भी इसी याद और मोहब्बत के एहसास को अपने अंदर समेटे हुए है। एक ऐसी याद जिसमें नाम जबान पर आता है तो दिल दुआ की तरफ बढ़ जाता है। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें जिक्र महज अल्फाज नहीं रहता बल्कि दिल की कैफियत बन जाता है। तो आइए अपनी इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगली पेशकश। करता हूँ याद तुमको मोहम्मद खुदा के साथ, आता है नाम लब पे तुम्हारा दुआ के साथ। कलाम है हनीफ भोपाली का और आवाज़ है मुनव्वर मासूम और साथियों की। समाप्त कीजिए।

आपने सुना मुनव्वर मासूम और साथियों की आवाज में ये खूबसूरत कलाम, और इसी के साथ आज की हमारी महफिल समा अपने आखिरी मरहले तक पहुंच रही है। इश्क हो तो ऐसा जो दिलों को जोड़ दे, जिक्र हो तो ऐसा जो किरदार को बेहतर कर दे, इबादत हो तो ऐसी जिसमें मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा हो, और जिंदगी हो तो ऐसी जिससे किसी दूसरे की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया की विरासत हमें यही पैगाम देती है कि दिल में मोहब्बत रखिए, नफरत के लिए जगह कम कीजिए, और जहाँ तक हो सके किसी के काम आइए, क्योंकि सूफियों की जबान में इश्क सिर्फ कहा नहीं जाता, जिया जाता है। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल की खास पेशकश महफिले समा। आपकी तजावीज, आरा और खत हमारे लिए हमेशा कीमती हैं। अपने खत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। उर्दू प्रोग्राम कहकशां, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल। पिन कोड है 462002। मैं हूँ आपकी मेजबान आफरीन बानो। आपसे इजाजत चाहती हूँ, फिर किसी और रूहानी मौजू, किसी और सूफियाना कलाम और किसी और खूबसूरत महफिल समा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दिलों में मोहब्बत को जिंदा रखिए, इंसानियत का दामन थामे रखिए, और दुआओं में याद रखिए। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र और सुन रहे हैं आप एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

कार्यक्रम मन भावन लेकर आपके पत्रों के साथ हाजिर है आपका रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी। आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। बहुत से खतों पत्रों के साथ आपका प्यार मिला है और आई हैं आपकी बहुत सी फरमाइशें गीतों की। उन्हीं गीतों में से कुछ गीतों को चुनिंदा मानकर हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन। तो आइए सबसे पहले उस खत को पढ़ते हैं जिसे भेजा है हमें इंदौर से ही लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। यवतमाल से चिट्ठी आई है जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर, वंदना धुले और उनके परिवार के सभी सदस्यों की। घंटाघर चौक खंडवा से भी लिखा है हमें संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। लेकिन किस गीत के लिए लिखा है वो तो हमने आपको बताया ही नहीं। जिस गीत की फरमाइश आई है वो जो फिल्म है वो है राजा हिंदुस्तानी। उदित नारायण की आवाजें हैं और इस गीत के लिए हमें सनावत मध्य प्रदेश से भी लिखा है हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्णव, काव्यांशी कटारिया ने। ग्राम रोहारी खंडवा से ही एक और चिट्ठी है राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे की। और मानपुर से खत लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद ने भी। एक और चिट्ठी है इसी गीत के जो ख्वाहिशमंद है उन श्रोताओं की और ये हमें लिखा है इन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खंडवा से ही रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल, गौरांज और उनके परिवार के सदस्यों और सदस्यों ने। और बड़ा आवार से लिखा है तेजल, नीलकंठ, मीरा देवी, शिवानी, पिंकी और राधा बेन ने। इसके अलावा एक और चिट्ठी जो बड़ी सुंदर सी आई है, बहुत सी उसमें स्याही का इस्तेमाल किया है हमारे श्रोताओं ने। आपका प्यार बड़ा ही रंग भरा होता है जो हम तक पहुंचता है और ये हमें लिखा है रिधोरा से बाबूलाल बुराखड़े, गोकुला बुराखड़े और मंगेश बुराखड़े ने। इंदौर से ही ख्वाहिशमंद है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। आप सभी के फरमाइश पर लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।

खत आते रहे, पैगाम सचते रहे, आपके फरमाइशी नगमों से अरमान मचलते रहे। रात बड़ी सुहानी है और महफिल सजी है। जरा सुनिए जनाब, अगली फरमाइश किन नामों ने किसके नाम लिखी है। संजय कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से चिट्ठी आई है। अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब की, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक, अब्दुल रहमान, अब्दुल कादर, मोहम्मद हमजा और अब्दुल रशीद खत्री की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा, मुस्तफा खान,

राउफ और शाहिद गांधीबाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। जिला जालना जलगांव सोमनाथ से चिट्ठी आई है। डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक, अश्विनी वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी ने औरंगाबाद से हमें लिखा है। वैभव गौरव लोखंडे ने हमें भावसिंहपुरा औरंगाबाद से लिखा है। मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर, वाकुलनी वैदनापुर से हमें चिट्ठी लिख भेजे हैं। ग्राम पंचायत बठेना से हमें लिखा है अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और बलकरण वर्मा ने। घटोदा सारा गांव से लिखने वाले हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से लिखे हैं विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश मूणत। इन्होंने भी अपनी फरमाइश भेजी है इसी गीत के लिए जैसे अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। और इस गीत के लिए एक और चिट्ठी जो बड़ी ही सुंदर सी आई है वो लिखी है राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र, रिद्धि सिद्धि गुप्ता। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से पत्र आया है मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम पलक और पंखुड़ी गुप्ता का। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से लिखने वाले हैं मंजीत, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, एम के गुप्ता, राजू और विनीता गुप्ता। सर्वानिया महाराज नीमच मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। मुकाम पोस्ट मामूलवाड़ी तहसील नांदुरा से लिखने वाले हैं सोपान तायड़े, विजया तायड़े, अमोल आणी, सरिता तायड़े। मुकाम पोस्ट जिंगाव नादुरा से ही एक और खत आया है बसंतराव भोजने, सुनंदा, राजू और सोनू भोजने का। लेकिन आप सबने पसंद कौन सा गीत किया है? पसंद किया है आपने फिल्म गुलाम का वो गीत जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। समीर ने बोल लिखे हैं।

कार्यक्रम मन भवन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ऐप एंड्रॉइड पर कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: फिल्मवाणी कार्यक्रम के साप्ताहिक क्रम एक ही फिल्म से में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म
1: दिल मेरा। बंद लिफाफा दिल मेरा, इसे खोल के पढ़ लो जी। बंद लिफाफा।
2: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मशहूर फिल्म कच्चे धागे। तो जल्दी से डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 19 अगस्त बुधवार शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी में सुनिएगा जरूर।

अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं। रात की खामोशी में जब कोई नगमा गुनगुनाता है, दिल के किसी कोने में छुपा एहसास जग जाता है। आपके खतों में भी मोहब्बत की खुशबू आती है, हर फरमाइश एक नई कहानी सुना जाती है। लिखने वाले हैं अगले गीत के लिए कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, रति और मीनूराज श्रीमाली। महादेव घाट अमलेश्वर से लिखा है हमें डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू के साथ साथ रियांश ठाकुर ने भी लिखा है। इंदौर से चिट्ठी आई है रवि, ईश्वरी, आदित्य, कीर्तिमान और रोशनी की। नांदखेड़ जिला वाशिम से लिखने वाले हैं अशोक चुंबले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चैताली और प्रीति वांदड़े। लावरिया भेरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, रतिन, कुणाल, केतन और उनके परिवार के सभी सदस्य। इंद्र विहार रायगढ़ से लिखा है हमें अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद, वसीम और वली उल्लाह नूरजहां ने। बुलंदशहर से चिट्ठी आई है बदरू वली अंसारी, फर्जू वली, फर्जी वली की। लुधियाना पंजाब से लिखने वाले हैं अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर। गौरी नगर इंदौर से भी एक पत्र आया है, पसंद करता है आप सभी आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सहारनपुर से बड़े ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है आपने सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली पाथिक और कृष्ण ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने हमें लिखा है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। आप सभी ने पसंद किया है साजन फिल्म का वो गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने, नदीम श्रमण का संगीत है और समीर के बोल हैं।

और लेते हैं अब अगली फरमाइश जो इस बारिश के मौसम में उत्तराखंड से हमें लिखा है और लिख कर हमें भेजा है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रानी रुखसार और मोहम्मद आशिफ ने। सुदामा नगर झालावाड़ राजस्थान से पत्र आया है हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुताल बागरी का। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से लिखने वाले हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी, मनमौजी, सरताज बानो, उबेद रजिया, जुनेदा अलीना, आयत मुआज मंसूरी और नसरीन जहां। करताल जिला रंगरेड्डी तेलंगाना से चिट्ठी आई है गोपाल कानुगुला महेश्वरी प्रवालिका विष्णुवर्धन और विघ्नेश की। मोहटक्का माफी से लिखने वाले हैं जगन्नाथ पटेल, ममता, अंतिम, ललित, शुभम, भावना, आदित्य और मानस पटेल। देवास बड़े बाजार से चिट्ठी आई है जाकिर हुसैन नजमी, तस्नीम आन मोहम्मद नजमी और जमीला नजमी की। खरगोन से चिट्ठी आई है ध्रुवास, सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम की। पुणे से लिखने वाले हैं हमें पंकज वाड़ोदे, आर्या, आदि, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। दुबिहा निवादा गाजीपुर से चिट्ठी आई है प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय की। और चौहलदा से लिखने वाले हैं हमें बागपत से संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। आप सबकी फरमाइश पर हाजिर है ये गीत।

तो श्रोताओं, कुछ नगमे याद बन गए, कुछ खत दिल के करीब रह गए, इस हसीन रात में आपके साथ बिताए पल भी नसीब रह गए। अब इजाजत दीजिए इस महफिल से जाने की, लेकिन वादा रहा फिर लौटेंगे आपके लिए नए नगमे और फरमाइशें लेकर। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम मन भावन। पत्र लिखते रहिए, पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 452001। अब इजाजत, मनीष कुमार सोनी को नमस्कार।

मन भावन फरमाइशी पत्रों पर आधारित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगदीश बारोट का सारंगी पर बजाया हुआ राग बिहाग। आइए सुनें।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जगदीश बारोट का सारंगी पर बजाया गया राग बिहाग। तबले पर संगीत संगत कर रहे थे संजय राठौर। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है।

0: उपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. India Today said that the credibility and robustness of its election machinery are well established globally. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Ganesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said, India is deeply saddened by this tragedy. On the reports of India receiving energy requests from Bangladesh, Mr. Jaiswal said, India has an ongoing energy cooperation with the neighboring country. On Pakistan's reaction to India's claims over Shehzad Bhatti terror network, the spokesperson said, India takes issue of terrorism very seriously. The Supreme Court today said that it would constitute a high-powered committee comprising retired Apex Court and High Court judges, a former DGP and an ex-CBI director to examine allegations of police excesses against students during recent protests in Delhi and violence against police personnel. A three-judge bench headed by Chief Justice Surya Kant said an order for constituting the committee would be released tomorrow after it receives suggestions from different parties on other members to be included in the panel. The top court further said that it will direct the handing over of video footage and CCTV recordings of the violence during the 20th of July Parliament March in Delhi to the high-powered committee for examination. National Testing Agency has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a four-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA officers will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. In the BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Tressa Jolly and Gayatri Gopichand have advanced to the pre-quarterfinals in Delhi. The Indian duos outshined United States' Lauren Lam and Allison Lee in straight games 21-15, 21-12. A shuttlers Lakshya Sen and Unnati Huda have sailed into the second round of their respective singles events. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर इन्हीं मीटरों पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।